FM 107.2 MHz पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज है बुधवार, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 13 और ईस्वी सन 2026 के जून माह की 3 तारीख। 5:58 हो चुके हैं। अब हमारे आज के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी।
1: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
2: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
1: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
3: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का

0: शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक नगर पालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।
2: ये है विविध भारती।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

वंदनवार कार्यक्रम में सबसे पहले आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, मन में संतोष होना स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष यदि मन में भली भांति प्रतिष्ठित हो जाए तो उससे बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। ये था आज का चिंतन। अब सुनिए भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 6:30 हो चुके हैं। झरोखा में जानकारी हमारे आज के कार्यक्रमों की।

हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रोग्रामों के बारे में आपको बता दें, सुबह 9:30 पर आज का अखबार कार्यक्रम में अखबारों से ली गई जानकारी, साथ में कुछ म्यूजिकल नंबर्स। 10:00 समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 10:05 पर आज आप सुनेंगे लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। आज का टॉपिक है साइकिल चलाएं, सेहत बनाएं, पर्यावरण बचाएं।

दिन में 11 बजे स्पॉन्सर प्रोग्राम आप सुनेंगे। 11:15 पर सुरबहार कार्यक्रम में कुछ गैर फिल्मी रचनाएं।

संजीवनी प्रोग्राम में दिन में 11:30 पर आज का टॉपिक है गर्मी से संबंधित बीमारियां और उनका निदान होम्योपैथी में। जानकारी देंगे होम्योपैथ डॉक्टर अदिति गर्ग।

प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे दोपहर 1:05 पर, पहले हिंदी में, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में, 1:15 पर फिल्म संगीत। स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे आप सुनेंगे शाम 5:20 पर, और 5:30 स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग।

पंजाबी गीत पेश किए जाएंगे शाम 6:30 पर और शाम 7:45 पर। रात 10:30 पर सुरसांझ कार्यक्रम में आपके लिए पंजाबी गीत पेश किए जाते हैं।

शाम 6:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले हिंदी में, उसके बाद पंजाबी में 6:20 पर। समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे शाम 5:00, शाम 6:00, दोपहर 2:15 पर

0: अभी 8:45 पर समाचार संध्या और रात 11:00। झरोखा में ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती का कार्यक्रम श्री रामचरितमानस। 6:45 पर संगीत सरिता और 7 बजे भूले बिसरे गीत। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
1: प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस पाठ। आज सुनिए भाग 208।

भरत को चतुरंगिणी सेना के साथ चित्रकूट आते देख निषादों की भांति लक्ष्मण के मन में भी आशंका हुई कि राजपद पाकर भरत को प्रभुता का मद हो गया है और श्री राम को वन में अकेला असहाय समझ वे युद्ध करने आ रहे हैं। अतः लक्ष्मण ने भरत से युद्ध करने की ठान ली। श्री राम के चरणों की वंदना कर चरण रज माथे से लगाते हुए बोले, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने वैसे भी हमारा कम अहित नहीं किया है और अब युद्ध करने आ रहे हैं, आखिर हम ये सब कहां तक सहन करेंगे, जबकि आप हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। अग्रज से युद्ध की आज्ञा मांगते हुए लक्ष्मण साक्षात वीर रस के अवतार दिख रहे थे। सिर पर जटाजूट और कमर में बंधा बाणों भरा तरकस, भरत का सामना करने को वो पूरी तरह तैयार हैं। उपस्थित समाज के वहां एकत्रित होने के कारण उनका हौसला और भी बढ़ गया है। मन में दृढ़ निश्चय हो गया है कि आज वो अपना सारा पिछला क्रोध अच्छी तरह प्रकट करेंगे। क्रोधित लक्ष्मण को युद्ध के लिए उद्यत देख सारा जगत भयभीत हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे तात, जो बिना विचारे जल्दी में कुछ करके बाद में पछताते हैं उन्हें बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता।

0: श्रोताओं नमस्कार। सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए हमारे मेहमान हैं आकाशवाणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। प्रस्तुत है इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, फिल्म संगीत में तबले का दौर, इस श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं हमारे अतिथि श्री रविंद्र खासनीस जी से। रविंद्र जी, जब संगीत की रचना होती है तो उसमें लय ताल का विचार करना क्यों जरूरी है?
2: देखो, सुर और ताल
1: जी,
2: ये संगीत की बुनियाद है। मतलब वो एक रथ के दो पहिए हैं, और जब वो दोनों पहिए सही तरीके से चलते हैं, एक साथ चलते हैं, तभी वो रथ आगे जाता है या अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है। मतलब संगीत की जो मधुरता है वो सुर और ताल है। तो सुर और ताल में हम अभी तो ताल का विचार कर रहे हैं
1: जी,
2: तो ताल का जो अंग है वो है लय। अभी किसी भी गीत को हम लोग जब सुरों में ढालते हैं
1: हाँ,
2: तो वो एक गीत की तर्ज बन गई। अब वो तर्ज बनने के बाद अक्सर जो संगीतकार होते हैं वो इसका विचार जरूर करते हैं कि ये जो संगीत हमने दिया है इसको किस लय में होना चाहिए। मतलब उसका ताल कौन सा होना चाहिए और वो ताल जो है वो किस लय में होना चाहिए
1: जी।
2: तो जैसे हमारा जो काव्य है जिसकी संगीत रचना की गई है, तो काव्य की अंदर ही उसके एक लय छुपी रहती है।
1: अच्छा,
2: मतलब हर कोई काव्य जो है वो काव्य एक लय भी दर्शाता है। वो लय जो है उस लय को संगीतकार पकड़ता है। दूसरा ये है कि गाना जो है वो किस लय में अच्छा लगेगा सुनने के लिए। जैसे हम लोग रिकॉर्डिंग के वक्त इस बात का जरूर विचार करते हैं कि ये गाना गायक जो है वो किस स्वर में गाएगा।
1: अच्छा,
2: मतलब जैसे काली एक काली दो, सफेद एक सफेद दो, ये जो स्वर है
1: जी,
2: तो इसमें कौन से स्वर में उसका होना उचित रहेगा, ये जब विचार आता है उसी के साथ में
1: जी
2: उसका लय क्या होना चाहिए, जिसे अंग्रेजी में टेम्पो कहते हैं
1: जी।
2: तो टेम्पो ऑफ द सॉन्ग, गाने का लय कौन सी होनी चाहिए, उसका विचार जरूर किया जाता है। अभी ये लय की जो विविधता है, तो वो विविधता हमको एक अलग रंग उसमें लाती है गाने में। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊंगा, आज गावत मन मेरो झूम के
1: जी,
2: ये जो बैजू बावरा फिल्म का गीत है, तो ये गीत जो है वो विलंबित तीन ताल में है। मतलब तीन ताल की जो लय है उसमें वो विलंबित लय है। अभी दूसरा गीत है कि आए सुर के पंछी आए, सुर संगम फिल्म का ये गीत है, तो ये जो गीत है ये भी तीन ताल में है लेकिन ये मध्य लय में है। और पिछले एपिसोड के अंत में हमने जो सुना था, मैं क्या जानू क्या जादू है, वो द्रुत गति तीन ताल है।

0: तो ये जो अलग अलग रंग आते हैं वो लयकारी जो हमने उसमें रखी है
1: जी,
0: संगीतकार ने जो रखी है उससे उसका मजा आता है, गाना सुनने का मजा उसी पर निर्भर करता है।
1: जी जी जी,
0: मेरे ख्याल से हम लोग एक उदाहरण के तौर पर आए सुर के पंछी आए जो मध्य लय का,
1: सुरसंगम फिल्म का ये जो मध्य लय का गीत है
0: जी,
1: इसमें थोड़ा मंद्र लय का भी मजा है और द्रुत लय का भी मजा है।
0: हाँ,
1: तो यही गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: श्रोताओं, तीन ताल का जो उदाहरण हम देख रहे थे, इसके लिए राग मालकाओं पर आधारित सुर संगम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गायक कलाकार पंडित राजन मिश्र। रविंद्र जी, त्रिताल के कोई और अन्य आविष्कार भी हुए हैं जिसे फिल्म संगीत में इस्तेमाल किया गया?
1: बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि नाट्य संगीत की परंपरा महाराष्ट्र में रही
0: जी,
1: तो नाट्य संगीत में तीन ताल

0: ताल का एक रूप बदला हुआ है।
1: हाँ।
0: कैसे है? अभी जो तीन ताल है वो है धा धिन धिन धा धिन धिन धा धा तीन तीन ता ता धिन धिन धा धा। अब ये तीन ताल जो है इसी का अधा,
1: जी
0: अधा मतलब धा, उसका एक अवग्र के बाद में धा।
1: अच्छा,
0: तो अवग्र जो है
1: हाँ,
0: उससे वो होता है अधा। तो ये कैसे होता है, मतलब धा दिन दिंदा का रूप कैसे बदला? धा धिन धा धा धिन धा धा धिन धा धा धिन धा धा धिन धा धा। तो ये जो है धा आ धिन धा धा आ, तो ये आकार है उसके बीच में। तो उसमें क्या होता है कि वजन बदल गया उसमें, कैसे धा धिन धिन धा वो धा धिन धा धा धिन धा धा। तो ये जो बदला हुआ वजन है इसका इस्तेमाल करते हुए भी गीत पहले जैसे नाट्य संगीत में प्रचलित थे
1: जी,
0: तो फिल्मों में भी वो उस तरह के गीत आए, और अधा तीन गाल के गीत तो काफ़ी अच्छे अच्छे गीत है उसमें,
1: एक निराला और सुंदर रिदम पैटर्न इसमें दिखाई दे रहा है।
0: जी जी जी।
1: तो कोई ऐसा गीत जिसमें अधा त्रिताल हाँ, हमें सुनने को मिले?
0: हाँ बिल्कुल है, बैया ना धरो, ये जो है दस्तक फिल्म का गाना,
1: जी जी
0: लता मंगेशकर जी ने गाया हुआ
1: बहुत ही खूबसूरत गीत है जो राग चारुकेशी पर आधारित है।
0: जी।

0: श्रोताओं, मदन मोहन साहब का संगीतबद्ध किया हुआ दस्तक फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता जी के स्वर में। इस गीत में अद्धा तीन ताल का सुंदर आविष्कार हमने देखा और इसी के साथ आज श्रृंखला की ये कड़ी अब संपन्न होती है। अगली कड़ी में हम आपसे फिर मिलेंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। ये थी इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि थे श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत की

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। थोड़ी देर में सुनिएगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आप सुन रहे थे श्रीमती 420 फिल्म का ये गाना, गीता दत्त की आवाज में। जानिसार अख्तर के बोल थे और ओपी नैयर का संगीत था।

0: एक खुशखबरी,
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: मस्ताना।
1: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की थी और संगीत से सवारा था सचिन देव बर्मन ने।
2: सुनिए
3: कहिए
4: सुनिए।

0: फिल्म पटरानी का ये गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र के बोनू को संगीत में पिरोया था शंकर जय किशन ने।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,
2: कहीं बेख्याल हो कर यूं ही तूलिया किसी ने।
1: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल,
3: जाने क्यों
1: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। ये कार्यक्रम जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद।

एहसान का हारू का मत ले एहसान का।

फिल्म जलदीप का ये गाना आप सुन रहे थे सुधा मल्होत्रा और की आवाज में। कैफ इरफानी के बोल थे जिन्हें सुरों में पिरोया था स्नेहल भाटकर ने। और अब सुनते हैं गोस्वामी तुलसीदास फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज में। बीडी मिश्रा के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है एसएन त्रिपाठी ने।

आइए अब सुनते हैं फिल्म चार मीनार का ये गाना आशा भोसले की आवाज में। विश्वामित्र आदिल के बोल हैं, संगीत है शार्दुल क्वात्रा का।

0: फिल्म सीआईडी के इस गीत के साथ ही अब आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही, वीको टर्मरिक क्रीम। मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: श्रोताओं, आजकल के दौर में बढ़ती उम्र में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या आम हो चुकी है और साथ ही उससे जुड़ी एक गंभीर समस्या हिप फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर भी बढ़ गई है। तो क्या है ऑस्टियोपोरोसिस के कारण, निदान व इलाज, इस सब पर चर्चा करने के लिए आज दोपहर 2:30 से 3 तक FM लाइफलाइन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे डॉक्टर संजय बडाडा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, PGI चंडीगढ़। हमारे फोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619, यानी 2660615, 2660617, 2660619, STD कोड 0172। इस बार के FM लाइफलाइन की रिकॉर्डिंग का समय रहेगा दोपहर 2:30 से 3 तक। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा।

0: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। कुछ ही पलों में सुनेंगे कार्यक्रम हम है राही प्यार के।
1: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
2: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
2: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
2: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
0: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

अभी आप सुन रहे थे अप्रैल फूल फिल्म का गाना रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। हसरत जयपुरी के बोलों को संगीत में पिरोया था शंकर जय किशन ने। और आइए अब आपको सुनवाते हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा और शंकर जय किशन का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म धरती का ये गाना। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं।

आइए अब आपको सुनवाते हैं गवार फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं और नौशाद का संगीत।

सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

चित्रगुप्त की बनाई तर्ज पर आपने सुना मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना परदेसी फिल्म से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें थी। और आइए अब आपको सुनवाते हैं सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी का लिखा गीत। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। फिल्म का नाम है रूठा ना करो।

0: का चेहरा माशाल्लाह, ज़ुल्फ का पहरा सुभान अल्लाह।
1: इस गीत के साथ ही अब आज का हमेरा ही प्यार के कार्यक्रम संपन्न होता है।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 8 बजने को ही कुछ ही पलों में हम आपको लिए चलते हैं अपने दिल्ली केंद्र समाचार प्रभात के लिए। बस अब से कुछ ही पलों में

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
4: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डी के शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डी के शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं है। नवन्नो में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
6: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
7: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित होगी। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
6: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
8: दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
6: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्चस्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
9: धन्यवाद विशाल। CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई आज के सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, CBSE चेयरमैन और सचिव हटाए गए, OSM टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, 1 महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, CBSE ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें ना विचारधारा की चिंता रहती है और ना ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल। अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
3: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 8:15 हुए हैं। अगला प्रोग्राम त्रिवेणी।
11: आइए सुने त्रिवेणी।

बिना तेल के चलती हूँ, बिना पैरों के चलती हूँ, दो पहियों पर सवारी मेरी, सबको सैर कराती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? पहचाना? हाँ सही पहचाना, मैं हूँ साइकिल। और यही साइकिल एक जमाने

बिना तेल के चलती हूँ, बिना पैरों के चलती हूँ, दो पहियों पर सवारी मेरी, सबको सैर कराती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? पहचाना? हाँ सही पहचाना, मैं हूँ साइकिल। और यही साइकिल एक जमाने से हमेशा के लिए उपयोगी रही है। सबसे सस्ता और पर्यावरण के लिए अनुकूल वाहन है, दो पहियों पर चलने वाला साधन है और पैडल की सहायता से चलाया जा सकता है। गांव से लेकर शहरों तक प्रत्येक जगह साइकिल का उपयोग किया जा सकता है, यहां तक कि किया जाता है। विद्यार्थी, डाकिया, मजदूर और कई लोग अपने दैनिक कार्यों के लिए साइकिल का ही प्रयोग करते हैं। ये साइकिल इस दुनिया का सबसे प्यारा आविष्कार है, जिसमें शारीरिक ऊर्जा लगती है, ना कि कोई और तकनीकी रूप से ऊर्जा। चांदी की

साइकिल का आविष्कार 1817 में जर्मनी के वैज्ञानिक कार्ल डार्सी ने किया था। उन्होंने सबसे पहले ऐसी दो पहियों वाली गाड़ी बनाई जिसे पैरों से धक्का देकर चलाया जा सकता था। बाद में पैडल, चेन और ब्रेक लगाए गए और धीरे धीरे आधुनिक साइकिल का रूप तैयार हुआ। आज दुनिया भर में अलग अलग प्रकार की साइकिल बनाई जाती हैं, जैसे रेसिंग साइकिल, माउंटेन साइकिल, बच्चों की साइकिल। और ये जो साइकिल है ना, इससे नाता सबका बड़ा गहरा है। हम भारत के थोड़े से पुराने काल में जाते हैं और जब हम जाते हैं तो हम पाते हैं यहाँ पर साइकिल घर की लग्जरी हुआ करता है। यानी घर में अगर साइकिल है और रेडियो है तो आप बड़े रईस हैं और लोग उस साइकिल को बहुत सम्मान देते हैं। ये साइकिल बड़े काम की चीज है, क्योंकि अगर इसी साइकिल में पीछे आटा चक्की लगा दी जाए और साइकिल को घुमाया जाए तो चक्की भी चलने लगती है, आटा भी पिसने लगता है और शारीरिक व्यायाम भी होने लगता है। नए आधुनिक उपकरणों में साइकिल को घरों में रख लिया गया है। ये साइकिल बहुत काम की चीज है, क्योंकि साइकिल इस दुनिया का सबसे प्यारा उपकरण है जो बच्चा सबसे पहले चलाता है। और जब वह दो पैरों पर उस साइकिल को चला लेता है तो खुश हो जाता है। हालांकि माता पिता को वो जो चार

चार पहिए जो दो एक्स्ट्रा पहिए सुरक्षा के लिए होते हैं, उन्हें हटाने में डर लगता है, लेकिन जैसे ही हटता है, बच्चा पंछी की तरह उड़ जाता है।

साइकिल बहुत अच्छी चीज है, इस वाक्य का प्रयोग कई बार किया गया। इसका कारण है इसके दो उपयोग हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकते हैं। ये ट्रैफिक नहीं करती क्योंकि बड़ी पतली सी, बड़ी सकरी सी होती है और बड़ी सरलता से किसी भी गली मोहल्ले से निकल जाती है, घर के एक छोटे से कोने में बड़ी सरलता से रख जाती है। और धीरे धीरे यह साइकिल अगर हम चलाते जाते हैं तो इससे बढ़िया व्यायाम हो जाता है। ये साइकिल बच्चों का बचपन है, जिसमें अपने पिता के आगे वाले डंडे पर बैठकर मेला देखने जाना ये भी तो बड़ा ख्वाब है ना। और उसी ख्वाब को, उसी सपने को जो पहले ही जी चुके हैं, फिर से जीने का आनंद ही अलग है। साइकिल, अगर इस सारी दुनिया में साइकिल का प्रयोग होने लगे तो प्रकृति भी मुस्कुराने लगेगी, है ना। कितने सुंदर फूल आ जाएंगे और कितनी सुंदर बयार होगी, क्योंकि प्रदूषण होगा ही नहीं। नियमित साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, शरीर को मजबूत करता है, हृदय और फेफड़े अच्छे से काम करते हैं, मोटापा भी कम हो जाता है, और कोई धुआं नहीं निकलता तो प्रदूषण नहीं है, पेट्रोल और डीजल की बचत होती है, इससे अपने देश का पैसा भी बचता है। आज के समय में प्रदूषण, ट्रैफिक, इस सब से बचने के लिए साइकिल का महत्व अपने आप में बढ़ चुका है। कई लोग स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी साइकिल का प्रयोग करते हैं। तो बताइए कौन कौन उपयोग करेगा साइकिल का अपने जीवन में। करिए साइकिल का प्रयोग, क्योंकि ये आपके लिए, आपके पर्यावरण के लिए, आपकी प्रकृति माँ के लिए और आपकी भारत माँ के लिए, सबके लिए सुरक्षित है।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक।
1: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
2: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि

0: HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
0: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
0: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: फिल्म आकर्षण का ये गाना आपने सुना पंडित चुन्नूलाल मिश्रा की आवाज में। प्रसून जोशी के बोलों को संगीत से सवारा था शंकर एहसान लॉय ने।
1: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
2: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं।

0: और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
1: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
0: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
1: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
0: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, आजकल के दौर में बढ़ती उम्र में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या आम हो चुकी है और साथ ही उससे जुड़ी एक गंभीर समस्या हिप फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर भी बढ़ गई है। तो क्या है ऑस्टियोपोरोसिस के कारण, निदान व इलाज, इस सब पर चर्चा करने के लिए आज दोपहर 2:30 से 3 तक FM लाइफलाइन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे डॉक्टर संजय बडाडा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी PGI चंडीगढ़। हमारे फोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619, यानी 2660615, 2660617, 2660619। STD कोड 0172। इस बार के FM लाइफलाइन की रिकॉर्डिंग का समय रहेगा दोपहर 2:30 से 3 तक। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा।

साथ खून माफ फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर की आवाज में। इस गीत में पंडित विश्वमोहन भट्ट की मोहन वीणा भी आपने सुनी। गुलजार का लिखा ये गीत था जिसे संगीत से सवारा था विशाल भारद्वाज ने। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म बर्फी का ये गाना अरिजीत सिंह की आवाज में। सईद कादरी के बोल हैं, प्रीतम का संगीत।

0: फिल्म से। चित्रलोक कार्यक्रम में अभी वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: श्रोताओं, आजकल के दौर में बढ़ती उम्र में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या आम हो चुकी है और साथ ही उससे जुड़ी एक गंभीर समस्या हिप फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर भी बढ़ गई है। तो क्या है ऑस्टियोपोरोसिस के कारण, निदान व इलाज, इस सब पर चर्चा करने के लिए आज दोपहर 2:30 से 3 तक FM लाइफलाइन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे डॉक्टर संजय बडाडा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, PGI चंडीगढ़। हमारे फोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619, यानी 2660615, 2660617, 2660619, STD कोड 0172। इस बार के FM लाइफलाइन की रिकॉर्डिंग का समय रहेगा दोपहर 2:30 से 3 तक। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा।

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
1: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: इस संदेश के पहले आप सुन रहे थे जिला गाजियाबाद फिल्म का गाना। मोहित चौहान, तुलसी कुमार और नदीम खान की आवाजों में शब्बीर अहमद के बोल थे और अमजद नदीम का संगीत था। और अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिलवाले का गाना। अरिजीत सिंह, अंतरा मित्रा की आवाजें हैं, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और प्रीतम का संगीत।

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
1: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक,
0: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों

0: तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
1: आपका अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
0: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
1: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
2: ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं।
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका

0: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
1: जग घूमे आधार जैसा ना कोई।
2: तो देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाएं।
0: चले आए आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846, चंडीगढ़ का STD कोड है 0172
2: और हमारा ईमेल आईडी है akashwanichandigarh@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

चित्रलोक कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म तमाशा का गाना, अलका याग्निक और अरिजीत सिंह का गाया हुआ, इरशाद कामिल ने लिखा है और ए आर रहमान ने धुन बनाई है।

ऐसा ही कुछ लगता है अपनी साइकिल के लिए। वैसे साइकिल जिंदगी का सबसे पहला एडवेंचर बन जाती है अक्सर। सीखते वक्त चोट लगे या गिरकर साइकिल में टूट फूट आए, लेकिन साइकिल चलाना सीखकर एक अलग ही रोमांच होता है। बचपन में साइकिल खिलौनों में सबसे ज्यादा प्यारी होती है, फिर 2-4 साल की उम्र वाली छोटी साइकिल का अलग ही आनंद होता है, और धीरे धीरे साइकिल का उपयोग स्कूल जाने के लिए भी होता है। कई लोग साइकिल से अपने काम पर भी जाते हैं। वक्त के साथ साइकिल की उपयोगिता भी और महत्व भी अब बदल गया है। अब साइकिल एक्सरसाइज के तौर पर काफी प्रयोग होती है। हम साइकिल के बारे में इतनी सारी बातें कर रहे हैं क्योंकि आज ही है साइकिल दिवस। 2018 में अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस घोषित किया गया था, और इसे मनाए जाने का ख्याल सबसे पहले आया था अमेरिका के मॉन्टगोमरी कॉलेज के प्रोफेसर लेसेक सिब्लिस्की को, जिन्होंने अपने साथियों के साथ साइकिल का खूब प्रचार प्रसार किया। इसके बाद इस दिन को मनाने का निर्णय लिया गया।

सबसे सस्ता वाहन है, इसके लिए एक नहीं अनेक फायदे हैं। पेट्रोल की खपत नहीं होती, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत सुरक्षित है, एक्सरसाइज करने के लिए बेस्ट है और इम्यूनिटी भी बढ़ती है, और विशेषज्ञों की माने तो इससे बीमारी का खतरा भी कम होता है। साइकिल चलाने से दिमाग ज्यादा एक्टिव रहता है और सक्रियता बढ़ती है सोचने विचारने की, ऐसा भी कहा जाता है। तो भाई विश्व साइकिल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: फिल्म खामोशिया का ये गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में। रश्मि सिंह ने ये गीत लिखा था और जीत गांगुली का संगीत था। इस गीत के साथ ही अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: श्रोताओं, आजकल के दौर में बढ़ती उम्र में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या आम हो चुकी है और साथ ही उससे जुड़ी एक गंभीर समस्या हिप फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर भी बढ़ गई है। तो क्या है ऑस्टियोपोरोसिस के कारण, निदान व इलाज, इस सब पर चर्चा करने के लिए आज दोपहर 2:30 से 3 बजे तक FM लाइफलाइन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे डॉक्टर संजय बडाडा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी PGI चंडीगढ़। हमारे फोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619, यानी 2660615, 2660617, 2660619। STD कोड 0172। इस बार के FM लाइफलाइन की रिकॉर्डिंग का समय रहेगा दोपहर 2:30 से 3 बजे तक। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा।
2: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
3: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
2: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
3: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे

0: भी दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
0: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। यूटी चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर।
3: आज का अखबार।
2: नमस्ते साथियों, गुड मॉर्निंग। आज का अखबार प्रोग्राम में हम आपके साथ हैं और मैं आपके साथ हूं आपका साथी अनिल पुंज। अब से लेकर 10 बजे तक इस प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगे। अखबारों से ली गई जानकारी इस प्रोग्राम में शेयर करेंगे, क्योंकि भागती दौड़ती जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि अखबार हम देखते तो हैं पर उस पर नज़र दौड़ाने से चूक जाते हैं, क्योंकि कामकाज बहुत होते हैं। ऐसे में ये जो प्रोग्राम है आपके साथ साथ चलते हुए आपको अखबारों से ली गई जानकारी देता है। जितनी इस प्रोग्राम में संभव हो सकती है तो सबसे पहले हम नज़र दौड़ाते हैं आज की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल और कारोबार जगत से जुड़ी हेडलाइंस पर। सबसे पहले CBSE ऑन स्क्रीन विवाद की बात करें तो झारखंड के छात्र ने संसदीय समिति के सामने दी अपनी प्रस्तुति। CBSE चेयरमैन और सचिव बदले, जांच समिति गठित की गई है इस मामले में। नीट पेपर लीक में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत जो है वो बढ़ाई गई है। देश के खिलाफ युद्ध की साजिश में 3 कश्मीरी छात्र दोषी, 1 बरी। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को भारत की 2 टूक, नेपाल के साथ 98% सीमा तय, तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं। सुखोई 30 से सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण, दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2। भारत दक्षिण अफ्रीका व्यापार निवेश और MSME में बढ़ाएंगे सहयोग। विदेशियों को भारत में 180 दिन पूरे होने से पहले कराना होगा पंजीकरण। सुरक्षित भुगतान के लिए AI कवच तैयार कर रहा है रिजर्व बैंक। आशा से पहले और तेजी से विकसित हो सकता है अल नीनो, मानसून के लिए बढ़ेगा खतरा। IT शेयर्स में उछाल से बाजार में लौटी रौनक, थोक महंगाई की छुट्टी, अब आएगा PPI यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अब चलते हैं खेलों की दुनिया में। महिला T20 विश्व कप, 12 टीमें, 24 दिन, 33 मैच, अब चढ़ेगा महिला क्रिकेट का बुखार। इंग्लैंड में होने वाले मुकाबलों में 81 करोड़ की इनामी रकम दांव पर। उद्घाटन मैच होगा 12 जून को इंग्लैंड बनाम श्रीलंका, बर्मिंघम में होगा ये मैच। IPL के बाद डबल हुई वैभव सूर्यवंशी की ब्रांड वैल्यू। ये तो थी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कारोबार और खेल जगत से जुड़ी हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। और आइए अब चलते हैं सीधे कांगड़ा घाटी में, जहां बरसों से रेलगाड़ी के

शुक सबको लुभाती आ रही है, लेकिन पिछले 3 साल से चक्की पुल के टूट जाने से ये छुक छुक सुनाई नहीं दी। हम आपको बताएं कि पठानकोट जोगिंदरनगर जो रेल मार्ग है इसकी हम बात कर रहे हैं, और ये 1928 के आसपास अंग्रेजों ने इसे बनाया था। और बनाया क्यों था? जोगिंदरनगर में जो पावर हाउस बनाया गया था वहां सामान ले जाने के लिए, लाने के लिए इस रेल मार्ग का निर्माण किया गया। उसके बाद ये लगातार कांगड़ा वासियों की सेवा करती रही है और कांगड़ा वासियों को इसकी आदत सी लग गई है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत वादियों से होती ये गाड़ी छुक छुक करती जोगिंदरनगर तक पहुंचती है। और साथ साथ में चलते हैं धौलाधार के पहाड़, चोटियां, वो सबको लुभाती हैं। तो एक अपने आप में बड़ा ही प्यारा दृश्य होता है। और पिछले 3 साल से चक्की पुल के टूट जाने की वजह से ये छुक छुक गाड़ी की सुनाई नहीं दी। कांगड़ा घाटी के लिए ये खास आकर्षण है, हिमाचल की ये विरासत है। तो इससे जुड़ी खबर है कि 3 साल के लंबे इंतजार के बाद पठानकोट जोगिंदरनगर रेल मार्ग पर एक बार फिर ट्रेनों की छुक छुक सुनाई दी। चक्की पुल के पुनर्निर्माण के बाद जोगिंदरनगर पठानकोट नैरो गेज ट्रैक पर रेल सेवा बहाल हो गई है। मंगलवार को यानी कल को कांगड़ा के समेला रेलवे स्टेशन पर सांसद अनुराग ठाकुर, राज्यसभा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज, विधायक पवन काजल और रणवीर सिंह ने संयुक्त रूप से रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल सेवा बहाल होने से इस इलाके के हजारों यात्रियों, स्थानीय निवासियों और पर्यटकों ने राहत की सांस ली है। अगस्त 2022 में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान पंजाब हिमाचल सीमा पर स्थित चक्की नदी पर बना रेलवे ट्रैक का पुल बह गया था। इससे इस रूट पर रेल सेवा पूरी तरह से ठप हो गई थी। सांसद अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस पुल के पुनर्निर्माण की मांग को केंद्र सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया गया था। रेल मंत्रालय ने 70 करोड़ से आधुनिक तकनीक से लैस नए पुल का निर्माण पूरा किया। और सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा कि रेल विस्तार का सीधा अर्थ विकास की गति को तेज करना है। और सांसद अनुराग ठाकुर ने यह भी बताया कि हिमाचल में रेल नेटवर्क के लिए 2,911 करोड़ मंजूर किए गए हैं। तो ये है सबकी चेहती पठानकोट जोगिंदरनगर रेलगाड़ी, जो फिर से हो गई है बहाल।

वेलकम बैक दोस्तों, आज का अखबार प्रोग्राम में हम फिर आपके साथ हैं और अब बारी है रीजनल हेडलाइंस की, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। इस सेगमेंट में हम ले आते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से जुड़ी हेडलाइंस।

सबसे पहले हरियाणा से जुड़ी हेडलाइंस। हरियाणा में डॉक्टर्स को बड़ी राहत मिली है, नहीं भरना होगा बॉन्ड। पीजी के बाद सामान्य अस्पतालों में सेवाएं देंगे विशेषज्ञ डॉक्टर्स। पंचकुला नगर निगम घोटाले में ईडी का बड़ा खुलासा, फर्जी खातों से निकले करोड़ों, गाड़ियों और प्रॉपर्टी में बदली गई रकम। अब हरियाणा में 24 घंटे बिजली, स्मार्ट पावर स्टेट की ओर अग्रसर हरियाणा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि एक साल में सहकारी चीनी मिलों को लाभ की स्थिति में लाया जाए। हरियाणा के सरकारी स्कूलों के 91 विद्यार्थियों ने आईआईटी में बनाई अपनी जगह और जीएसटी संग्रह में हरियाणा सबसे आगे, 4,456 करोड़ रुपए। अब चलते हैं हरियाणा के बाद पंजाब की ओर। पंजाब में 52 लाख मां बेटियों को अगले माह से मिलेंगे 1,000 रुपए, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने की इसकी घोषणा। बठिंडा कोर्ट और अमृतसर में बम धमाकों की ईमेल धमकी, चला सघन सर्च अभियान।

गुरदासपुर के कलानौर की खबर है कि रंगदारी ना देने पर अस्पताल पर ग्रेनेड हमला, 6 घंटे में आरोपी गिरफ्तार। कलानौर के मुल्तानी अस्पताल पर हमले का मामला सुलझाया गया, विदेशी हैंडलर की भूमिका भी आई सामने। पंजाब में किसानों के लिए बढ़ी कर्ज सीमा, कम होगा ब्याज, अब जमीनें नहीं होंगी कुर्क। 26 साल पुरानी किसान क्रेडिट कार्ड प्रणाली में बदलाव किया गया है, अब एटीएम और यूपीआई की तरह कर सकेंगे इस्तेमाल। किसानों को होगा सीधा फायदा, कहा मुख्यमंत्री भगवंत मान ने। पंजाब में एसआईआर 25 जून से शुरू होगी, घर घर गणना होगी। सरकारी स्कूलों से 59 विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस उत्तीर्ण किया। पठानकोट जोगिंद्रनगर रेल मार्ग बहाल, 3 साल बाद दौड़ी रेल। पंजाब में 2 दिन ऑरेंज अलर्ट, तेज हवाओं के साथ होगी बारिश। पंजाब

हरियाणा के बाद अब चलते हैं हिमाचल की ओर। शिमला वकीलों ने सचिवालय के बाहर दिया धरना। प्रतिबंधित मार्गों पर बिना परमिट वाहन चलाने पर वकील, प्रशासन आमने सामने। मुख्यमंत्री ने बनाई इस मामले में सहमति, विशेष रियायत वाले परमिट होंगे वकीलों को जारी। और नशे में संलिप्त पाए गए 10 शिक्षक और गैर शिक्षक जल्द होंगे बर्खास्त। ये तो थी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से जुड़ी हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। अब बारी गाने की।

0: श्रोताओं, आजकल के दौर में बढ़ती उम्र में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या आम हो चुकी है और साथ ही उससे जुड़ी एक गंभीर समस्या हिप फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर भी बढ़ गई है। तो क्या है ऑस्टियोपोरोसिस के कारण, निदान व इलाज, इस सब पर चर्चा करने के लिए आज दोपहर 2:30 से 3 तक FM लाइफलाइन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे डॉक्टर संजय बडाडा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, PGI चंडीगढ़। हमारे फोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619, यानी 2660615, 2660617, 2660619। STD कोड 0172। इस बार के FM लाइफलाइन की रिकॉर्डिंग का समय रहेगा दोपहर 2:30 से 3 तक। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा।
1: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या?

0: तब भी?
1: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
0: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
1: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
0: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
1: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
0: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आज का अखबार कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती चंडीगढ़ से FM 107.2 MHz पर। अपने रेडियो सेट के साथ साथ इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज़ ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। अब एक नज़र आज की लोकल हेडलाइंस पर, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के स्थानीय समाचार पत्रों की। अखबारों में लिखा है कि GMCH 32 के अस्पताल के शौचालय में जूनियर डॉक्टर का शव, पोस्टमार्टम में साइनाइड। पुलिस का अनुमान है कि खुद इंजेक्शन लगाकर जान दी गई है, मौके से मिली शीशी और सिरिंज। पंचकुला से चल रहा था इंटरनेशनल साइबर रैकेट, सेक्टर 2 में आधी रात को रेड, फर्जी कॉल सेंटर से 21 गिरफ्तार किए गए हैं, 4 मास्टरमाइंड 7 दिन के रिमांड पर लिए गए हैं। चंडीगढ़ के DC ने दिए निर्देश, स्कूल कैंपस के भीतर ही बस में चढ़ेंगे उतरेंगे बच्चे। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में स्वच्छता संकल्प यात्रा के तहत छात्रों ने किया श्रमदान, विद्यार्थियों का संकल्प, स्वच्छता की आदत बनाएंगे। चंडीगढ़ में झुलसाती गर्मी से मिलेगी राहत, 3 से 4 जून को ऑरेंज और 5 से 6 जून को येलो अलर्ट, 3 दिन आंधी और बारिश का अलर्ट। चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की खोज, अब उड़ान के खतरे समझना होगा आसान। भारत की पहली विश्वविद्यालय स्तरीय वर्टिकल स्पिन टनल परियोजनाओं में शामिल हुए पैक के विद्यार्थियों की खोज। पंजाब यूनिवर्सिटी में UG कोर्सेज के लिए आज से भरे जाएंगे फॉर्म। मोहाली के सरकारी स्कूलों में 6ठी कक्षा से शुरू होगी AI की पढ़ाई। चंडीगढ़ में पब्लिक बाइक शेयरिंग से पिछले 1 साल में ये पाया गया कि 3.6 लाख किलोमीटर साइकिल चलाई गई, 3,600 किलो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम, जो 1,600 पेड़ के बराबर है। और पंचकुला से खबर है कि पंचकुला में ट्राई का उपभोक्ता आउटरीच कार्यक्रम आज दोपहर 3 बजे। ये तो थी लोकल हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की, स्थानीय समाचार पत्रों की। अब एक और खबर आपसे शेयर करते हैं। चीन अमेरिका को पछाड़ेगा देसी धागा, जो केले और भांग से बनेगी बुलेट प्रूफ जैकेट। भारत अब अपनी सदियों पुरानी विरासत को दुनिया का सबसे आधुनिक हथियार बनाने जा रहा है। खेत में फेंके जाने वाले केले के तने, भांग की झाड़ियां और मदर के रेशे अब केवल

ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं रहेंगे। केंद्र सरकार की नई रणनीतिक योजना के तहत इनसे बुलेट प्रूफ जैकेट, पैराशूट और शानदार गाड़ियों के पुर्जे बनाए जाएंगे। ये न्यू एज नेचुरल फाइबर न केवल कपास और ऊन से 3 गुना अधिक मजबूत है, बल्कि वजन में भी बेहद हल्के हैं। अगले 5 वर्षों में भारत का रक्षा और ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरी तरह बदलने वाला है। सियाचिन और लद्दाख जैसे बर्फीले इलाके में तैनात जवानों के लिए इनसे स्लीपिंग बैग बनाए जाएंगे। ये है स्वदेशी तकनीक, मेक इन इंडिया। और दोस्तों, आज है विश्व साइकिल दिवस। 10:05 पर आज के हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में हम चलाएंगे मिलकर साइकिल। तो टॉपिक रहेगा, साइकिल चलाएं, सेहत बनाएं, पर्यावरण बचाएं। अपने अनुभव हमसे शेयर करें।

0: और साथियों, आज के इस प्रोग्राम यानी आज का अखबार का समय समाप्त हो चला है। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने आसपास का भी ख्याल रखते जाइए। अनिल पुंज को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: आज का अखबार।
0: ये आकाशवाणी का चंडीगढ़ केंद्र है, एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10 बजने को ही कुछ ही पलों में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा।
3: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य

0: सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। पहले चरण में लाभार्थियों के बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपये भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आपदा जोखिम न्यूनीकरण समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों का आपसी संपर्क बढ़ेगा और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को बधाई दी है। तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। एलिस कैप्सी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, साथ ही उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी मिला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़।
3: आवाज जो दिल से दिल तक पहुंची, आवाज जो वक्त के पार पहुंची,
4: यादें जो हर पीढ़ी में जिंदा रही। साल था 1936 जब भारत में पहली बार गूंजा
3: ये आकाशवाणी है।
4: तभी से शुरू हुआ एक सुनहरा सफर, सूचना, संस्कृति, खेल और संगीत का अद्भुत संगम।
3: 90 वर्षों से आकाशवाणी है भारत की आवाज।
4: कभी किसान का साथी तो कभी सैनिक की प्रेरणा,
3: कभी घर की सुबह की शुरुआत तो कभी देर रात का साथी।
4: आज जब डिजिटल दुनिया है, आकाशवाणी अब भी दिलों को छू रहा है अपनी सादगी, अपनी गरिमा और अपनी परंपरा से।
3: आइए मिलकर मनाएं आकाशवाणी के सुनहरे 90 वर्षों का सफर, क्योंकि ये है भारत की आत्मा।
4: 90 वर्षों के आगे भी सफर जारी है, नई आवाजों, नई कहानियों के साथ।

0: ये आकाशवाणी है।
1: और प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़।

0: नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इस लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में हम आपके साथ हैं और अब से लेकर 11 बजे तक इस प्रोग्राम में आज हम मिलकर चलाएंगे साइकिल। और जो लोग साइकिल का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, कुछ तो केवल एक्सरसाइज के तौर पर करते हैं, कुछ अपने कामकाज पर जाने के लिए आने के लिए दिन भर जितने काम होते हैं मोस्टली वो साइकिल पर ही करते हैं। तो साइकिल का हमारे जीवन में बहुत गहरा जुड़ाव है। एक ज़माना था जब शहर में साइकिलें ही साइकिलें होती थीं, आना जाना साइकिल पे हुआ करता था। तो ज़माना बदला, आराम मिला, बहुत सारी गाड़ियाँ आ गईं, लेकिन साइकिल फिर लौट आई, क्योंकि साइकिल केवल आने जाने का साधन नहीं है। साइकिल चलाने से हमारी सेहत अच्छी रहती है, हमारा आसपास हरा भरा रहता है, पर्यावरण हमारा बचा रहता है, प्रदूषण से निजात मिलती है। साइकिल से बहुत सारे फायदे हैं, इसीलिए दुनिया भर में एक दिन जो है वो साइकिल के नाम किया गया। साइकिल तो हर रोज़ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन एक दिन रखा गया है इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, इसको सलाम करने के लिए, इसकी उपयोगिता जो हमारे जीवन में है उसे मनाने के लिए। तो आज है वर्ल्ड साइकिल डे। आज इस प्रोग्राम में जो हमारा टॉपिक है वो जाहिर सी बात है साइकिल से ही जुड़ा हुआ है। साइकिल चलाएं, सेहत बनाएं, पर्यावरण बचाएं। एक साइकिल चलाने से, पैडल मारने से सेहत कैसे बरकरार रहती है, पर्यावरण कैसे बचा रहता है, इन तमाम बातों के बारे में हम बातें शेयर करेंगे। और हाँ, साइकिल चलाने के साथ आपके जो अनुभव हैं, जो आपके संस्मरण हैं, यादें हैं स्कूल के दिनों की, कॉलेज के दिनों की, आज भी आप सुबह सवेरे एक्सरसाइज के तौर पर साइकिल चलाते हैं, तो इन तमाम बातों के बारे में आप हमसे बात शेयर कर सकते हैं। घर से कहाँ तक सुबह आप साइकिल लेकर जाते हैं, फिर लौट कर आते हैं, कैसा आप अनुभव करते हैं, इन तमाम बातों के बारे में आपने हमसे शेयर करना है तो हमें अच्छा लगेगा। नंबर्स हमारे वही हैं, 2660615, 2660617 और 2660619। ये तीन नंबर्स हैं, इनमें से किसी एक नंबर को डायल कर लीजिए और साइकिल चलाने से जुड़े जो आपके अनुभव हैं वो हमसे साझा कीजिए। और ये बताइए कि साइकिल चलाना, सेहत बनाना और पर्यावरण बचाना, ये किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। प्रोग्राम की शुरुआत तो हो ही चुकी है, इंतज़ार बाकी आपका था वो भी पूरा हो गया है, यानी पहली कॉल हमें मिल गई है। हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो
0: जी।
1: जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार जी।
1: जी वर्ल्ड साइकिल डे के ऊपर जो आपने टॉपिक रखा है बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश त्रिपुरा बोल रहा हूँ।
0: जी त्रिपुरा से।
1: जी जी।
0: अपना पूरा नाम बताइए।
1: जी मेरा नाम है अविनाश तेली।
0: अविनाश
1: तेली।
0: जी अविनाश जी, बहुत अच्छा लगता है और इतनी दूर से आप फोन मिला रहे हैं और आज के इस प्रोग्राम में ये पहली कॉल आपकी।
1: जी जी, तो और भी अच्छा लगता है क्योंकि देखिए चंडीगढ़ में हमें ऐसे ऐसे टॉपिक मिलते हैं जो हम सबके जीवन में सुधार करने के लिए जो यहाँ पर अपने आपको मतलब कि एक अनुभव शेयर कर सकते हैं कि कैसे क्या हो। ये जो टॉपिक आप साइकिल के बारे में लेकर आए हैं, तो आज के जमाने में अगर हम देखें तो ऐसा मतलब कि

0: लोगों में बन चुका है कि अब यहाँ से आप मान लीजिए कि 5 मिनट की दूरी तय करना हो फिर भी लोग दो पहिए वाहन का इस्तेमाल करते हैं, इससे प्रदूषण भी बढ़ता है और साथ साथ जो बहुत सारे मतलब शब्द दूषण भी बढ़ता है, उसके बाद से हम सबकी सेहत में प्रभाव पड़ता है। तो हम अगर कहीं भी अगर जाना है तो पैदल चल सकते हैं या फिर साइकिल का उपयोग कर सकते हैं। जैसे साइकिल में देखिए हम बहुत सारे सामान भी उसमें लाद करके लेके आ सकते हैं बहुत ही आराम से, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होता है। हम सबकी एक्सरसाइज भी आपने सही कहा कि एक्सरसाइज भी होता है, तो जो हम शरीर चर्चा के लिए व्यायाम वगैरह करते हैं, तो अगर हम सुबह सुबह अगर साइकिल का प्रयोग करके अगर कहीं जा कुछ दूरी तय करें तो इन सबसे देखिए दौड़ने का जो भाग दौड़ करने का जो सिलसिला है वो हम सब पैडल मार के भी कर सकते हैं। तो इन सभी के लिए हम सभी के लिए साइकिल बहुत ही जरूरी साधन है। और पुराने जमाने में देखिए लोगों को जब शादी के बंधन जब बनते थे तो उसमें साइकिल का एक प्रकार था कि साइकिल दिया जाता था और तब का जो विचार था मन में लोगों साइकिल के प्रति, और वो सब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसलिए जागरूकता को बढ़ाने के लिए जो वर्ल्ड साइकिल डे के रूप में इस दिन को चुना गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है।
1: अविनाश जी आप ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं ना?
0: जी बिल्कुल।
1: आपके गाँव का नाम क्या है?
0: जी मेरा गाँव का नाम है देवान पासा।
1: जी तो आप अब ये बताइए, ये तो आपने हमें साइकिल के बारे में बताया कि लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, आप साइकिल कितना चलाते हैं?
0: जी हम देखिए स्कूल में जब जाया करते थे तो हम 4-5 दोस्त थे। तो
1: अच्छा जाया करते थे?
0: नहीं अभी भी चलाते हैं, मतलब अभी
1: अच्छा, स्कूल की बात कर रहे हैं।
0: जी अभी मतलब कुछ कम कर दिया, लेकिन मैं उसमें की बात कर रहा हूँ जब देखिए कितना तक चलाया था। हम लोगों ने एक मतलब कि उस समय हम लोगों ने अपने आप में कहा था कि चलिए आज हम कहाँ तक जा सकते हैं, तो उसमें हम लोगों ने 30 किलोमीटर दूरी तय किया था वो भी 3 घंटे में। तो ये मतलब कि बहुत ही मतलब स्पीड से गए थे और बहुत ही अच्छा लगा था उस समय, वो अनुभव मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। 3 घंटे में 30 किलोमीटर साइकिल से दूरी तय करना बहुत बड़ी बात होता है उस समय।
1: बहुत बड़ी बात है, और आपने बिल्कुल सही कहा, हमें अपना भी वक्त याद आ गया क्योंकि साइकिल से ही स्कूल से घर, घर से स्कूल तक जाना होता था, और फिर कभी छुट्टी वाले दिन ये भी प्रोग्राम बनता था जैसे आपने बताया कि आज साइकिल पे वहाँ चलेंगे, वहाँ घूमने चलेंगे।
0: जी उस समय हम लोगों को जैसे ही मतलब रविवार छुट्टी का मौका मिलता था तो हम सभी साइकिल से लेके निकल पड़ते थे, चलिए आज हम अपने क्षेत्र से कहीं दूर जाते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ से बांग्लादेश का बॉर्डर 30 किलोमीटर दूर है, तो हम सभी ने उस दिन तय किया था कि हम सब पूरा बॉर्डर के पास जाकर देखेंगे। वो BSF कैंप बना हुआ था वहाँ पर, हम सब BSF के कैंप वहाँ पर मिले थे, उन सभी से बात भी की, बहुत अच्छा लगा था उस समय का अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ आपको। तो तब हम लोग 10वीं कक्षा में पढ़ते थे।
1: जी तो आज आपको वो सभी बातें याद आ गईं।
0: जी।
1: ये तो है हाँ, आपने स्कूलों के दिनों की बात है, आज क्या स्थिति है साइकिल को लेकर, घर में साइकिल है कि नहीं?
0: आज भी देखिए हम कभी राशन लाने जाते हैं या फिर कहीं सामान लाने जाते हैं बाजारों में, तो हम सभी अभी भी साइकिल का प्रयोग करते हैं। वहाँ हमारे घर से बाजार 1 किलोमीटर दूर है और राशन जहाँ लाने जाते हैं वो 0.5 किलोमीटर दूर है, तो इन सभी जगह पे जाना होता है तो साइकिल का अभी भी प्रयोग करते हैं। घर में 2-2 साइकिल पड़ा हुआ है अभी भी और हम इसको प्रयोग करते हैं।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है अविनाश जी, आपने अपनी यादें जो हमसे साझा की साइकिल को लेकर, और साइकिल का हमारे जीवन में बहुत एक अटूट संबंध है और वो संबंध हमेशा बना रहेगा जितना भी आराम हमें मिले, जितनी भी सुविधाएं हमें मिले।
0: कम है ना, क्योंकि देखिए आप इसमें किसी पर तो टायर ट्यूब भी जरूरत पड़ता है, वो अब 1-2 साल तक चलता रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और इसमें खर्च भी कम होता है, हम सभी के लिए बहुत अच्छा लाभदायक एक साधन है साइकिल।
1: अब तो देखिए साइकिल जो है बड़े अलग अलग डिजाइन की हाई टेक साइकिल आ गई है ना?
0: जी वो तो आजकल के बच्चे चलाते नहीं है। हाँ,
1: और काफी साइकिल भी काफी महंगी हो गई है।
0: जी महंगी हो गई,
1: लेकिन एक सिंपल साइकिल होती थी जिसमें केवल एक बड़ी साधारण सी साइकिल, उसका एक अपना ही मजा था।
0: जी पहले हम लोग क्या किसी कक्षा में अगर हम टॉप करते थे तो हम सभी घर से अपने गार्जियन से ये दावा करते थे कि हमें साइकिल लाके दीजिए, साइकिल लाके दीजिए। आजकल के बच्चे क्या है साइकिल के प्रति उनका मतलब जागरूकता ही बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। वो
1: नहीं बच्चे भी साइकिल चलाते हैं, ऐसी बात नहीं, बच्चों के पास आज
0: चलाते हैं वो। और हाँ, किसी भी वाहन चलाने से पहले प्रैक्टिस तो साइकिल से ही करते हैं।
1: हाँ, अलग अलग अलग अलग डिजाइन की साइकिल्स हैं आज लगभग हर घर में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए अविनाश भाई, आपने इतनी दूर से कॉल मिलाया।
0: जी
1: और इतनी दूर से मतलब ये है कि भाई आपने इतनी दूर से हमें याद रखा और इस प्रोग्राम में आप हमेशा शामिल होते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी शुक्रिया, धन्यवाद।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आज वर्ल्ड साइकिल डे है। इस मौके पर हमारा टॉपिक है साइकिल चलाएं, सेहत बनाएं, पर्यावरण बचाएं। इसके साथ साथ साइकिल से जुड़े जो आपके अनुभव हैं, आपके स्कूल के दिनों के, कॉलेज के दिनों के, आज भी जो अनुभव हैं आपके, वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। कोई ऐसी घटना जो साइकिल चलाने के साथ जुड़ी हो, उससे कोई नई दिशा मिले, वो आप हमें ज़रूर बताएं, अगर हो सके तो शेयर करें। हेलो चंडीगढ़।
1: अनिल भाई को यश कुमार वर्मा जी, नमस्कार।
0: वाह यश कुमार वर्मा जी, वेलकम।
1: धन्यवाद।
0: आज आपकी तबीयत मुझे दुरुस्त लग रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जब आवाज दुरुस्त लगती
0: जी,
1: बीच बीच में हो जाती है ऐसी बात।

0: हेलो चंडीगढ़,
1: अनिल भाई को यश कुमार वर्मा जी, नमस्कार।
0: वाह यश कुमार वर्मा जी, वेलकम।
1: धन्यवाद आपका।
0: आज आपकी तबीयत मुझे दुरुस्त लग रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जवाब दुरुस्त
0: जी,
1: बीच में हो जाते हैं ऐसी बात।
0: हम हैं ना आपके लिए दुआएं करने के लिए।
1: अरे बिल्कुल बिल्कुल, दुआएं बीच में दो जा गया।
0: चलिए फिर साइकिल चलाएं आज।
1: साइकिल रोज चलाते हैं सर।
0: रोज चलाते हैं, वाह क्या बात है। अच्छा कहाँ से कहाँ जाते हैं?
1: यही 45 से 46 तक।
0: बस
1: 1 किलोमीटर।
0: बहुत अच्छी बात है, आना जाना 2 किलोमीटर हो गया।
1: और सबसे बड़ी बात पैदल चलता हूँ।
0: नहीं आज हम पैदल की बात है, आज साइकिल की बात करेंगे। क्योंकि देखिए हर हर एक बात के साथ ना बहुत सारी बातें जुड़ जाती हैं।
1: जी जी,
0: क्योंकि हर चीज का हर चीज के साथ कुछ ना कोई संबंध है। लेकिन आज सिर्फ साइकिल की बात करेंगे, पैदल की बात नहीं करेंगे, आज साइकिल की बात करेंगे।
1: साइकिल तो मैंने बहुत आपके बच्चे, क्योंकि साइकिल ना जो जैसे बच्चे नए लाखों साइकिल आ गई। हेलो।
0: हाँ जी जी जी,
1: लाखों लाखों जैसे मैं उनका तो सोचता हूँ कि बुलेट बुलेट की कीमत बराबर साइकिल मिल रही है।
0: साइकिल की कीमत क्या है?
1: बुलेट के बराबर, बुलेट
0: बुलेट के बराबर हो गई। अच्छा मोटरसाइकिल की बात आप कर रहे हैं?
1: नहीं, हाँ मोटरसाइकिल, साइकिल तो साइकिल की कीमत ना साइकिल लाखों की, साइकिल साइकिल लाखों की मिल रही है।
0: हाँ वो तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि साइकिल आज हाईटेक हो गई हैं, अलग अलग डिजाइन की आ गई हैं, अलग अलग कलर की आ गई, कलरफुल आ गई हैं, तो वो अपनी अपनी ओर आकर्षित करती हैं। बच्चों की साइकिल अलग तरह की हैं, यंग के लिए अलग तरह की हैं, और जो उम्र दराज हैं उनके लिए अलग तरह की साइकिल्स हैं। आज साइकिल जो इंडस्ट्री है इस मामले में, और ख़ास तौर से कोरोना पीरियड के बाद ना, साइकिल इंडस्ट्री ने काफ़ी उसमें बूम आया। तो यश जी, हमारा जो शहर है, हमारा जो शहर है, हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे शहर में सड़कें इतनी प्यारी हैं, अच्छी हैं, समतल हैं, और यहाँ अलग साइकिल ट्रैक्स बने हुए हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ 600 के करीब डॉकिंग स्टेशंस हैं, जहाँ पर 5000 साइकिलें, स्मार्ट बाइक उपलब्ध हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, साइकिल पर ना।
0: और ये भी खबर है आज के अखबार में लिखा कि 200 से 400 लोग रोजाना इनका इस्तेमाल भी करते हैं, और वीकेंड पर तो संख्या और भी ज्यादा हो जाती है।
1: चलाते तो साइकिलें चलाते हैं, बहुत अच्छी चलाते हैं।
0: 700 किलोमीटर रोजाना चल रही हैं साइकिलें।
1: और देखिए सबसे बड़ी बात देखिए कि इन साइकिलों पे ना जो लोग अच्छी चलाते हैं, अच्छी चलाते हैं, वो कुछ साइकिलें ऐसे उठा कर ना इधर उधर करके फेंक देते हैं, वो गलत लगता है।
0: और इस तरह से साइकिल्स की जितनी भी चर्चा करें, जितने भी पैडल मारें उतने कम है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पक्की बात है। और मैं क्या भी रहा था, सोच रहा था
0: जितने पैडल मारेंगे उतनी सेहत अच्छी रहेगी आपकी, फिटनेस बरकरार रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आप
1: दो लाइनें कहूंगा
0: जी, कहिए
1: कि जैसे ना मतलब आज परिवारों को
0: क्या कह रहे हैं
1: जी, कि जैसे हम ना आजकल पर्यावरण को बचाना है तो मतलब साइकिल को जोर भागना है।
0: जी जी जी जी जी, तो यश कुमार वर्मा जी आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं प्रोग्राम में बात करने के लिए। और अब हम चलते हैं साइकिल के सफर पर, चले।

श्रोताओं, आजकल के दौर में बढ़ती उम्र में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या आम हो चुकी है और साथ ही उससे जुड़ी एक गंभीर समस्या हिप फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर भी बढ़ गई है। तो क्या है ऑस्टियोपोरोसिस के कारण, निदान व इलाज, इस सब पर चर्चा करने के लिए आज दोपहर 2:30 से 3 तक FM लाइफलाइन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे डॉक्टर संजय बडाडा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, PGI चंडीगढ़। हमारे फोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619, यानी 2660615, 2660617, 2660619। STD कोड 0172। इस बार के FM लाइफलाइन की रिकॉर्डिंग का समय रहेगा दोपहर 2:30 से 3 तक। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आज विश्व साइकिल दिवस है। इस मौके पर हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम का टॉपिक है, साइकिल चलाएं, सेहत बनाएं, पर्यावरण बचाएं। इस प्रोग्राम के बाद 11 बजे आप सुनेंगे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। 11:15 पर सुरबहार प्रोग्राम में कुछ गैर फिल्मी रचनाएं और 11:30 पर संजीवनी प्रोग्राम में आज जानकारी देंगे होम्योपैथी के विशेषज्ञ कि गर्मी से जो संबंधित बीमारियां हैं उनसे कैसे निपटा जाए, कैसे बचाव किया जाए। डॉक्टर अदिति गर्ग जानकारी देंगी। और अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं हेलो चंडीगढ़ को इस कॉल के साथ। हेलो चंडीगढ़।
2: हाँ जी नमस्ते

0: जी नमस्कार जी।
1: मेजर विजय आर्या HM42 फेज 2 मोहाली चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ सर।
0: जी विजय जी क्या हाल है?
1: बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। आज मेरे काम का टॉपिक आ गया इसलिए मैं तब से शुरू से लग गया, पर पता नहीं पहला कॉल क्यों नहीं लगता है कभी।
0: पहला कॉल
1: एक बार तो पहला लग जाए मेरा।
0: पहला कॉल त्रिपुरा से लगा।
1: बहुत ये पता नहीं कैसे कैसे किनका लग जाए, हम लगातार लगे रहते हैं तब भी नहीं लगता है सर। चलो दे रहा है, दुरुस्त है सर।
0: जी जी आपने ऐसा लगता है कि आपने साइकिल जो है कम स्पीड पे चलाई।
1: पूरी जिंदगी सर मैंने 75 साल तक लगातार साइकिल चलाई है। सिर्फ 2 साल हुए अभी बच्चों ने मेरे उठा के चौकीदार को दे दी साइकिल।
0: जी
1: तो अभी भी साइकिल पे चलता था सर पूरी जिंदगी। यहाँ से अम्बाला, राजपुरा, पटियाला, गुरुकुल, कुरुक्षेत्र हर साल साइकिल में ही जाता था सर।
0: अच्छा
1: आर्य समाज के प्रचार में पीछे बैग रखता था, आगे ओम का झंडा और आगे पहुंच जाता था गुरुकुल कुरुक्षेत्र। अरे गेट पे तैयार रहते थे भी मेजर साहब आने वाले हैं,
0: किताबें
1: लेके साइकिल पे आने वाले हैं, झंडे लगे होते थे ओम के सर।
0: तो कितनी देर लगती थी विजय जी आपको कुरुक्षेत्र पहुंचते हुए?
1: 4 घंटे में पहुंच जाता था, 3 से 4 घंटे।
0: अच्छा रास्ते में कितनी देर?
1: एक स्टॉपेज करता था 1 घंटा बाद, वहां पे एक आर्मी का ही मेरा दोस्त था मिशन डिपो में, उसके बाद 1 घंटा रुके कुछ खा पी के फिर वहां से लगातार साइकिल चलता था सीधा कुरुक्षेत्र गेट पे जाके एंटर होता था सर।
0: नहीं रास्ते में कहाँ रुकते? रास्ते में कहाँ रुकते थे आप?
1: रास्ते में दप्पड़ में रुकता था सर, एक तरफ जगह।
0: अच्छा, अच्छा, अच्छा। 1 घंटे के लिए?
1: नहीं हाँ 1 घंटा बाद दोस्त था एक, कैप्टन साहब मेरा दोस्त एक, तो उनके घर पे ही लंच होता था, नाश्ता वगैरह किया वहां पे, फिर वहां से 1 घंटा रुक के फिर चल देता था सर, बाकी कहीं नहीं रुकता था सर मैं।
0: अच्छा
1: तो ऐसा मैंने
0: गर्मी सर्दी
1: 12 महीने 30 दिन सर, कभी भी आरिस माज का प्रोग्राम होना और चल देना, पीछे बैग रहता था किताबों का और आगे ओम का झंडे लगे होते सर दोनों तरफ।
0: अच्छा मतलब इस तरह से
1: पटियाला भी जाता था, राजपुरा भी, सिर्फ साइकिल पे ही घूमता था सर।
0: इस तरह से आप अपना काम भी करते थे, पर्यावरण भी बचाते थे,
1: पंथ दो काज हो जाते थे सर।
0: जी जी जी जी बहुत अच्छी बात है। और यही मुझे लगता है
1: साइकिल पे
0: विजय जी यही मुझे लगता है कि आपकी फिटनेस का राज है।
1: बिल्कुल फिटनेस, आज तक मैंने कभी जिंदगी 1 रुपए की दवाई नहीं खाई, अभी जाके थोड़ा घुटनों में प्रॉब्लम हुई है पर फिर भी चल फिर रहा हूँ। अभी कल जा रहे हैं देहरादून, जा रहे हैं गुरुकुल देहरादून, आने के बाद फिर गुरुकुल शिमला। तो
0: अच्छा आजकल
1: इसी तरह चलते रहते हैं सर। बिल्कुल
0: हाँ हाँ, आजकल फिर साइकिल तो नहीं चला पाते होंगे घुटनों में दर्द है।
1: मेरी बच्चों ने उठा के 2 साल पहले चौकीदार को दे दी, पापा नहीं मेरे छोड़ने वाला साइकिल, उन्होंने दे दी, वो बोलता जी मेरे से गुम होगी, उसने गैर भी कर दी।
0: नहीं अब तो आपके घुटनों में आपने बताया ना कि थोड़ी समस्या है।
1: सर अभी क्या है कि विक्की बैटरी वाली है, बिजली फिर वाली नहीं, बैटरी
0: अच्छा,
1: वाली विक्की ले रखी है सर।
0: अच्छा,
1: उसी में जाता हूँ सारी समाज और जाता हूँ आता हूँ बस।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके।
1: पैदल बाकी पूरा पैदल, शाम को 7 से लेके 8 बजे तक सारे पार्क में पैदल सैर करते हैं सर अभी आजकल।
0: आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, आपका सफर हमेशा सुखद रहे यही हमारी दुआएं हैं। शुक्रिया बात करने के लिए,
1: धन्यवाद।
0: हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो सर
0: जी, वेलकम जी,
2: कैसे हैं आप?
0: बहुत बढ़िया, अपना नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
2: संजीव गर्ग बोल रहा हूँ सर, मोहाली से, पहले भी आपसे बातचीत होती रहती है मेरी।
0: प्रवीण
2: संजीव गर्ग
0: संजीव गर्ग जी, वेलकम जी। हाँ। संजीव जी
2: और आप कैसे हैं भैया?
0: बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे है। आपका मतलब आना हो गया प्रोग्राम में, हमें अच्छा लगा और भी अच्छा लग रहा है।
2: मैं तो सर जब से ये शुरू किया ना, जब से ट्राई कर रहा हूँ और अब मिला है
0: जी। साइकिल चलाते चलाते अब पहुँचे आप?
2: अरे बिल्कुल सर बिल्कुल, ये तो जो पहली क्रेविंग थी ना बचपन की, वो साइकिल ही होती थी।
0: जी जी जी
2: है ना, बचपन में सबसे पहले तो वो दूसरा साइकिल मिलता था छोटे वाला,
0: कैंची साइकिल
2: मिलता था,
0: कैंची साइकिल चलाते थे
2: पहले। हाँ पहले छोटा घर में चलाना है ना, फिर उसके बाद कैंची साइकिल से सीखा, टूटे भी खाई है ना, पर इसकी क्रेविंग नहीं कम हुई। अब तो जमाना और आ गया सर, उस वक्त हम लोग किराए पे लेकर साइकिल चलाते थे।
0: जी जी और देखिए संजीव जी, कैंची साइकिल चलाते चलाते ये डरते थे कि काठी पे बैठना बड़ा मुश्किल लगता था।
2: बिल्कुल लगता था,
0: कैसे बैलेंस करेंगे।
2: बिल्कुल,
0: और धीरे धीरे करत करत अभ्यास वाली बात है कि फिर वही जो बच्चा चलाते चलाते काठी पे बैठता था और साइकिल को बड़ी अच्छे ढंग से चलाता था।
2: बिल्कुल, और फिर सर ऐसी जगह देखनी जब काठी पे बैठ जाना कि कोई स्पोर्ट मिल जाए जहाँ पे साइकिल का अपना पैर रखकर उससे उतर सके।

0: जी
1: है ना। तो बस फिर साइकिल वाला तो जो अब सीन अब तो बहुत ज्यादा एडवांस कर दिया है, साइकिल ट्रैक बन चुके हैं लोगों के लिए, और जो साइकिल जो फिजिकल जो फिटनेस आती थी साइकिल से, अब तो सर वो बात ही नहीं रही है। अब तो पहले साइकिल, साइकिल से फिर स्कूटर, स्कूटर से फिर कार से हम लोग जिम जाते हैं अपने आप को पतला करने के लिए, फिर साइकिल।
0: जी जी अब देखिए साइकिल यू टर्न ले लिया है लोगों ने, आपको हर घर में, शहर के लगभग हर घर में, लगभग हर घर में साइकिल मिलेगी।
1: बिल्कुल सर, ये
0: ट्रेंड बन गया है,
1: जो ट्रेंड चला ना एकदम हाँ, से साइकिल का सर जी।
0: ये केवल फिटनेस एक्टिविटी नहीं, अब ये हर घर का एक ट्रेंड बन गया है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ट्रेंड बन चुका
0: आपको
1: है।
0: आपको हाईटेक साइकिल देखने को मिलेगी, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके उनकी बात कर रहा हूँ मैं, हाईटेक साइकिल मिलेगी।
1: सर बताता हूँ, मेरे पास उस वक्त ना वो गियर वाले साइकिल आते थे
0: जी,
1: तो मेरे को याद है वो 3-4 गियर वाला साइकिल था, और वो जब मतलब उसको भगाते थे तो आज की जो लूना या स्कूटी है ना उसका मुकाबला करता था उस वक्त वो
0: जी, और ताकत भी बड़ी होती थी, पूरी रेस लगाया करते थे।
1: बिल्कुल सर,
0: साइकिल रेस हुआ करती थी।
1: साइकिल अगर खराब हो जाना तो वो उसका जो चक्का निकाल के ना डंडा बीच में डाल के
0: जी
1: वो उसको भगाते फिर ना।
0: और आपको ये बताऊं संजीव जी कि चंडीगढ़ जैसे शहर में जहां बहुत शानदार साइकिल ट्रैक बने हैं, डॉकिंग स्टेशंस हैं, जहां पर हम जब चाहें साइकिल लेकर जहां तक हमें जाना जा सकते हैं वहां से और आगे जा सकते हैं, इस तरह से जो ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है स्मार्ट बाइक जो है चंडीगढ़ में, उनका ये कहना है कि 30,000 किलोमीटर का सफर हर महीने जो तय होता है साइकिल से, और इससे क्या हुआ है कि 3,000 किलो CO2 एमिशन कम हुआ है, यानी प्रदूषण इसके चलाने से कम हुआ है। और इससे भी सबसे बड़ी बात यह बताई गई है कि ये जो एमिशन कम हुआ है ये लगभग 1,600 पेड़ों के बराबर है।
1: क्या बात है सर, क्या बात है ना
0: जी,
1: ये तो बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी है। 1,600 पेड़ कहने की बात है सर, कहना बड़ा आसान है।
0: और हमारे हमारे शहर में, पूरे शहर में कहते हैं कि करीब 210 किलोमीटर लंबा डेडिकेटेड साइकिल ट्रैक नेटवर्क मौजूद है।
1: वाह जी वाह,
0: तो फिर हम साइकिल चलाने के लिए आनाकानी क्यों करें।
1: नहीं नहीं बिल्कुल सर बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी है, और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन भी इसके लिए बहुत कुछ कर रहा है।
0: अब जब से प्रधानमंत्री जी ने हमें थोड़ा संयम रखने के लिए सलाह दी थी, तो वो सलाह यही थी कि अगर हम बात करें पेट्रोल डीजल को बचाने की, तो जहां तक हम साइकिल से जा सकते हैं तो जाना चाहिए। लोगों ने जाना भी शुरू किया, और सरकारी दफ्तरों के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी अपने अपने कार्यालय जाने के लिए साइकिलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। खुद चंडीगढ़ के प्रशासक जो हैं खुद वो साइकिल उन्होंने चलाई है। तो ये संदेश है कि हम साइकिल चला के अपनी सेहत भी बचा सकते हैं, पर्यावरण को भी संभाल सकते हैं,
1: और इसके लिए सर लोग ना अवेयर भी हो रहे हैं
0: जी। तो संजीव जी आप आजकल साइकिल चलाते हैं कि नहीं।
1: नहीं सर, मैं अब साइकिल नहीं चलाई मैंने, लेकिन मैंने लॉकडाउन में साइकिल जरूर लिया था उस वक्त 32,000 का कि मैं चलाऊंगा है ना,
0: तो उसके बाद नहीं चलाया।
1: मैंने साइकिल चलाया ही नहीं सर, तो मेरे को आखिर जिम में जाके चलाना पड़ा, मेरा वेट जब बढ़ गया ना।
0: आप ऐसा कीजिए, आज वर्ल्ड साइकिल डे पे ये तय कर लीजिए कि कल से साइकिल निकालेंगे।
1: जी जरूर सर, आप जैसे शख्स के साथ ये कमिटमेंट करने को मिल रही है तो क्यों नहीं, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर।
0: हाँ जी शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद
1: है ना।
0: तो अपनी बातों को विराम देते हैं और चलिए मिलकर साइकिल के सफर पर निकलते हैं, और प्यारे से गाने के साथ।
1: थैंक यू सो मच सर, नाइस टू टॉक टू यू सर, थैंक यू।

वेलकम बैक दोस्तों, हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती चंडीगढ़ से एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अपने रेडियो सेट के साथ साथ इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज़ ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। वर्ल्ड साइकिल डे पर हमारा आज का टॉपिक है, साइकिल चलाएं, सेहत बनाएं, पर्यावरण बचाएं। और हमारे श्रोता बहुत अच्छा लग रहा है, साइकिल से जुड़े अपने अनुभव शेयर भी कर रहे हैं और किस तरह से फिटनेस बनी रहती है, सेहत बनी रहती है, एनवायरनमेंट अच्छा रहता है, इसके बारे में भी बता रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश में, हमारे शहर में साइकिल जो है

0: बरसों पुरानी परंपरा है। और लेकिन अगर दुनिया भर के देशों की बात करें जहां आज भी साइकिल का क्रेज़ बरकरार है, लोग साइकिल को बहुत प्यार करते हैं, साइकिलिंग को बहुत प्यार करते हैं। नीदरलैंड्स की बात करें तो यहां के लोग दुनिया के सबसे ज़्यादा साइकिल फ्रेंडली हैं। आधी आबादी साइकिल पर चलती है, अलग हाईवे बने हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्किंग गैराज यहाँ पर है, यानी 13,500 साइकिल इसमें आ जाती हैं, वो यहीं पर हैं, नीदरलैंड्स में हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो की बात करें तो 600 किलोमीटर के साइकिल ट्रैक बने हैं। धीरे धीरे कारों की पार्किंग को साइकिल पार्किंग में बदला जा रहा है। कुछ वहाँ मार्केट में केवल साइकिल से ही जाने की परमिशन है। कुछ खास मार्केट्स हैं वहाँ पे नॉर्वे में जहाँ आप तभी वहाँ जा सकते हैं अगर आप साइकिल पर आए हैं। और बात करें फ्रांस की, फ्रांस का सबसे बड़ा अर्बन साइकिल नेटवर्क है स्टेट्सबर्ग। अलग लेन बने हैं, हाईवे पर स्पेशल सेंसर लगे हैं जो बताते हैं कि किस स्पीड पर चलने से अपने गंतव्य डेस्टिनेशन पर कितनी देर में आप पहुंच सकते हैं। और आपको ये भी मालूम है कि फ्रांस एक ऐसा देश है जहां साइकिल रेस जो है दुनिया के लिए मानी जाती है, और आए दिन कोई ना कोई वहां रेस जो है साइकिल से जुड़ी हुई वो होती है और लोग बड़े उत्साह से चाव से भाग लेते हैं। तो हम अपने शहर की बात करें चंडीगढ़ शहर की, तो 3.6 लाख किलोमीटर साइकिल चलाई गई हैं, 36,000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम हुआ है। और जैसा कि हमने आपसे शेयर किया था कि ये जो कम होना है ये 1,600 पेड़ों के बराबर है, ये कोई छोटी बात नहीं। तो आइए अब अगले श्रोता से बात की जाए। हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो
0: जी,
2: तुसी जिस व्यक्ति नाल गल कर रहे हो,
0: तो चलिए इनसे संपर्क बन नहीं पाया, खैर कोई बात नहीं। और आज वर्ल्ड साइकिल डे पर हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। हेलो चंडीगढ़ जी, तो जैसे कि हमने बताया था कि हमारे शहर में 5,000 साइकिलें उपलब्ध हैं। शहर के करीब 600 डॉकिंग स्टेशंस पर ये साइकिलें उपलब्ध रहती हैं जाने आने के लिए। हेलो चंडीगढ़, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
3: हेलो
0: जी।
3: सर गुड मॉर्निंग।
0: वेरी गुड मॉर्निंग।
3: सर मैं संदीप वासुदेव बात कर रहा हूँ नंगल से।
0: जी आनंदपुर साहिब से?
3: नहीं नंगल से।
0: नंगल से, नंगल से। वासुदेव जी बहुत दिनों के बाद बात हो रही है आपसे।
3: हाँ जी बिल्कुल ठीक बताया जी। आपने काफी दिनों बाद बात हो रही है आपसे।
0: आप रास्ते में हैं या पहुंच गए अपने काम?
3: नहीं सर मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूँ जी।
0: जी तो जाहिर है गाड़ी में आए होंगे।
3: जी सर क्योंकि मेरा थोड़ा 30 किलोमीटर पड़ जाता है डिस्टेंस तो।
0: अच्छा संदीप जी जब मौका मिलता है तो साइकिल चलाते हैं?
3: जी सर मैं रेगुलर साइकिल चलाता हूँ जी, और हमारे नंगल में कल हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है बाईसाइकिल राइड संडे को, तो वो भी एक नेशनल इवेंट है फिट इंडिया के साथ मिलके, तो हम लोग वो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं।
0: वेरी गुड, ये किया है कि करना है?
3: नहीं सर हो चुका है ये।
0: हो चुका है मतलब हमारे प्रोग्राम से पहले पहले आपने काम कर दिया?
3: जी सर जी।
0: कैसा रहा ये जो अनुभव आपका?
3: नहीं सर अभी इवेंट होना है उसकी प्लानिंग सारी हो चुकी है हमारे।
0: अच्छा प्लानिंग हो चुकी है, इवेंट अभी बाकी है।
3: इवेंट फाइनलाइज हो चुका है और इस संडे को हम प्लान कर रहे हैं।
0: कहाँ से कहाँ तक जाएंगे
3: ये सर? 25 किलोमीटर की राइड है नंगल से भाखड़ा डैम तक, उसमें 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर इवन जो रनिंग के लिए है वो भी रखा हुआ है, तो अराउंड 100 विलेजेस के हमारे आसपास के सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और ये काफी बड़ा इवेंट है। हमारे नंगल के एनसीबी के हैं मिस्टर करण, वो सारा

0: ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसको, तो इट विल बी अ बिग इवेंट जो हमारा नेक्स्ट इस वीक में आएगा सर।
1: तो ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है, और इससे एक तरह की आप वर्ल्ड साइकिल डे को ये समर्पित कर रहे हैं
0: जी सर, बिल्कुल
1: और जागरूकता बढ़ा रहे हैं,
0: जी सर,
1: सेहत बना रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं।
0: सर एनवायरनमेंट को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में, तो हमारा डेथ वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है कि हमें एक अच्छा काम टूवर्ड्स एनवायरनमेंट करना चाहिए।
1: और संदीप जी, आपने ये भी देखा होगा कि कोविड के बाद ना इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर साइकिलिंग से जुड़े पेज हैं, अलग से ग्रुप्स बने हुए हैं, कई चैनल्स हैं
0: जी सर,
1: जो आपको प्रेरित करते हैं
0: जी सर,
1: और बताते हैं कि हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे। तो इस तरह से साइकिल राइडर्स जो हैं वो उससे जुड़े रहते हैं, तो ये वाकई ये जागरूकता बढ़ी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं।
0: नहीं सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट सर मेरी एक सुजेशन ये है,
1: जी, जी.
0: मेरे को लगता है कि हम लोग कैसे इसको डीप रूट लेवल तक लेके जा सकते हैं। अगर हम जैसे सर हम लोग छोटे थे तो अपने साइकिल पे ही हमने स्कूल जाना, साइकिल से ही आना, तो अगर हम लोग ये प्राइमरी लेवल पे इनकलकेट कर दें बच्चों को, टीचर्स के साथ मिलके, पेरेंट्स को, कि बच्चों को आप प्राइमरी लेवल पर ही ये चीजें उनके दिमाग में डालें कि वी हैव टू सेव फ्यूल्स, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, तो मेरे को लगता है कि वो ही बच्चे जब आगे चल करेंगे तो उनके जो हैबिट हमारी बन जाती है एक पूरे इस दौरान, तो वो काफी लंबे टाइम तक रहती है। अब हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो मे बी संडे को जाते हैं, बट अगर हम यही चीज अपने बच्चों को शुरू से ही डाल दें कि हमने साइकिल पर ही जाना है, आजकल तो सर साइकिल बड़े फैंसी से आ रहे हैं, लाखों रुपए के साइकिल हैं, गियर्स हैं उनमें सब में, बट एट द सेम टाइम वो हमें फिट भी रखते हैं और जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं उसके लिए भी बहुत हमारी हेल्प करते हैं। मेरा तो ये मानना है कि जैसे हम लोग 140 करोड़ की पॉपुलेशन हो चुकी है, अगर उसका 1% भी जो व्हीकल यूज करता है तो उसका मतलब होगा 14 करोड़ लोग। अगर 14 करोड़ लोग 1 लीटर पेट्रोल भी एक दिन का सेव करेंगे तो सर आप इमेजिन कीजिए कि 14 करोड़ लीटर पेट्रोल हम एक दिन का सेव कर सकते हैं, तो ये टारगेट 1 लीटर का तो हम ले सकते हैं अपने लाइफ में।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल पर जो हमारी निर्भरता है आम जीवन के लिए, वो कम होगी
0: जी सर,
1: और सेहत भी बरकरार रहेगी। तो मुझे ये जानकर संदीप जी बहुत अच्छा लगा कि आप 25 किलोमीटर का सफर तय करेंगे साइकिल अभियान को लेकर, और हमारी दुआएं हैं कि आपका जो ये अभियान है वो सफल रहे, हंसते गाते आप जाएं और हंसते गाते लौट कर आएं।
0: थैंक यू
1: आपका
0: so
1: शुक्रिया
0: much,
1: बात करने के लिए, इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होने के लिए।
0: थैंक यू सो मच सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टू टॉक टू यू।

बैठी रहना हिलजुल लैला, के तुझसे कमाना है किराया पहला पहला, किराया पहला पहला। ओ जाने मन सुन ले, ये दीपिका कुमारी है, ये दीपिका कुमारी हसीनों की सवारी है, हसीनों की सवारी।

वेलकम बैक दोस्तों, आज के हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में वर्ल्ड साइकिल डे पर बातें हो रही हैं, अनुभव साझे हो रहे हैं और साइकिल के प्रति हमारा कैसा जुनून है, क्रेज है, किस तरह से जागरूकता बढ़ाने के लिए लोग अपने अपने स्तर पर अभियान चला रहे हैं, ये साइकिल के प्रति जो गहरा लगाव है, चाव है, ये नज़र आता है। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि साइकिल चलाएं, सेहत बनाएं, पर्यावरण बचाएं, ये अब वक्त की मांग है। तो इस मांग में हम जितना भी अपना योगदान पा सकते हैं तो हमें पाना चाहिए। जैसा कि हमने बताया कि शहर में पब्लिक बाइक शेयरिंग से पिछले एक साल में बहुत कुछ मिला है और सबसे बड़ी बात है कि एमिशन कम हुआ है और 1600 पेड़ों के ये बराबर है। अगर इस तरह से हम और भी प्रयास करें और शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें तो ये जो पेड़ों की संख्या है और भी ज़्यादा हो सकती है। आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए हमारा हवा पानी का शुद्ध रहना है और हवा को शुद्ध बनाने के लिए हमें साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि गर्मियों के मौसम में साइकिल चलाना थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन जिनके पास केवल आने जाने का साधन साइकिल है वो तो साइकिल का ही इस्तेमाल करेंगे, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कैसा भी मौसम हो, क्योंकि जाने आने के लिए साइकिल उनके पास है। लेकिन जिनके पास बाकी साधन हैं यातायात के, वो अपने घरों में एक ट्रेंड के तौर पर साइकिल को रखे हैं, 10 दिनों में 15 दिनों में साइकिल निकालते हैं, चलाते हैं और किसी न किसी अभियान में शामिल होते हैं। तो इस तरह से साइकिल वक्त के साथ साथ भूला नहीं है, वक्त के साथ साथ जो उसकी महत्ता है वो और भी ज़्यादा हो गई है। तो आइए मिलकर प्रण करें कि अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में हम साइकिल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, अपनी फिटनेस को बनाने के लिए, अपनी सेहत को बनाने के लिए और सबसे बड़ी बात है शहर की आबोहवा को स्वच्छ रखने के लिए, साफ रखने के लिए।

तो दोस्तों, ये तो था आज का लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। वर्ल्ड साइकिल डे पर हमने आज का ये प्रोग्राम तय किया, साइकिल पर चलते हुए, साइकिल से जुड़ी बातें करते हुए। इस प्रोग्राम की प्रस्तुतकर्ता मीनाक्षी कालिया। अब अपने साथ ही अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। फिर मिलेंगे प्रोग्राम में एक और टॉपिक लेकर। तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार।

अभी आपने लाइव फोन इन प्रोग्राम सुना हेलो चंडीगढ़। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 11 बजे हैं, आप सुनिए स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ी में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूं और सबसे पहले आपका धन्यवाद देती हूं कार्यक्रम सुनने के लिए और हमें संपर्क करने के लिए। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या SMS करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955।
1: तो श्रोताओं, बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर, जिसका शीर्षक है छोटी उम्र बड़ी जिंदगी। श्रोताओ, भारत में महिलाओं की स्थिति समय के साथ सुधर रही है, लेकिन कई गृहिणी महिलाओं को आज भी घरेलू हिंसा, पति की मारपीट, सास ससुर के ताने सुनने पड़ते हैं। महिलाओं की इस स्थिति के पीछे एक कारण उनकी कमजोरी या चुप्पी भी होती है। महिलाओं को उनके साथ हो रही जातियों के खिलाफ

0: आवाज उठानी चाहिए। आज की कहानी नीतू ने भी एक समय पर आकर अपनी चुप्पी तोड़ी और दूसरी महिलाओं के लिए एक उदाहरण बनी। घर के कामकाज में कोई गलती होने, दहेज या पति को खुश ना कर पाने पर मार खाने वाली हर महिलाओं को नीतू की कहानी जरूर सुननी चाहिए। नीतू एक अच्छे परिवार में पली बड़ी लड़की थी और नीतू ने अपनी स्नातक ग्रेजुएशन की परीक्षा पूर्ण कर कंप्यूटर का कोर्स किया था और साथ ही वह जॉब भी करना चाहती थी, लेकिन समय रहते एक अच्छे लड़के का रिश्ता आ गया तो नीतू के परिवार ने नीतू का विवाह करवा दिया। नीतू के विवाह में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। बरातियों के स्वागत से लेकर दहेज, विदाई और नकद सभी चीजों का पूरा पूरा ध्यान रखा गया। नीतू की विदाई के बाद कुछ सालों तक सब कुछ सही चल रहा था। उसका पति अमन भी उसे सब प्रेम रखता था। बस कमी थी तो नीतू के सपने पूरे होने की। नीतू शादी से पहले से ही काम करना चाहती थी, लेकिन अच्छे रिश्ते के चक्कर में उसे बाहर काम करने का समय ही नहीं मिला। शादी के दौरान नीतू के बाहर काम करने की इच्छा भी जताई, लेकिन उस समय किए वादे को अमन अब नकारने लगा। खुशहाल जिंदगी नीतू की नरक की जिंदगी में बदल गई। शादी के कुछ सालों तक तो सब कुछ सही चलता रहा। इस दौरान नीतू ने एक बेटी को भी जन्म दिया, लेकिन अब
1: नीतू ये क्या आज फिर से आलू बैंगन बनाए? तुम्हें पता है ना मुझे आलू बैंगन पसंद नहीं।
2: पर मैंने तो आपसे पूछ के ही बनाया था ना।
1: वो मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, पर तुम्हें तो ध्यान रखना चाहिए मेरी पसंद ना पसंद का।
2: पर आलू के पराठे तो आपको पसंद है, पर ये
1: तू इधर आ, तुझे बस मुझे नीचे दिखाने का मौका चाहिए होता है। ले अब सब ध्यान रहेगा और ये खाना भी खुद ही खाना।
2: सब काम पूछ के करती हूँ, फिर भी हर रोज मुझे मारने का कारण मिल ही जाता है इनको। अरे गुड्डी बेटा अंदर जा, ये ठीक है, बस पैर फिसल गया मेरा, तू बस अंदर जा बेटा।
3: ये क्या फिर तुम दोनों का चालू हो गया? हे प्रभु, परमेश्वर ही बचाए मुझे इस कलेश से। तुम्हारा रोना धोना हो जाए तो खाना लगा देना मेरा।
2: जी माँ, बस अभी लगा देती हूँ।
1: जा रहा हूँ माँ, खाना आज बाहर ही खा लूँगा।
3: ठीक है बेटा, ध्यान से जाना, ये लड़की नहीं सुधरने वाली। अरे पति पर भी ध्यान दिया कर, सारा दिन गुड्डी के पीछे लगी रहती है। देखा मेरा बेटा अमन आज फिर भूखा ही चला गया।
2: पर माँ जी मैं तो बस।
3: चुप कर, अब मुझसे जबान लड़ाएगी? जा काम कर अपना।
4: क्या बात है कमला, आजकल रोज घर में रोने धोने की आवाजें आती हैं। बेटे बहू सही तो है ना?
3: अरे क्या बताऊं गीता बहन, ये रोज रोज के कलेश से तो मैं भी दुखी हो गई हूँ। अब समझ नहीं आता कि इस बहू का क्या करूं।
4: ऐसा भी क्या कर दिया बहू ने जो रोज का रोना धोना हो?
3: गीता तू तो जानती ही है, अमन के पिता के जाने के बाद से ही अमन पर जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। हाँ मैं मानती हूँ कि आजकल थोड़ा गुस्सा ज्यादा करने लगा है, पर
4: क्या,
3: बहू को भी तो ध्यान रखना चाहिए ना।
4: किस बात का?
3: अरे अमन के स्वभाव का।
4: पर इसमें बहू क्या देखे?
3: अरे अब आज ही की बात ले ले, बहू ने अमन से पूछा कि खाने में क्या बनाऊं, लेकिन मूड सही ना होने के कारण खाना देखते ही अमन गुस्सा करने लगा और इसी गुस्से में बहू पर हाथ उठ गया।
4: पर इसमें गलती तो अमन की है ना?
3: भला इसमें वो भी क्या करता,
4: उसे अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए।
3: चलो छोड़ो, हम भी कहां इसमें उलझ गए। सर्दी हो गई है, थोड़ी चाय बनवाती हूँ।
4: हाँ ठीक है।
3: बहू जरा दो कप चाय ले आना, पड़ोस वाली गीता आंटी आई हैं।
2: जी माँ जी लाई।

0: पढ़ी लिखी बहू मिली है कमला, बाहर काम करेगी तो चार पैसा घर ही में ही आएगा।
1: पर चूल्हा चौका और गुड्डी?
0: अरे कमला, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे कभी चूल्हा चौके में हाथ ही नहीं दिया हो। चार पैसे लाएगी तो अमन के सर का बोझ कम हो जाएगा और घर में शांति भी रहेगी।
1: पर गुड्डी को तो अपनी माँ ही चाहिए बस।
0: धीरे धीरे वो भी समझ जाएगी, और 4 साल की तो हो ही गई, अब स्कूल में दाखिला करवा दो, खुद ब खुद व्यस्त रहेगी।
1: कह तो सही रही है तू गीता, पर
0: क्या,
1: मुझे नहीं लगता अमन मानेगा।
0: देख ये तो तुम्हारे ऊपर ही है, मैं चलती हूँ, देख लेना, और बहू तू भी चल। कमला चलती हूँ मैं।
1: अरे आ गया बेटा।
2: हाँ माँ।
1: वो मैं सोच रही थी।
2: क्या सोच रही थी माँ?
1: चल छोड़, तू खाना खा पी ले पहले, फिर तसल्ली से बात करेंगे।
2: ठीक है माँ, मैं आता हूँ फिर।
3: माँ जी, आपने उनको कहा या नहीं?
1: मुझे लग रहा है वो नहीं मानेगा, इसलिए।
3: आप रहने दो, मैं ही बात करती हूँ।
1: हाँ तू ही देख ले, बस जरा मूड देख कर बात करना, मुझे सुबह की तरह कलेश नहीं चाहिए फिर से।
3: ठीक है।
1: और सुन, गुड्डी सो जाए फिर ही बात करना, मैं अपने पास सुला लूंगी उसे आज।
3: ठीक है। आप फ्री हो गए? आप आराम करो, मैं रसोई में थोड़ा काम बाकी है, उसे समेट कर आती हूँ।
2: हाँ माँ, ये क्या खुसर फुसर चल रही है?
1: अरे कुछ नहीं, तू आराम कर।
2: ठीक है माँ।
3: सुनो जी, सो गए क्या आप?
2: हाँ, कुछ काम है तो बोलो।
3: नहीं ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं ये सोच रही थी कि घर का काम जल्दी खत्म हो जाता है तो सारा दिन यूं ही घर में बैठी रहती हूँ, सोचा फिर से पढ़ाना चालू कर दूं।
2: तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना?
3: क्यों, क्या हुआ? मैं तो बस।
2: फालतू दिमाग मत लगाओ, घर पर ध्यान दो बस, और मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ।
1: क्या हुआ, बोल दिया अमन को?
3: नहीं, वो मना कर दिए, कहा सिर्फ घर पर ध्यान दो।
1: एक बात बोलूं बहू, एक औरत को खुद की मदद खुद ही करनी होती है, और अब ये तुझे देखना है कि तू आगे क्या करना चाहती है। हमारी तो कट गई बेटा, अब तेरा भविष्य तेरे ही हाथ में है।
3: सही बोल रही हूँ आप, मैं आज ही बात करती हूँ। अरे अरे, आप काम के लिए निकल रहे हैं?
2: हाँ बोलो।
3: वो मैं सोच रही थी पढ़ाने के लिए स्कूल में आज ही बात कर रहा हूँ।
2: तुम्हें समझाया था ना कि घर पर ध्यान दो।
3: लेकिन इसमें हर्ज क्या है?
2: लगता है तुम नहीं समझोगी।
3: बस बहुत हुआ, मैं नहीं बोलती तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमजोर हूँ, बस आपकी इज्जत करती हूँ इसलिए चुप रहती हूँ, नहीं तो ये रोज रोज मार खाना, हर समय चुप रहना मेरी फितरत नहीं है। शादी से पहले भी मैं काम करती थी, और आपको कहा भी था कि शादी के बाद में भी करूँगी, पर
2: क्या, बोलो बोलो।
3: मुझे लगता है हमारे रिश्ते को थोड़ा समय देना पड़ेगा, तब शायद ये सब बातें जो आपने कही थी ना, उनका अर्थ आपको समझ आएगा।
2: क्या मतलब?
3: कि मैं पढ़ाने का काम फिर से शुरू करने जा रही हूँ, और कुछ समय के लिए मैं अपनी मम्मी के यहाँ रहने जा रही हूँ। जब आपका गुस्सा शांत हो जाए ना, तो आ जाना मुझसे मिलने और साथ ले आना मुझे।
2: ये क्या पागलपन है नीतू, घर कौन संभालेगा?
3: बहुत हुआ अब। माँ, आपको कभी भी कोई भी बात की जरूरत हो आप मुझे फोन कर लेना।
1: ठीक है बेटा, तू अपना ध्यान रखना।
3: और माँ, आपने कहा था ना कि एक औरत ही खुद की मदद कर सकती है, तो ये पहल मैंने आज से ही कर दी। वैसे भी तो आस पड़ोस के लोगों को मेरी हालत का अंदाजा हो गया है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी आगे की जिंदगी भी ऐसे ही गुजरे। आप अपना ध्यान रखना माँ, मैं चलती हूँ।
1: ठीक है बेटा, खुश रहना।
4: समय बीतता गया, कुछ ही साल

0: अरे वाह बहू, चाय तो तुमने बहुत बढ़िया बनाई है।
1: जी बस शुक्रिया।
0: सुना है तूने स्नातक पढ़ रखा है, तो कुछ करती क्यों नहीं? यूं ही घर में रहकर पढ़ाई बर्बाद करनी है क्या?
2: अरे अरे, ये क्या बोल रही है तू गीता बहन? ये बाहर काम करेगी तो घर कौन संभालेगा?

नीतू ने टीचर से स्कूल की प्रिंसिपल के पद को प्राप्त किया। कुछ महीनों में ही अमन को भी समझ आ गया। वो अपनी गलती मानकर नीतू को अपने साथ घर ले गया था और कुछ ही महीने हुए नीतू ने खुद का स्कूल भी खोल लिया। आज नीतू ने एक औरत होकर सबसे पहले खुद की मदद की और माँ की दी हुई सीख को अपनाया और अपनी जिंदगी को एक नया रास्ता दिखाया। हमारे देश में घरेलू हिंसा आम बात है और गांव क्षेत्र में तो बहू को कब्जे में रखने का एक तरीका भी माना जाता है। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं, एक औरत आज भी उतनी ही संवेदनशील होती है जितनी वो कल थी और आने वाले कल होगी। लेकिन एक सीख हमेशा याद रखना कि पहल हमें खुद ही करनी होगी। हमें ध्यान रखना है कि हमारे आसपास अगर ऐसे कुछ हो रहा है तो उन्हें सिखाएं कि पहल उनकी हो।

0: तो दोस्तों, हमारे कुछ श्रोता हैं जो निरंतर हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं और फोन कॉल के जरिए हमसे बातचीत करते हैं। आज उनके नाम हम आप सभी के साथ साझा करना चाहेंगे। सीतापुर यूपी से राम नरेश, लखनऊ यूपी से विजय कुमार मिश्रा, औरंगाबाद बिहार से देवनंदन जी, बराइच यूपी से शहजाद अली और उनकी पत्नी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रमों को सुनने के लिए और लगातार हमसे बातचीत करके हमें प्रोत्साहित करने के लिए।
1: इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं, हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए, 8527449955। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओ, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और मुझे यानी कि प्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रही थी कार्यक्रम हमारी बेड़ियां। श्रोताओं, ये प्रायोजित कार्यक्रम था। ये आकाशवाणी है, आप सुन रही हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 11:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार।

सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत, आवाज़ें लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की हैं।

सुरबहार कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए प्रेम बारबटोनी की कही गजल, आवाजी है नीना और राजेंद्र मेहता की।

आप सुन रही हैं कार्यक्रम सुरबहार। गुलजार का लिखा गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं। आवाज़ है आशा भोसले की।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरबहार। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 11:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए प्रोग्राम संजीवनी।
1: नमस्कार श्रोताओं, संजीवनी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं जाने माने होम्योपैथ डॉक्टर अदिति गर्ग, और जिस टॉपिक को लेकर आज हम बात करेंगे वो है गर्मी। गर्मी में होने वाली समस्याएं, उनसे किस तरह से बचा जा सकता है, उससे बचने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। प्रोग्राम संजीवनी में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
2: धन्यवाद
1: अदिति जी। गर्मी से सब बेहाल हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में तो गर्मी होनी है
2: जी,
1: ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, लेकिन गर्मी के इस मौसम में हम अपने आप को किस तरह से ढालें कि गर्मी के मौसम में हमें परेशानियां ना हो, समस्याएं ना हो
2: जी।
1: तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि गर्मी के मौसम में होने वाली कौन कौन सी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं।
2: जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल जो मौसम है, स्पेशली ये वाला जो मई एंड होता है, जो ये जून, तो इन दिनों में तो भीषण गर्मी होती है। बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर जो है मोस्टली 40 डिग्री से ऊपर रहता है, जो कि अगर आप देखो कि नेचुरली अगर आप नेचर को बैलेंस की बात करें तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां, बहुत सारे ऐसे कीटाणु जो इस गर्मी के साथ नेचुरली मर जाते हैं। आप कितने भी पेस्टिसाइड्स यूज कर लो, आप कुछ भी कर लो, तो ये गर्मी जो है कहीं ना कहीं हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। पर इसके चलते हमारा शरीर जो है वो कुछ कुछ बीमारियों के साथ जूझ जाता है। अगर आप गर्मी में ज्यादा जाते हो, आपको बाहर मूवमेंट करनी पड़ती है और आप प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लेते, तो इस गर्मी की वजह से हीट एग्जॉशन हो जाती है, मतलब हमें थकावट जो है वो जरूरत से ज्यादा लगती है। कुछ लोगों के अंदर हमने देखा है कि कई लोगों में मसल पेन जो है वो इन दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मसल में क्रैम्प्स आने लग जाते हैं।
1: कई लोग ये बताते हैं कि सुबह सुबह उठते ही
2: हाँ जी
1: शरीर में दर्द होती है
2: जी,
1: उठना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, अच्छी खासी नींद के बावजूद वो अपने आप को फ्रेश महसूस नहीं करते
2: जी,
1: वो इसी वजह से होता है।
2: इसी वजह से, क्योंकि उसमें बहुत ही बड़ा रीजन हम खुद ही होते हैं। मैक्सिमम टाइम होता क्या है कि जब हम किसी से बात करते हैं, मैं स्पेशली जब अपने क्लिनिक पे अपने पेशेंट से बात करती हूँ, तो हम जानते हैं कि पेशेंट पानी तब तक नहीं पीते लोग जब तक उनको प्यास ना लगे। ऐसी गलती बिल्कुल भी ना कर।

0: जब आपको लगता है कि जो टेम्परेचर है वो चेंज हो चुका है, तो जो सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट है हमारी बॉडी का वो क्या है? पानी।
1: यानी गर्मी के मौसम में पानी की प्रॉपर इंटेक होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, देखिए कम से कम ऑन एन एवरेज आप 2 लीटर पानी जरूर पीजिए। हमारी मसल्स को, हमारे टिश्यूज को पानी जो है जब प्रॉपर मिलता है तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि हमें हीट एग्जॉशन नहीं होगा, हम थकावट कम महसूस करेंगे और हमें उसकी वजह से होने वाली एलिमेंट, जैसे कि कई लोगों को आपने देखा होगा कि गर्मी की वजह से चक्कर आ जाता है ना, गर्मी की वजह से
1: डिहाइड्रेशन
0: हो जाती है ना, तो उसकी वजह से कुछ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं जो लेटर स्टेज के अंदर क्रॉनिक हमारी बॉडी के अंदर बैठ जाती
1: है। कई एक्सपर्ट्स जो इस प्रोग्राम में भी आते हैं
0: जी,
1: वो ये कहते हैं कि पानी जब प्यास लगे तब पीना चाहिए, जरूरत से ज्यादा नहीं पीना चाहिए। लेकिन ये पानी पीने के लिए नहीं पीना चाहिए, आपको प्यास लगे तो पानी पीना चाहिए।
0: देखिए हमारी बॉडी का कितने परसेंट हिस्सा पानी है।
1: मैं एक्चुअली इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ कि क्या गर्मी के मौसम में हमारी ये सोच बदलनी चाहिए?
0: बिल्कुल बदलनी चाहिए हमारी सोच जो है। देखिए पानी का हमारी बॉडी के साथ लॉजिक से क्या रिलेशन है, हमारी बॉडी का कितने परसेंट हिस्सा पानी है?
1: 70।
0: ठीक है, हम क्या करते हैं, हम उतने परसेंट नॉर्मल, जो हम नॉर्मल इंडिया में क्या किया जाता है, हम देखें कि हम कैसे क्लाइमेट में, कौन से रीजन में, कौन से मंथ में सर्वाइव कर रहे हैं,
1: हमारा आसपास एनवायरनमेंट कैसा है,
0: कैसा है
1: जी, जी।
0: इन दिनों में अगर हम खाना लाइट खाएंगे, ठीक है, अगर हम हैवी डाइट ना लेते हुए फ्राइड फूड कम खाते हुए ज्यादा सैलेड पे रहें, फॉर एग्जाम्पल आजकल खीरा क्यों आता है, आजकल इसीलिए खीरा इन दिनों में ज्यादा मिलता है, नेचर भी अपने आप ही हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करती है अगर हम उसको ध्यान से सुने।
1: रसीले फल आते हैं,
0: रसीले, जितना हमारे शरीर को पानी चाहिए उतना पानी हमारी बॉडी को देना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन इसके साथ जो आपने पहली बात कही कि एक्सपर्ट कहते हैं, उसका रीजन ये है कि अगर आप किडनी पेशेंट हो, आपके लंग्स में ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, आपको कोई क्रोनिक डिजीज चल रहा है, उसमें जिसमें आपको जो पानी है वो रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, कुछ पेशेंट्स के अंदर जो है स्वेलिंग रहती है, तो अगर वो स्वेलिंग है उनके अंदर, वाटर रिटेंशन की टेंडेंसी है, तो ऐसे केसेस में हम पेशेंट को पानी जो है वो रिस्ट्रिक्ट करके बताते हैं,
1: या अपने डॉक्टर से पूछा जाए।
0: बिल्कुल, अगर आप, हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं इस टाइम पे, हमारी टॉपिक पे जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि कॉमन पब्लिक को, जनरल पब्लिक को इन दिनों में हीट से बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो जो सबसे पहला उपाय है वो ये है कि जो पानी आप थोड़ा सा प्रॉपर पिएंगे और साथ के साथ साफ सुथरा पानी पिएंगे तो बहुत चांसेस हैं कि आप अपने शरीर को गर्मी से बचा सकते हैं।
1: जी बिल्कुल सही है, पानी के इनटेक आपने बताया कि 2 लीटर कम से कम
0: होनी चाहिए।
1: अच्छा, अमूमन गर्मी के मौसम में प्यास तो लगती है, सबको लगती है
0: जी,
1: किसी को अगर प्यास ना लगे
0: जी
1: तो उस सूरत में उसे तब भी लेना चाहिए?
0: बिल्कुल, बेशक आप पानी की फॉर्म अगर चेंज करके लेना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी की कैपेसिटी जो है वो आप 1 लीटर से ऊपर पानी नहीं पी पाते, कुछ लोग हमें बोलते हैं कि हमें ना पानी पीने के साथ ना उल्टी जैसा मन होता है, दिल कच्चा होता है, तो हम उनको यूजुअली एडवाइस करते हैं कि हम ये तो कहते हैं कि प्लेन वाटर जो है कम से कम लीटर तो पीजिए, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, अच्छी पाचन शक्ति के लिए भी, सिर्फ गर्मी से बचने के लिए नहीं, अच्छी पाचन शक्ति के लिए भी, हमारे शरीर को जैसे एक बैलेंस्ड फूड चाहिए वैसे ही हमारे शरीर को पानी भी चाहिए,
1: अपने तो, आप को निर्मल करने,
0: करने के लिए। तो हम उनको बताते हैं कि आप पानी के अलावा कोकोनट वाटर पी लीजिए, आप पानी के अलावा छाछ पी लीजिए, तो बड़ी सारी ऑप्शंस हैं।
1: मुझे लगता है कि गर्मी के मौसम में छाछ इज द बेस्ट ऑप्शन,
0: बहुत बढ़िया है, अगर आपको अगर आप पी सकते हैं, अगर आपको इजीली मिल सकती है तो वो आप जरूर लीजिए, क्योंकि वो आपके शरीर में प्री प्रोबायोटिक का भी काम करेगी, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप एंटासिड्स खाएं, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप हेल्दी बैक्टीरिया को किसी और फॉर्म में खरीद के मार्केट से खाएं, तो बहुत सारी चीजें फुलफिल हो जाएंगी।
1: डॉक्टर अदिति, और कौन कौन सी आपके क्लिनिक में समस्याएं देखने को मिलती हैं गर्मी की वजह से?
0: छोटे बच्चों की अगर आप बात करेंगे तो छोटे बच्चों के अंदर बुखार का आ जाना बहुत कॉमन हो जाता है इन दिनों में, बच्चों में उल्टियां लगना, लूज मोशन हो जाना बहुत ज्यादा है कॉमन आजकल, उसके अलावा जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर के अंदर मूवमेंट कर रहे हैं, तो उनके अंदर कई बार नाक में से खून निकल जाता है,
1: नक्सीर
0: जिसको बोलते हैं फूटना, माइग्रेन की प्रॉब्लम, हेडेक की प्रॉब्लम जो है वो इन दिनों में, क्योंकि डायरेक्ट सिर के ऊपर हीट लगती है, अगर आप कैप नहीं यूज करते, आप कॉटन क्लोदिंग नहीं पहनते, तो उसमें भी बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपको जो डायरेक्ट हीट लगा उसकी वजह से इवन कुछ केसेस के अंदर हीट स्ट्रोक तक हो सकता है।
1: आजकल स्कूलों में तो छुट्टियां हो गई बच्चों
0: जी,
1: की लेकिन फिर भी बाहर एक्टिविटीज के लिए जाना होता है, किसी क्लास के लिए जाना होता है, तो ऐसे में मजबूरीवश जब बाहर जाना होता है गर्मी के मौसम में,

0: आप सजेस्ट क्या करेंगे?
1: देखिए, जो हमेशा से यूज होता आ रहा है बहुत ही पुराना, कि एक तो कपड़े जो हैं वो सॉफ्ट पहनिए, कॉटन पहनिए, कपड़ों को रिपीट मत कीजिए जो आज आपने कपड़े पहने, कोशिश कीजिए कि आप कपड़े अगले दिन जरूर बदलिए, क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर पसीना आता है वो फर्दर आपको डिफरेंट डिफरेंट स्किन प्रॉब्लम्स के लिए प्रोन कर देता है।
0: मतलब हाइजीन प्रॉपर
1: बहुत जरूरी है। उसके अलावा अपने सिर को कवर करने की कोशिश कीजिए। बच्चों को हम यूजुअली बोलते हैं कि अगर आप कैप लगा सकते हैं तो कैप जरूर लगाइए। उसके अलावा जब आप बाहर जाते हैं तो कोशिश कीजिए जो पानी है वो घर से लेके निकलिए अपना। बाहर का जो खुला पानी आप इधर उधर से पीते हैं तो कई बार उसके साथ गैस्ट्रिक इन्फेक्शन जो होती है वो उसके चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।
0: यही सवाल आता है आपके जवाब में, पेट की समस्याएं गर्मी के मौसम में बहुत होती हैं, उसका कारण यही?
1: आजकल क्या होता है कि आजकल बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। जैसे आपने कहीं से आपने खुला कटा हुआ फल खा लिया, या फिर आपने पसीने में कोई ऐसा पानी बाहर से आपको गर्मी लगी, तो हम क्या करते हैं कोई भी आसपास जो वेंडर, लोकल वेंडर हो गया, उससे लेके आपने कोई नींबू पानी पी लिया, या आपको नहीं पता वो चीजें कब से स्टोर की हुई थी, उसमें कितनी बैक्टीरियल ग्रोथ हो चुकी थी, जो कि एकदम से जैसी आप लेते हैं तो कई बार गैस्ट्रिक इन्फेक्शन का रीजन बन जाता है। और गैस्ट्रिक इन्फेक्शन में फिर हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है,
0: बहुत महंगा पड़ता है,
1: बहुत महंगा पड़ता है। अगर आप एक दिन दो दिन उल्टियों के साथ चलते रहते हैं तो कई बार बहुत कंडीशन जो है वो सीरियस हो सकती है। तो अगर आपको लगे कि आपसे ऐसा कुछ गलती हो गई, आपसे ऐसा कोई पानी या फूड आइटम बाहर से खाया गया है और आपको लग रहा है कि आपकी आपका मन जो है वो उचका रहा है, आपको उल्टी जैसा मन कर रहा है, तो इमीडिएट इंटरवेंशन लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है।
0: डॉक्टर अदिति, बहुत अच्छी आप जानकारी दे रही हैं और आप इस प्रोग्राम में जब जब भी आती हैं तो बहुत अच्छी जानकारी लेकर आती हैं।
1: पहले के टाइम में देखो होममेड ड्रिंक्स कितनी ज्यादा बनाई जाती थी, उनके पीछे एक लॉजिक था। कोई भी जैसे अगर इन दिनों में आम जो है कच्चा आम कितना आता है, तो अगर आप देखें
0: पन्ना,
1: पन्ना और वो भी जो आम पन्ना आजकल तो प्रीमिक्स मिलने लगे हैं, तो
0: घर में
1: हम सभी अपने पेशेंट्स को, सभी लोगों को जो हमें जानते हैं, हम यही एडवाइस करते हैं कि चीनी का इंटेक मिनिमम करके आप कोशिश कीजिए कि आप अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस रखिए। जब आप घर में आम पन्ना बना सकते हैं, उसमें जो नमक है, जो चीनी है, जो अगर आप काली मिर्च कुछ भी जो भी आप यूज करते हैं उसकी जो रेशो, वो ही आपके लिए मेडिसिन का काम कर जाती है। क्योंकि आप उसके लेवल्स को सेट करते हो, उसको अच्छे से पी लेते हो। होममेड ड्रिंक्स की तो बात ही कुछ और होती है। कोई भी चीज पिए या खाएं तो उसमें हम फ्लेवर के साथ साथ ये जरूर ध्यान में रखें कि क्या वो जो भी हम इतनी मेहनत करके जो हम पैसे कमा रहे हैं, उससे जो हम डाइट ले रहे हैं या जो हम मेडिसिन खा रहे हैं, तो क्या वो उस मेहनत को मैच कर रही है?
0: इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा।
1: तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी।
0: गर्मी के मौसम में कहते हैं कि अच्छे अच्छे कूल कूल प्यारे प्यारे गाने अगर सुन लिए जाए,
1: हाँ जी,
0: है ना, प्ले कर दिए जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं हमें राहत देते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो चलिए मिलकर राहत लेते हैं आपकी पसंद के गाने के साथ।
1: जी।
0: तो गाना बताइए।
1: ऐ जिंदगी गले लगा ले,
0: सदमा फिल्म से ये गाना है।
1: हाँ,
0: सुरेश वाडकर की आवाज में ये गाना है। तो ये पसंद हम आपकी प्ले करते हैं, बहुत प्यारा गाना आपने चुना है।
1: जी।

0: संजीवनी प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अदिति गर्ग, होम्योपैथ। गर्मी से होने वाली समस्याओं के बारे में, परेशानियों के बारे में जानकारी दे रही हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रोग्राम में।
1: थैंक यू।
0: और अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं। गाना बहुत प्यारा सुनवाया आपने।
1: थैंक यू।
0: गाने से पहले आपने नक्सीर की बात की थी
1: जी।
0: तो एक तो इसके बारे में बताइए कि आम तौर से नक्सीर जिन्हें आती है, तो गर्मी के मौसम में देखा गया है एक दो बार उन्हें जरूर ये समस्या होती है
1: जी।
0: तो नक्सीर क्या अपने आप में कोई गंभीर बीमारी है?
1: गंभीर बीमारी वो तब है अगर आप उसको इग्नोर करते हो। अगर आपके बच्चे को या बड़ों को बार बार नक्सीर आ रही है तो उसमें टाइमली इंटरवेंशन लेके अपने जिस भी फिजिशियन को आप दिखाते हो आप उनको जाके एक बार जरूर बताइए। होम रेमेडीज में यूजुअली पुराने जमाने से चला आ रहा है कि बच्चे के नाक से, गर्मी से या कोई भी कुछ खा के या ब्लड निकल आया तो एकदम से हम उसका सिर जो है वो पानी के नीचे कर देते हैं या थोड़ा सा आइस लगा देते हैं। तो ये तो बेसिक होम रेमेडीज हो गई। लेकिन हमेशा मैं अपने पेशेंट्स को गाइड करती हूँ कि अगर आपके बच्चों के नाक से या बड़ों के नाक से बार बार खून जा रहा है तो

0: आप सेल्फ डायग्नोसिस ना करते हुए, उसको सिर्फ और सिर्फ नकसीर तक ना समझते हुए, आप एक बार जरूर अपने डॉक्टर से मिलिए, ताकि अगर आगे आने वाले टाइम में कोई खतरा है तो हम इसे अभी से अभी कंट्रोल कर सकें।
1: आप जब ये कहती हैं कि लगातार अगर हो रहा है, लगातार से आपका क्या मायने है?
0: मतलब दो बार से ज्यादा अगर आपको लगता है ब्लड आ रहा है,
1: महीने में दो बार,
0: महीने में दो बार से ज्यादा आपको लगता है कि बहुत फ्रीक्वेंसी। अब कुछ बच्चों के अंदर मैंने देखा अपनी क्लिनिक के ऊपर कि कई कुछ बच्चे इन दिनों में हर दूसरे तीसरे दिन उन बच्चों के नाक से नकसीर आ जाती है, जैसे ही वो खेल के आए, वो गर्मी से आए, तो उसमें हम उसमें ऐसे केसेस में भी हम कॉज देखते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के अंदर कोई क्रॉनिक कोई नोज की प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल उनको कोई एडिनोइड्स की प्रॉब्लम है, उनके ऑलरेडी जो नेजल ग्लैंड्स हैं वो हाइपरट्रॉफिड हैं, जिसकी वजह से बच्चा बार बार, कई बच्चों को आदत होती है, आपने देखा होगा कि वो नोज पोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, इधर बिकॉज ऑफ एलर्जीज और बिकॉज ऑफ सम इरिटेशन, बहुत सारे रीजन होते हैं छोटे बच्चों के अंदर, तो वो कई बार तो वो भी एक रीजन हो जाता है, क्योंकि बिकॉज हमारी उस एरिया की जो कैपिलरीज होती है वो बहुत डेलिकेट होती है, तो उसमें कई बार ये सुपरफिशियल भी हो सकती है एपिस्टैक्सिस, कई बार ये कॉज रिलेटेड भी होती है, जैसे कि मौसम हल्का सा भी गर्मी का हुआ, पानी की इंटेक कम ली गई, बहुत ही ज्यादा हीट के एक्सपोजर में बच्चा आ गया, तो उसकी वजह से उनको ये नकसीर हो गई।
1: नकसीर के साथ साथ सिर दर्द की भी समस्या, माइग्रेन की समस्या भी हो जाती है, तो उसके काफी चांसेस रहते हैं गर्मी के मौसम में, तो इसी वजह से गर्मी के कारण है।
0: बिल्कुल, गर्मी की वजह से, क्योंकि पानी की इंटेक आप यूजुअली अगर अपने आसपास देखोगे तो हमें वही आदत बनी होती है, हमारा वेदर चेंज हुआ होता है, हम सर्दियों से गर्मी की तरफ आए होते हैं, तो पानी की इंटेक हम कम लेते हैं, इन दिनों में हमें पसीना भी ज्यादा आता है, हमारी यूरिन की आउटपुट अगर कम हो जाए पानी कम पीने से, तो वो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि हमारी बॉडी जो हीट स्ट्रेस के अंदर आती है, तो उसकी वजह से हमें हेडेक रहने लग जाता है।
1: तो मेन आपने ये बताया कि गर्मी के मौसम में पानी की इनटेक प्रॉपर होनी चाहिए
0: जी, और क्लोदिंग हमारी जो है वो हमारे को सपोर्टिव होनी चाहिए, जिसमें हम थोड़ा सा रिफ्रेश फील
1: हमें
0: करें,
1: कूल लगे,
0: हमें कूल लगे, हम बैलेंस्ड फील करें,
1: कौन कौन सी गलतियां हैं अगर आप टिप्स पे बताएं कि गर्मी के मौसम में हमें नहीं करनी चाहिए?
0: जी, सबसे बड़ी गलती तो यही करते हैं हम कि हम कई बार जो पैटर्न हमारा बाकी वेदर्स में बना होता है, फॉर एग्जांपल हम विंटर्स में कर रहे हैं, हम किसी भी टाइम घर से ना, मतलब हमें इतना रिक्वायरमेंट भी नहीं है, हम कभी भी घर से बाहर स्टेप आउट कर जाते हैं, निकल गए कोई भी काम करने
1: बिना किसी बात के,
0: तो प्लान कीजिए। हम सभी को बोलते हैं कि अगर आपका जॉब प्रोफाइल ऐसा है, कोई ऐसा आप वर्किंग नहीं हो और आपको मार्केट के काम करके आने, फॉर एग्जांपल कोई आपका घर का कोई डोमेस्टिक वर्क है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको सब्जी लेने जाना है, या फिर तो मोस्टली घर के जो एल्डरली होते हैं उनके पास ये ड्यूटीज होती हैं कि चलो हम सब्जी ले आएं, तो वो 10-11 बजे मंडी की तरफ निकल जाते हैं, तो उसमें ना तो उनके कपड़े सपोर्टिव होते हैं, ना उन्होंने जो फुटवेयर पहना होता है, प्लास्टिक के चप्पल मैं मैक्सिमम टाइम अपने पेशेंट्स को मना करती हूँ पहनने के लिए,
1: प्लास्टिक की चप्पल,
0: क्योंकि वो हीटअप बहुत जल्दी होती है। क्रॉक्स के लिए मैं मैक्सिमम टाइम पेशेंट्स को बोलती हूँ, तो उनको लगता है कि डॉक्टर अदिति क्रॉक्स के पीछे पड़ी रहती है, तो हाँ। उसका एक लॉजिक ये है क्योंकि वो बहुत जल्दी हीटअप कर जाते हैं। बेटर है कि गर्मी के मौसम में हमें अच्छा तो लगता है कि जब हम अपने पैरों को खुली हवा देते हैं, क्रॉक्स और प्लास्टिक के चप्पल पहनने से हमेशा बेटर रहता है कि आप शूज पहनिए, आप कॉटन की जुराबे पहनिए और जूते पहनिए, ताकि आपकी बॉडी को जो हीट लगने के चांसेस हैं वो मिनिमल हो जाएं। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो घर से बाहर निकलते समय अगर आपको टोपी पहनना पसंद नहीं, कई बार क्या होता है कुछ लोगों को कैप पहनना बिल्कुल पसंद नहीं होता, आप अम्ब्रेला लेके निकल जाइए, कितनी बड़ी बात है, ताकि आपको जो हीट मिलती है वो डायरेक्ट न मिले, वो छटके मिले, तो उससे बहुत हम कोशिश करते हैं कि कपड़ों का जो रंग है वो पेशेंट्स को मोस्टली हम बताते हैं, लोगों को गाइड करते हैं कि लाइट कलर पहनेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, कई बार नॉलेज नहीं होती कि इसको कैसे वो किया जाए। छोटे बच्चों में जैसे मैक्सिमम टाइम बच्चे जो होते हैं वो थोड़े, जैसे गर्ल्स मेरे पास आती है छोटी छोटी क्यूट क्यूट मेरी पे, तो उन्होंने कई बार फ्रिल वाली फ्रॉक से, तो हम उनके पेरेंट्स को भी ये बोलते हैं इनको शूज पहनाइए, इनको क्रॉक्स पहना के बाहर मत निकालिए और कॉटन क्लोथिंग पहनाइए। बच्चे का पार्क जाने का टाइम थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, बच्चा जब पार्क में जाए तो उसको
1: सूरज ढलने के बाद जाए
0: जी, थोड़ा सा कोशिश कीजिए, बच्चे वैसे तो आपको पता है कहाँ सुनते हैं, हम भी जब बच्चे थे हमें जब खेलना है तो हमें खेलना ही है था। बट स्टिल थोड़ा सा हार्श हीट को हम जितना अवॉइड कर सकते हैं हमें जरूर करना चाहिए।
1: और गर्मी के मौसम में छोटे छोटे बच्चों को संभालना, बड़े बुजुर्गों को संभालना
0: जी,
1: वो भी अपने आप में चैलेंज होता है
0: जी, बिल्कुल,
1: उनका बार बार ख्याल रखना पड़ता है,
0: बहुत जरूरी है। अगर कोई आपका बुजुर्ग क्रॉनिक प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, अगर उनको ऑलरेडी डायबिटीज है, एस्थमा की प्रॉब्लम है, या उनको बीपी की प्रॉब्लम है, तो थोड़ी सी प्रिकॉशंस एक्स्ट्रा लेके हमें बहुत फियर करने की, क्रिएट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, हर मौसम की जरूरत है हमारे शरीर को।
1: अब बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि गर्मी के मौसम से घबराना नहीं है, अपने आप को बचा के रखना है, क्योंकि मीठे मीठे रसीले आम गर्मियों के मौसम में ही आते हैं।

0: गर्मी नहीं होगी तो आम नहीं मिलेगा,
1: नहीं मिलेंगे
0: आम पन्ना नहीं मिलेगा,
1: नहीं मिलेगा। कोई भी फल नेचुरली राइप नहीं करेगा, उसके अलावा नेचर बैलेंस नहीं होगी।
0: जी जी,
1: हमारे अलावा पक्षियों को, पेड़ों को, सबको ये धूप चाहिए।
0: जी जी जी,
1: तो
0: और बिल्कुल सही बात है, हर मौसम का अपना अपना
1: अपना आनंद है,
0: रंग है, और उस रंग के साथ हमें अपने आप को ढालना है। तो डॉक्टर अदिति, ये बताइए कि अब एज ए होम्योपैथी में गर्मी का इलाज अच्छा हो जाता है?
1: बहुत अच्छा,
0: अच्छी खबर लेते हैं हम गर्मी।
1: कोई भी सेकंड थॉट नहीं है इसके लिए। देखिए, चर की बात करते हैं क्योंकि हम मौसम की बात करते हैं।
0: किसी को हीट लगी है, हीट स्ट्रोक हुआ है, वो आपके क्लिनिक आया है, और होम्योपैथी से उसका उपचार किस तरह से होता है, क्या वो राहत जो है एकदम से मिलती है?
1: बिल्कुल, अब डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ पेशेंट कौन से सिम्टम लेके आया। कई बार पेशेंट का बीपी ड्रॉप कर गया एकदम से, हमें मालूम है कि अगर हमारा पेशेंट किसी इमरजेंसी सिचुएशन में है तो उसमें एलोपैथी की या होम्योपैथी की बात नहीं। हमें हमारी पैथी में पहला प्रिंसिपल सिखाया जाता है कि एक अच्छा होम्योपैथ जो है वो अनप्रिजुडाइज्ड होना चाहिए। उसका मतलब ये है कि हम अपने दिमाग को बहुत खुला रख के अपने पेशेंट को ट्रीट करते हैं। हम कभी भी किसी भी पैथी के अगेंस्ट नहीं है, हमारी सिर्फ गाइडेंस होती है। हम पेशेंट को यही गाइड करते हैं कि आपको जिस स्टेज ऑफ लाइफ में जिस ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट है, आप प्लीज उसको फॉलो कीजिए।
0: जी,
1: अगर हमारा पेशेंट लो बीपी के साथ आया है, फॉर एग्जांपल अगर हीट स्ट्रोक हुआ है और लो बीपी हो गया पेशेंट का, तो इमीडिएटली उसका बीपी मॉनिटर करके, उसकी बॉडी को हाइड्रेट करके, उसको उसके डूज एंड डोंट्स उसको अच्छे से बता के उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग में रखा जाता है। अगर हमें लगता है कि हमारा पेशेंट बेटर हो रहा है तो हम उसको वैसे चलाते हैं अपना उसके साथ। अगर हमें लगता है कि इसको कोई और एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो हम कोई भी सेकेंड थॉट नहीं लेते, उसको सपोर्टिव केयर के लिए।
0: डॉक्टर दीति, हमें ये बताइए कि गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रोक लगना और लू लगना
1: बहुत फर्क है?
0: फर्क है,
1: बहुत फर्क।
0: वो समझाइए थोड़ा सा, क्या
1: जो हीट स्ट्रोक होता है वो एक एक्सट्रीम इमरजेंसी होती है। एक्सट्रीम इमरजेंसी
0: उसमें होता क्या है, असल में होता क्या है?
1: उसमें हीट स्ट्रोक में क्या होता है, कई बार पेशेंट कोलैप्स कर जाता है, मतलब पेशेंट फेंट हो जाता है, पेशेंट बहुत ही एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन के ऊपर चला जाता है, जिसमें कई बार पेशेंट को इमीडिएट रश करना पड़ता है
0: इमरजेंसी
1: किसी इमरजेंसी। यस, और जो हीट एग्जॉशन होती है वो एक प्राइमरी स्टेज होती है हीट स्ट्रोक की। हीट स्ट्रोक जो होता है वो एक सडन स्टेज होती है। आप आराम से कोई मार्केट गए या कोई काम कर रहे हो,
0: एकदम से कोलैप्स किया,
1: एकदम से कोलैप्स कर गया, तो उसमें फिर डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं। हो सकता है आपका जो पेशेंट है, क्योंकि जो हमारी बॉडी है उसका वो क्विक रिस्पॉन्स होता है अगेंस्ट द हीट। जो हीट एग्जॉशन है उसमें हमारी बॉडी हमें धीरे धीरे साइन देती रहती है, कभी हम थका हुआ महसूस करेंगे, कभी हम चिड़चिड़ा महसूस करेंगे, कभी हमारे सिर में दर्द हो गया, कभी हमारे पेट में कुछ हो गया, कभी हमारी भूख कम हो गई। अगर हमें कोई बाहर का पानी या पी के या फूड खा के कुछ इन्फेक्शन हो गया तो हमें लूज मोशंस लग गए, हमें उल्टियां लग गई। तो ये सिम्टम्स जो हैं ये हमेशा स्टेज ऑफ लाइफ, एज ऑफ लाइफ के ऊपर वेरी करते हैं।
0: यानी लू लगना जिसे कहते हैं,
1: लू लगना जिसको
0: ये लू लगने के लक्षण है।
1: हाँ जी, लक्षण है
0: कि अपने आप को संभाल लीजिए
1: जी।
0: और जो स्ट्रोक होता है उसमें पता नहीं चलता,
1: उसमें पता नहीं चलता। उसमें जो स्ट्रोक मोस्टली मैक्सिमम हीट स्ट्रोक जो होता है उसमें पेशेंट मैक्सिमम टाइम जो है वो कोलैप्स कर जाता है, उसका बीपी जो है वो एकदम से सब नॉर्मल हो जाता है, बहुत ही बीपी
0: जी जी जी
1: डाउन की तरफ चला जाता
0: जी
1: है
0: जी।
1: तो उसमें हमें हम मैक्सिमम टाइम अगर पेशेंट हमें लगता है कि हाँ ज्यादा प्रॉब्लम में है तो हम उसको मेडिकल इमरजेंसी की तरफ रश करते हैं।
0: जी जी जी, तो ये फर्क है हीट स्ट्रोक
1: हाँ जी
0: और लू लगने में
1: जी।
0: बड़ी अच्छे से समझाया आपने। अब हमें होम्योपैथी में बताइए किस तरह से आप इलाज करती हैं, होम्योपैथी में किस तरह की दवाएं हैं जो वाकई आराम देती हैं?
1: होम्योपैथी जो है वो बिल्कुल एक नेचर से जुड़ा हुआ सिस्टम है, जिसमें हमें सबसे पहले जरूरी हो जाता है पेशेंट के सिम्टम जानना, क्योंकि इसमें पेटेंट्स जो हैं वो हम प्रैक्टिस कम करते हैं कि आपको अच्छा पेट दुखा तो ये वाला दवा खा लीजिए
0: ऐसा नहीं है।
1: आपको इन्फेक्शन हो गया चलो ये दवा खा लीजिए, इसीलिए हम दवाई का नाम पहले से फिक्स करना बहुत ही मुश्किल बात है। पेशेंट आता है, पेशेंट को अगर लू लग गई है, पेशेंट का बीपी डाउन चला गया है, उसको चक्कर आ रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, तो यही सिम्टम्स देख के हम पेशेंट को दवा देते हैं और पेशेंट हमारा विद इन नो टाइम बहुत बढ़िया रिस्पॉन्ड कर जाता है।
0: मतलब बात वही आ गई कि अगर आप होम्योपैथ को सही लक्षण अपने बताते हैं
1: बिल्कुल
0: और पूरी दिल की बात बताते हैं कि आपने क्या क्या किया था
1: जी
0: और किस तरह की लापरवाही की थी जिसकी वजह से ये सब हुआ, तो उसी तरह की दवाई जो है वो बनती जाती है, तो लोग अच्छे से राहत महसूस करते हैं
1: बिल्कुल करते हैं
0: दवाई के बाद
1: बिल्कुल करते हैं।
0: तो डॉक्टर, आप इस प्रोग्राम संजीवनी में आई और आज गर्मी के मौसम में होने वाली परेशानियों समस्याओं के बारे में बताया और किस तरह

0: से हम ख्याल अपना रख सकते हैं, इसके बारे में आपने बताया। और जाते जाते कोई संदेश देना चाहें?
1: बस यही कि आप गर्मी से डरिए मत, हर मौसम का अपना ही एक मजा है। हमें अलग अलग चीजें अनुभव करने को मिलती हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो आपको लगता है कि आपको फील हो रही है, कोई किसी प्रॉब्लम से आप सफर कर रहे हो, तो आप अपने इंस्टेड की आप खुद से, आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का जमाना है, तो आजकल लोग कई बार होम रेमेडीज के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा रिलाय कर जाते हैं।
0: वहां ये भी चलता है कि इस प्रॉब्लम में आप होम्योपैथी की ये दवाई ले लें,
1: वो बहुत गलत है, बहुत गलत है। क्योंकि स्पेसिफिकली अगर आप एक डॉक्टर से पूछें इस बात का जवाब, तो एज अ होम्योपैथ, एज अ ट्रू होम्योपैथ, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को गाइड करती हूँ, फिक्स मत कीजिए, अपने डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर से मिलकर सिम्टम बताइए, उसी के अकॉर्डिंग आप अगर दवा खाएंगे आपको बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे।
0: व्यापक जब चर्चा होगी कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उसकी एक अलग ही दवा,
1: अलग ही दवा है। और आपका डॉक्टर, जो आपके डॉक्टर का एक्सपीरियंस है, वो उसका आपको पूरा फायदा जरूर लेना चाहिए।
0: इस प्रोग्राम में पधारने के लिए, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: तो दोस्तों, आज के संजीवनी प्रोग्राम में हमारे साथ रही डॉक्टर अदिति गर्ग, जानी मानी होम्योपैथ। गर्मी के मौसम को लेकर इन्होंने विस्तार पूर्वक हमें समझाया। इस प्रोग्राम की प्रस्तुतकर्ता मीनाक्षी कालिया, अब अपने साथी अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।
2: आप सुन रही थी कार्यक्रम संजीवनी। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं श्रोताओं, FM 107.2 MHz पर। इस समय दोपहर के 12 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हम आपके लिए हिंदी में समाचार रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि जनजातीय सांस्कृतिक रूप से बहुत धनी हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय आत्मसम्मान के साथ जीते हैं। राष्ट्रपति इस समय सम्मेलन को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: खेलकूद में आज भी एक ऐसे वाला कपड़ा का बोल बना के वो खेलते हैं। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे कोई अवार्ड मिले, खुशी से खेलते हैं। उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत। आज भी गांव-गांव में फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, उनके खुद के अंदर गांव-गांव के अंदर टूर्नामेंट करते हैं, लेकिन उसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। तो एकलव्य विद्यालय को दिया गया है। मैं कहना चाहूंगी जो भी और भी ट्राइबल स्कूल है, क्योंकि उनके पास टैलेंट है। आज आप ओडिशा के भुवनेश्वर में क्या किट आज फेमस क्यों है, किट नहीं किस फेमस आज वर्ल्ड फेमस क्यों है, क्योंकि वहां ट्राइबल्स 25,000 या 30,000 बच्चों को, ट्राइबल बच्चों को लिए हैं पढ़ाई।
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा।
2: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए

0: उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुवर्ता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। बोर्ड ने कल कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस वर्ष का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 948 अंक की गिरावट के साथ 73,702 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है।
2: श्रोताओं, आजकल के दौर में बढ़ती उम्र में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या आम हो चुकी है और साथ ही उससे जुड़ी एक गंभीर समस्या हिप फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर भी बढ़ गई है। तो क्या है ऑस्टियोपोरोसिस के कारण, निदान व इलाज, इस सब पर चर्चा करने के लिए आज दोपहर 2:30 से 3 तक FM लाइफलाइन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे डॉक्टर संजय बडाडा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, PGI चंडीगढ़। हमारे फोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619, यानी 2660615, 2660617, 2660619। STD कोड 0172। इस बार के FM लाइफलाइन की रिकॉर्डिंग का समय रहेगा दोपहर 2:30 से 3 तक। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा।
1: आई श्रोताओं, अब हमारा प्रसारण सुनते हैं विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

हम सुन रहे थे सुजाता फिल्म से यह गीत, सचिन देव बर्मन की आवाज और उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस गीत को, जिसे लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने। आप सुन रहे हैं यादों की महफिल और आज हम सजा कर लाए हैं यादों की महफिल सचिन देव बर्मन की यादों के साथ, उनके गाए हुए और उनके द्वारा संगीतबद्ध किए हुए गीतों के साथ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। काला पानी फिल्म का ये गीत हम सुनने वाले हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के हैं बोल, सचिन देव वर्मन का है संगीत।

0: बम्बई का बाबू फिल्म से यह गीत हम सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देव बर्मन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली पहनी।
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
6: तुम्हारी याद सताती है।
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में अगला नगमा, जो कि है फंटूश फिल्म से। आशा भोसले की आवाज है, साहिल लुधियानवी के हैं बोल, और हम आपसे बता रहे थे कि आज हम याद कर रहे हैं यादों की महफिल में सचिन देव बर्मन को, तो उनका ही संगीत है।

0: हम सुन रहे थे चुपके चुपके चल रही पुरबैया। ये गीत हमने लिया लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोलों के साथ, सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा हुआ फिल्म चुपके चुपके से।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,
2: कहीं बेख्याल हो
1: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज हमने सजाई है सचिन देव बर्मन के गीतों के साथ। आइए सुनते हैं सचिन देव बर्मन की आवाज में आराधना फिल्म का यह गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया है सचिन देव बर्मन ने ही।

अभिमान फिल्म से सुन रहे थे ये गीत हम, जिसे गाया लता मंगेशकर ने, मजरूर सुल्तानपुरी के हैं बोल और सचिन देवबर्मन के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। यादों की महफिल में हम सजा कर लाए हैं सचिन देवबर्मन के संगीतबद्ध किए गए और कुछ उनके गाए गए गीतों को। तो अब हम चलते हैं उनके ही द्वारा गाए गए इस गीत की ओर, जिसे लिया है गाइड फिल्म से, जिसे सचिन देवबर्मन ने गाया भी है और संगीतबद्ध भी किया है।

आइए चलते हैं अगले गीत की तरफ, जो कि है अनुराग फिल्म से, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर ने से गाया है, आनंद बख्शी के बोल हैं और सचिन देवबर्मन का संगीत।

हम सुन रहे थे बड़ा सकारात्मक सा गीत बाजी फिल्म से गीता दत्त की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल और सचिन देव वर्मन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम में सचिन देव वर्मन के ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस अगले गीत को, जिसे लिखा है साहिल लुधियानवी ने, किशोर कुमार ने गाया है और मुनीम जी फिल्म से इस गीत को लिया गया है।

आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल का अंतिम गीत। प्यासा फिल्म से गीता दत्त मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, साहिर लुधियानवी के बोल और सचिन देवर्मन के संगीत से सजा हुआ है। सुनते हैं इसके कुछ अंश।

0: आप सुन रही थी कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम हमने आपके लिए मुंबई केंद्र से रिले किया। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रही हैं श्रोताओं, एक बजने को है। कुछ ही देर में हम आपको आज के कार्यक्रमों की जानकारी देंगे।
1: श्रोताओं, आजकल के दौर में बढ़ती उम्र में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या आम हो चुकी है और साथ ही उससे जुड़ी एक गंभीर समस्या हिप फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर भी बढ़ गई है। तो क्या है ऑस्टियोपोरोसिस के कारण, निदान व इलाज, इस सब पर चर्चा करने के लिए आज दोपहर 2:30 से 3 तक FM लाइफलाइन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे डॉक्टर संजय बडाडा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी PGI चंडीगढ़। हमारे फोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619, यानी 2660615, 2660617, 2660619, STD कोड 0172। इस बार के FM लाइफलाइन की रिकॉर्डिंग का समय रहेगा दोपहर 2:30 से 3 तक। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा।

ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। आई श्रोताओं, अब हम आपको अपनी अब से लेकर रात तक के प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। थोड़ी ही देर में 1:05 पर और फिर शाम 6:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक हिंदी समाचार। प्रादेशिक पंजाबी समाचार हम आपके लिए श्रोताओं आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से रिले करेंगे दोपहर 1:10 पर और शाम 6:20 पर। हमारे केंद्र से फिल्म संगीत सुन सकते हैं आप दोपहर 1:15 पर और फिर शाम 5:05 पर भी। विविध भारती के मुंबई केंद्र से फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा सुरीला सफर दोपहर 1:30 पर। वहीं से फिर सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी दोपहर 2:00। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे 2:15 पर शाम 5:00, शाम 6:00, रात 8:45 पर और फिर रात 11:00 भी। मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे आपके लिए सदाबहार नगमे दोपहर 2:30 पर। वहीं से आप सुना करते हैं कार्यक्रम सखी सहेली, समय है दोपहर 3:00। शाम 4:00 पिटारा कार्यक्रम में आज के मेहमान सिलसिले के तहत डॉक्टर गायत्री आहूजा से की गई बातचीत सुनवाई जाएगी। हमारे केंद्र से आप सुन सकते हैं प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे शाम 5:20 पर और NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग शाम 5:30 पर।

हमारे केंद्र से कुछ पंजाबी गीत सुन सकते हैं आप। समय नोट कीजिए, शाम 6:30 और फिर शाम 7:47। सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जयमाला मुंबई केंद्र से सुन सकते हैं आप शाम 7:00। प्रादेशिक मुख्य समाचार सुनवाएंगे आपको

0: हम 7:45 पर और फिर रात 10:30 पर भी। रात 8 बजे हवा महल कार्यक्रम होता है। आज होगी इसमें नाटिका चिट्ठी। नई फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक आप सुना करते हैं रात 8:15 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम मुंबई केंद्र से ही रात 9 बजे सुनेंगे आप। आपके लिए रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम होगा। आज के फनकार हैं अभिनेता आर माधवन और श्रोताओं मुंबई केंद्र से ही उद्घोषक की पसंद की फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत हम रिले करेंगे आपके लिए रात 10 बजे। आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी मंदाकिनी जोशी। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।
1: श्रोताओं, आजकल के दौर में बढ़ती उम्र में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या आम हो चुकी है और साथ ही उससे जुड़ी एक गंभीर समस्या हिप फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर भी बढ़ गई है। तो क्या है ऑस्टियोपोरोसिस के कारण, निदान व इलाज, इस सब पर चर्चा करने के लिए आज दोपहर 2:30 से 3 बजे तक FM लाइफलाइन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे डॉक्टर संजय बडाडा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी PGI चंडीगढ़। हमारे फोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619, यानी 2660615, 2660617, 2660619, STD कोड 0172। इस बार के FM लाइफलाइन की रिकॉर्डिंग का समय रहेगा दोपहर 2:30 से 3 बजे तक। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा।
0: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक हिंदी समाचार। श्रोताओ, प्रादेशिक पंजाबी समाचार इसके बाद हम आपके लिए जालंधर केंद्र से रिले करेंगे।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पेशे से रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें पदभार ग्रहण कराया। उन्होंने मोहन लाल वडौली की जगह ये अहम जिम्मेदारी ली है। इस नियुक्ति से पहले वो हरियाणा बीजेपी की प्रदेश महासचिव थीं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उधर पंजाब के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सरदार केवल सिंह ढिल्लों को भी आज उनका पदभार ग्रहण कराया। इस अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह समेत कई पदाधिकारी साथ में मौजूद रहे। आज विश्व साइकिल दिवस है। अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस घोषित किया था। केंद्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्री मनसुख मांडविया ने देशवासियों को विश्व साइकिल दिवस की बधाई देते हुए युवा शक्ति से साइकिलिंग को अपनी रोजाना की आदत बनाने की अपील की है।
3: आज मैं देश की युवा शक्ति से एक विशेष अपील करना चाहता हूँ। साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं, बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमें फिट रखती है, शरीर को ऊर्जावान बनाती है और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करती है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
2: केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी देशवासियों से पेट्रोल डीजल आदि ईंधन से चलने वाले वाहनों पर निर्भरता कम करने का आग्रह किया है। ऐसे में साइकिलिंग एक प्रभावी और सकारात्मक समाधान है। उन्होंने आज सभी से साइकिलिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर फिट, स्वस्थ तथा विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने का आह्वान भी किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने राज्य में प्रीपेड मीटरिंग प्रणाली के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि इसे चरणबद्ध तरीके

से लागू किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रथम चरण में सरकारी कार्यालयों, सरकारी भवनों और सरकारी कर्मचारियों के परिसरों में इसे लागू किया जाए। इसके पश्चात 10 किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं तथा अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को इस प्रणाली से जोड़ा जाए। उन्होंने इस दिशा में निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश और राज्यों में बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के साथ साथ बिजली क्षेत्र में होने वाले घाटे को कम करना समय की आवश्यकता है। इसके लिए बिजली निगमों को नई तकनीकों को अपनाते हुए लक्ष्य आधारित योजनाओं एवं परियोजनाओं पर तेजी से कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि बिजली एक आर्थिक संसाधन भी है जिसके उत्पादन और वितरण में भी भारी लागत आती है, इसीलिए वितरण व्यवस्था को अधिक सक्षम और आधुनिक बनाना आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री कल चंडीगढ़ में हरियाणा के बिजली निगमों तथा केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज भी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा बिजली क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है, किंतु राज्य को बिजली घाटे को शून्य करने की दिशा में और अधिक प्रयास करने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली बिलिंग और वास्तविक आपूर्ति के बीच के अंतर को न्यूनतम करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। हरियाणा में चालू वर्ष के दौरान 220,000 रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनमें से अब तक लगभग 86,000 सोलर सिस्टम स्थापित किए जा चुके हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल द्वारा कल चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की भी समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने जानकारी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पंजाब दे मुख चुनाव अधिकारी सीईओ आनंदिता मित्रा ने जानकारी दित्ती है कि वोटर सूचियां दी विशेष गहन सोध एसआईआर अधीन वोटरां दी प्री मैपिंग जां गांव निशानदेही दी गति नूं तेज करन लई 7 जून नूं राजभर दे सारे पोलिंग स्टेशनां ते विशेष कैंप लाए जाणगे। हुण तक 90% दे निर्धारित टीचे दे मुकाबले राज विच प्री एसआईआर मैपिंग दा 84.62% पूरा हो चुकिया है। मानता प्राप्त सियासी पार्टियां ते प्रतिनिधियां नाल कल एक मीटिंग दौरान सीईओ ने उन्हां नाल 27 मई तक मैप ना कीते वोटरां दी एक सूची सांझी कीती। उन्होंने उन्होंने 25 जून तो घर घर गणना पड़ा शुरू होने तो पहला ब्लॉक पदरी अधिकारियों बीएलओस नाल तालमेल करके प्री मैपिंग दे काम नूं जल्दी पूरा करन लई बूथ लेवल एजेंट बीएलए नियुक्त करन दी अपील कीती। अमल संबंधी चिंतावां नूं स्पष्ट करते हुए मुख चुनाव अधिकारी ने दस्सिया कि भावें कोई वोटर प्री एसआईआर दौरान मैप ना कीता गया होवे, वोटर नूं चिंता करन दी कोई लोड़ नहीं है। उस स्थिति विच चुनाव अधिकारी वोटर दे वेरवियां दी पुष्टि करन लई कुछ दस्तावेजां दी मांग करनगे। पंजाब दे सरकारी स्कूलां दे 59 विद्यार्थियों ने भारत दी सब तो औखी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेई एडवांस 2026 पास कीती है। सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने दस्सिया है कि साल 2025 विच 44 क्वालीफायरां दे मुकाबले इस बार 34% वाधा दर्ज कीता गया है। इस प्राप्ति ते मान करदिआं सिक्ख्या मंत्री ने इन्हां सफल विद्यार्थियों दे मापिआं अते अध्यापकां नूं वधाई दित्ती जिन्हां दी मेहनत सदका प्राप्ति मिली है। जिलावार अंकड़े सांझे करदिआं सिक्ख्या मंत्री ने दस्सिया कि पटियाला जिला क्वालीफाई करन वाले 11 विद्यार्थियों नाल सब तो मौरी जिले वचों उभरिया, जिस तों बाद 7 विद्यार्थियों नाल संगरूर दूजे स्थान ते रहा, जदकि लुधियाणा, फिरोजपुर अते एसएएस नगर तों 6-6 विद्यार्थियों दी चोण हुई। उन्हां दस्सिया कि फतेहगढ़ साहब तों 5 विद्यार्थी क्वालीफाई होए, जबकि अमृतसर ते जलंधर दे 4-4 विद्यार्थियों ने परीक्षा पास की थी। इसी तरह बठिंडा ते गुरदासपुर दे 3-3 विद्यार्थी, फाजिलका ते 2 ते रूपनगर ते होशियारपुर तों 1-1 विद्यार्थी दी चोण हुई है। इस प्राप्ति नूं सरकारी स्कूल सिक्ख्या दे खेतर च वड्डा मील पत्थर दसदिआं ते इस प्राप्ति दा सेवा प्रणालीगत सुधारां नूं दिंदिआं श्री बैंस ने कहा कि इह सफलता पंजाब सिक्ख्या क्रांति दे टीचा मुखी कम्मां दा नतीजा है। इह पहलकदमी सरकारी स्कूलां विच जेईई अते नीट दे चाहवान विद्यार्थियों नूं म्यारी दर्जे दी मुफ्त कोचिंग, आधुनिक बुनियादी ढांचा ते ढुकवीं सलाह प्रदान करदी है। कल गुरदासपुर दे सरहदी

0: कस्बे कला नॉर्थ एक निजी हस्पताल विच ग्रनेड नाल हमला करन वाले मुख दोषी नूं गुरदासपुर पुलिस अते काउंटर इंटेलिजेंस विंग दे सांझी यत्ना नाल गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हमले विच कोई जानी नुकसान नहीं होया है। पंजाब पुलिस मुखी गौरव यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट राही इस बारे जानकारी दिंदिया दस्या कि मुढली जांच विच विदेश बैठे एक व्यक्ति की शमूलियत बारे भी पता चलिया है। उन्हां दस्या कि अगलेरी जांच जारी है। भारतीय रेलवे के फिरोजपुर डिवीजन ने कश्मीर के मशहूर स्वादले चेरी नूं अमृतसर तो हाई स्पीड रेल राही महाराष्ट्र ते गुजरात समेत देश के प्रमुख बाजारा विच पहुंचाना शुरू कर दिता है। इस सेवा ने ना सिर्फ कश्मीर के चेरी उत्पादकों नूं राहत दिती है सगों फल प्रेमियों नूं कश्मीर वादी के रसदार चेरी का स्वाद लैण विच भी मदद कर रही है। इसकी गुणवत्ता ते ताजगी बनाई रखने लई फिरोजपुर डिवीजन ने छेती खराब होने वाले इस फल लई टोआ टवाई प्रबंध यकीनी बनाए ने। अमृतसर तो यह फल रेलवे दिया विशेष पार्सल वैना राही करीब 29 घंटिया विच गुजरात ते वडोदरा ते सूरत ते 31 घंटिया विच मुंबई दे बांद्रा पहुंचता है। फिरोजपुर स्थित सीनियर डिवीजनल कमर्शियल मैनेजर माल सेवावां परमदीप सिंह सैनी ने आकाशवाणी नूं दस्या कि मई के अखीर विच करीब 13 टन प्रीमियम गुणवत्ता वालियां चेरियां दोवां राज्यां दे प्रमुख बाजारां विच भेजियां गईयां। उन्हें भी कहा कि कश्मीर तो खेपा मई के अखीर तो जुलाई के मध्य विचकार होर डिलीवरी लई आउंदियां ने। यह आवाजाई जम्मू कश्मीर के चेरी उत्पादकों नूं उन्हां दे उत्पादां दे वधिया भाव प्राप्त करन विच मददगार साबित हो रही है। इस दे नाल ही प्रादेशिक खबरां खत्म हुईयां। साडा एक्स हैंडल है @AIRR जलंधर। राष्ट्रीय खबरां दा अगला बुलेटिन तुसी सुनोगे दोपहर बाद 1:40 ते। नमस्कार।
1: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। FM 107.2 MHz पर श्रोताओं 1:15 हुई हैं। थोड़ी ही देर में आप फिल्मी गीत सुनेंगे।
2: श्रोताओं, आजकल के दौर में बढ़ती उम्र में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या आम हो चुकी है और साथ ही उससे जुड़ी एक गंभीर समस्या हिप फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर भी बढ़ गई है। तो क्या है ऑस्टियोपोरोसिस के कारण, निदान व इलाज, इस सब पर चर्चा करने के लिए आज दोपहर 2:30 से 3 बजे तक FM लाइफलाइन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे डॉक्टर संजय बडाडा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी PGI चंडीगढ़। हमारे फोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619, यानी 2660615, 2660617, 2660619, STD कोड 0172। इस बार के FM लाइफलाइन की रिकॉर्डिंग का समय रहेगा दोपहर 2:30 से 3 बजे तक। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा।
1: हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। ये संदेश सुनिए, उसके बाद हम आपको फिल्म संगीत सुनवाएंगे।

आपनी आमने सामने फिल्म के लिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत सुना। अब हम आपको सुनवा रहे हैं सावन की घटा फिल्म के लिए। इस कार्यक्रम का अगला गीत SH बिहारी का लिखा हुआ, धुन OP नैयर की, आवाज़ है महेंद्र कपूर की।

विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं कुछ फिल्मी गीत। आरजू फिल्म से सुनी लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आइए अब सुनते हैं मुंबई केंद्र से अगला कार्यक्रम।

लता मंगेशकर की आवाज, राजा मेहदी अली खान के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ ये गीत हम सुन रहे थे अभी। और हमने आपसे पूछा था बस इस फिल्म का नाम बता दीजिए, तो आप सबने सही बताया, अनीता फिल्म का ये गीत हम सुन रहे हैं। और हम बात कर रहे थे प्यार के इजहार की या फिर खत लिखने की, प्यार किसी से भी हो सकता है। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा कि जब मेरे बीए का एग्जाम था, देकर अभी निकला ही था, तो तुरंत विविध भारती से जुड़ गया, और ये भी तो एक प्रेम का रूप है श्रोताओं के लिए, विविध भारती के लिए। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छे से ये सारे उत्तर देते देते एक और बात लिखी कि मैंने एक नाटक देखा था डोली तेरे अग्नि, जिसमें सच्चा प्यार करते हो, सच्चा मान लेते हो, मिल जाता है, पर मुझे लगता है कि सच्चे आशिक को सजा मिलती है, पाई हुई मंजिल भी छूट जाती है। हो सकता है, देखिए हर किसी का अलग अलग बात होती है। अच्छा, हमारे श्रोता लिखते हैं कि दूसरा खत प्रेमिका को लिखा था जो आज सरकार होम मिनिस्टर बनकर हम दोनों का जीवन जिस पथ पर सुगम करने में तुला हुआ है। क्या बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, मैंने पहला प्यार अगर किसी से किया तो रफ़ी साहब की आवाज़ के साथ में किया, उनको सुनकर मुझे कुछ मुझे होने लगता था। और एक शशि कपूर मुझे बेहद पसंद थे, मैं उन्हें अपने बड़े भैया की तरह मानती थी, और जब उनको देखती तो खुशी होती थी, पर खत तो मैंने कभी किसी को नहीं लिखा। अभी कुछ साल पहले आनंद जी नाइट में मैं गई थी कोलकाता, आनंद जी भाई आए थे अपनी पत्नी के साथ, तो हम शशि कपूर को एक खत लिखकर उनको दिया था, पता नहीं उन तक पहुंचा या नहीं। उसके बाद शशि कपूर साहब चले जाने की खबर भी आई थी। जी, हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि खत तो हमने बहुत लिखे अनगिनत, लेकिन 77 में घर से बेघर हो गए थे, तो पत्र के संवाद का माध्यम था। बिल्कुल सही बात है, घर जब छूट जाता है तो फिर हम अपने परिवार वालों से भी ऐसे ही बात करते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा कि आज का प्यार तो कुछ इस तरह से हो गया कि पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरे को दिया, और मिलना बिछड़ना बड़ी आम बात हो गई है। जी, पहले ऐसा भी होता था ना कि गांव के मोहल्ले के किसी बच्चे को चिट्ठी दे देते थे और वो जाकर दे आता था, है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं पोस्टकार्ड इनलैंड और लिफाफे के एक जमाने में खूब लिखे हैं और आज भी संभाल कर रखे हैं। हमारे श्रोता ने लिखा, खत पहले हमने विविध भारती के प्रोग्राम को लिखा, प्रेरणा जीजा जी थे जो मुंबई विविध भारती ऑफिस में टेक्निकल विभाग में काम करते थे। तो ऐसे ही खत आप लिखते जाइए ना, अभी तो आपके लिए खत वाला कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है, और आपके खत के साथ आपके पसंदीदा गीतों को भी हम सुनाया करते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, कॉलेज में एक लड़की को खत लिखा था, मगर उसने फर्स्ट ईयर के बाद ही कॉलेज छोड़ दिया। ऐसा कैसा खत लिख दिया आपने। हमारे श्रोता लिखते हैं, लव मैरिज हुआ था और अभी 38 साल मना रहे हैं, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। हमारे श्रोता लिखते, कभी प्यार का खत नहीं लिखा, मोबाइल आ चुके हैं, दिल की बात कागज पर नहीं मैसेज में होती है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग होने लगी है। बिल्कुल सही बात है। अब हमारे श्रोता लिखते हैं कि सिर्फ तुम में जो स्टोरी थी वैसे भी कहानियां बनती हैं, असलियत में बिना देखे बिना मिले वाला प्यार, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, वो प्यार कितना सुंदर होता है ना जिसमें देखा ही नहीं। शादी 58 साल पहले हुई थी, तब हम पढ़ते थे, विदाई 3 साल बाद होकर पत्नी घर आई तो हम बलिहारी जाओ उन्हें खूब प्यार करते, 6 महीने बाद वह चली गई तो हम भी परेशान वो भी, लेकिन उनकी सहेली पढ़ती थी वो कॉलेज का नाम पूछकर एक खत डाल दिया। एक दिन एक छात्र ने एक खत दिया और कहा ये तुम्हारा ही है ना, आज मेल बॉक्स में पड़ा मिला, जहां डाक किया सब चिट्ठियां डालकर जाता है, हमने पढ़ा सब जितने दोही और शायरी उसे आते थे, उसने लिखा था नीचे आपकी रानी लिखा था, फिर हमने उनके गांव में खत भेजे, खूब शायरी लिखते थे, वो सहेली उन्हें सुनाती थी, फिर 6 महीने बाद वो आ गई, फिर ऐसे खत नहीं लिखे। कितना अच्छा, कितनी अच्छी याद होती है ना ये सारी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में हमारे मेरे घर के सामने मेरी उम्र की लड़की रहती थी, मैं उसे देखता था, उसके पीछे करता था, बाद में विवाद हुआ परिवारों में और उसके बाद इन्होंने ये काम छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, बेटियां भी परेशान हो जाती हैं। और इसके साथ ही हम आपको अगला गीत सौंप रहे हैं, और अगला गीत बस वही है खत के बारे में, लेकिन कई लोग हैं जो खुद खत लिखते हैं, और पहले का जमाना ऐसा था जब खत लिखवाए जाते थे किसी और से। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि खत उन्होंने लिखा था माता पिता और बड़ी बहन जी जी जीजा जी भांजे भांजी के लिए, तब हमने मुंबई में नेवी ज्वाइन किया था। अच्छी बात है जब दूर रहते हैं घर से।

तो हम लिखते ही हैं खत, ऐसी ही बहुत सारा प्रेम, बहुत सारी चीजें हम एक दूसरे के लिए भेजते हैं। तो अब देखिए ये वाला गीत आप सुनिए और बताइए इसकी गायिका कौन है, और साथ में संगीतकार भी बता देंगे तो अच्छा रहेगा। और इसके साथ एक बात और बताइएगा, खत तो लिखा लेकिन पहले खत का जवाब क्या आया था, जरूर से साझा कीजिएगा।

0: एक खत दूसरे से लिखवाना कितना कठिन होता होगा ना, कि आप अपने जज्बात उसे बता रहे हैं। यही बात तो आखिरी अंतरे में आशा भोसले गा गा के बता रही थी, जिसे आनंद बख्शी ने लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया। फिल्म आए दिन बाहर के हमने वही प्रश्न पूछा था कि गायिका कौन है, तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। आशा भोसले गा रही हैं, आशा पारेख अभिनय कर रही हैं, आनंद बख्शी के गीत हैं, लक्ष्मी प्यारी का संगीत है और बहुत खूबसूरत गीत है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सच में बिना देखे वाला प्यार भी बड़ा प्यारा होता है। ऐसा भी होता है कभी किसी की अच्छी बातों से प्यार हो, कभी किसी की आवाज़ से प्यार हो, कभी किसी की बात ना करने से प्यार हुआ हो, तो बात बहुत सारी हो सकती है। बस प्यार में सच्चाई, अपनापन हो, ना तो कोई दिखावा हो ना कोई गलत बात। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि हाँ, इस गीत में बाबू बार बार बोला जा रहा है या डाक बाबू के लिए ही बोला जा रहा है। हाँ, आज के लिए बाबू शब्द का प्रयोग भी प्रेमी या के लिए किया जाता है, पर यहाँ पर डाक बाबू के लिए ही कहा जा रहा है। बिल्कुल सही बात कही आपने। हमारे श्रोता ने लिखा, गाने की खूबसूरती यही है, पर्दे पर भी आशा जी हैं और आवाज में भी आशा है, यानी आशा भोसले और आशा पारेख। बिल्कुल सही हमारे श्रोता लिखते हैं, मगर इतना जरूर जानना है कि प्यार एक बहुत गहरा एहसास है, कि पालेना ही प्यार है, प्यार महसूस किया जाता है, इसलिए प्यार किया नहीं जाता। अगर हम प्यार करते तो खुशी में हमारी खुशी होती है, मर्जी में दुख। जी बिल्कुल सही बात आप कहते जा रहे हैं। इसके साथ हमारे श्रोताओं ने इस बात के लिए लिखा कि शादी के बाद जब पत्नी पीहर चली जाती थी तो उनके लेटर पैड पर पत्र लिखता था और लिफाफे को पोस्ट कर देता था उसके पास रहने वाले पड़ोसी के पते पर। पड़ोसी के पते पर क्यों, उनके पते पर क्यों नहीं, ये प्रश्न हम आपसे पूछते हैं। हमारे एक श्रोता ने हमारे लिए बहुत अच्छा संदेश भेजा है। जब पहला खत 2008 में विविध भारती को लिखा था, जब रेडियो पर अपना नाम सुना तो पल भर के लिए अविस्मरणीय बन गया, तभी से मैं विविध भारती मेरे जीवन का प्रिय साथी बन गई। लगभग 18 वर्षों से मैं नियमित रूप से विविध भारती सुन रहा हूँ। इसके कार्यक्रम उद्घोषकों की सभी कलाकारों की मधुर आवाजों से एक आत्मीय रिश्ता बन गया है। ऐसा लगता है विविध भारती केवल रेडियो सेवा नहीं बल्कि परिवार का एक हिस्सा है। इसकी हर आवाज मुझे अपनापन और स्नेह मिला है और यही कारण है कि मेरा लगाव दिन प्रतिदिन और गहरा होता गया है। छोटी पंक्ति, विविध भारती से मेरा रिश्ता श्रोता का नहीं बल्कि दिल का है। इसकी हर आवाज में मुझे अपनापन और प्यार महसूस होता है। हमें भी यही होता है। हमारे एक श्रोता ने बड़े अच्छे से अंग्रेजी में लिखा है, मैं उसका हिंदी में अनुवाद करके आपसे बात करती हूँ कि उनका उनकी अरेंज मैरिज थी, यानी विवाह माता पिता ने तय किया था और दोनों गांवों के बीच में 40 किलोमीटर का अंतर था। दोनों बैंक में काम करते थे और इनके जो होने वाले सैया थे वो बड़े शर्मीले थे, इसलिए मिलने नहीं आते थे। पर इन्होंने ही एक दिन आगे रहकर बात करी तो उन्होंने जन्मदिन पर बुलाया, फिर वो एक होटल में खाने के लिए गए, बीच पर बैठे, बातें की और साथ में एक बहुत सुंदर सी रिश्ता इनके बीच में कायम हुआ। बहुत बढ़िया बात है। अब हम चल रहे हैं एक और जज्बात की ओर, एक और गीत की ओर, और उस गीत को सौंपने के पहले हम चाहते हैं कि ये संदेश हम सुन लें।
1: कहिए, सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग

0: होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
1: बस यही प्यार है आपका और हमारे बीच में। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है सुरीला सफर और इसी सफर में एक इबारत हमारे श्रोता ने लिखकर भेजी कि इशारे शब्द पर हमारे दिल में कुछ यूं कहा, कुछ बातें लफ्जों में नहीं कही जाती, बस इशारों में दिल अपना हाल बयां कर देता है। एक नजर, एक मुस्कान, एक छोटी सी खामोशी, कभी कभी इतना ही काफी होता है समझने के लिए कि सामने वाले की अहमियत हमारे लिए कितनी है। इशारे वही समझ पाते हैं जिनके दिलों में अपनापन और एहसास जिंदा होते हैं। इशारे अक्सर वो कह जाते हैं जो जुबान कहने की हिम्मत नहीं करती। बिल्कुल सही बात है। और इशारे से मुझे याद आया कि हम लोग कई सारे इशारे किया भी करते थे पहले, जैसे बोलते बोलते प प ब भ कुछ एक शब्द का प्रयोग हमारे उसके साथ कर लेते थे, या उल्टा बोलना या सीधा बोलना, और ऐसे हम सबके बीच में भी अपने दिल की बात कर लेते थे। ऐसा कुछ आपने किया है क्या, उल्टा सीधा बोल के या किसी एक शब्द को जोड़ के अपने दोस्तों से बात की है? फर जोड़ते थे, बर जोड़ते थे और लोगों से बात करते थे। आपने अगर ऐसा किया है तो जल्दी से बताइए। और एक और चीज बता दीजिए, ये जो गीत है उसके गीतकार कौन है, गीतकार का नाम बताइए। और आपने हमारे जैसी कोई हरकत की है सीक्रेटली बात करने की तो जरूर बताइएगा। सुनिए ये गीत।

हम सुन रहे थे कश्मीर की कली फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाज में ओपी नैयर के संगीत के साथ. और हमने आपसे पूछा कि इसके गीतकार कौन हैं, तो आप सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया, SH बिहारी इस गीत के गीतकार हैं. अब इसके साथ मुझे एक चीज और, एक बड़ा प्यारा सा शेर याद आ रहा है जो जोश मलिहाबादी ने कहा था शायद, कि एक दिन कह लीजिए जो कुछ है दिल में आपके, एक दिन सुन लीजिए जो कुछ हमारे दिल में है. और ऐसी ही बात अगर हो जाती है तो फिर बात क्या कहनी है. और इसके साथ ही हमारे श्रोता ने लिखा कि 21 से 23 तक बहुत गहरा प्यार था, ये अपने दिल की बयां कह रहे हैं, और लंबे समय तक परिस्थितियां बदल गई. देखिए, कई बार प्यार हमें मिलता है, कई बार नहीं मिलता, पर ठीक है, कोई बात नहीं, खुश रहिए. और आज हम आपसे, अच्छा, हमारे श्रोता ने लिखा है, उल्टे शब्द तो आज भी कभी कभी फन के लिए बोल लेते हैं, जलेबी को जबेली कह लेते हैं. जी बढ़िया है, कहना चाहिए. और इशारों इशारों में बात थी, अच्छा मैं भी बता दूं अपना नहीं, हमने इशारों में उनसे ही बात की जिनके लिए हमारे माता पिता ने हमारे लिए चुना. उसके बाद तो चिट्ठी पत्री खत सब लिखना बनता ही है. आपने भी लिखे, हमने भी लिखे. हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बड़े प्यार से कि ये बहुत सुंदर सा गीत है, कश्मीर की कली का, पंजाबी ठेका तबले में और संतूर पियानो सितार वायलिन का बेहतरीन इस्तेमाल इशारों इशारों में. रफी साहब लाजवाब, बहुत बढ़िया. और हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बाबू बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है हमारे मालवा में, या लाड़ प्यार दर्शाता है, लेकिन आजकल पत्नियां अपने पति को लाड़ से बाबू कहाँ हो, बाबू इधर आओ, बाबू मेरे लिए आइसक्रीम ले आओ, ऐसा कहती हैं. तो ठीक है, ये प्रेम जताने वाली बात है. हमारे श्रोता लिखते हैं, जब हम फोन पर बात करते थे तो घर वाले सामने ऐसे बात करते थे, चोरी छुपे फोन नीचे रख के कॉल चल रही है. मैं बोलती थी सहेली का नाम लेकर कि उससे बात करी, फिर कॉल पर बोलती थी और फिर सो नहीं पाती थी और फोन कट जाता था. जी कई बार ऐसा होता था ना कि हमारी बातें ऐसी होती थी किसी को पता ही नहीं पड़ता था. और चलिए अब हम आपको अगला गीत जल्दी से सौंपना चाहते हैं क्योंकि कार्यक्रम बस समाप्ति की ओर है. और आपके साथ में जो समय बिताया वो बहुत सुंदर था. आपसे आखिरी बात कहकर मैं जा रही हूँ, और बात कुछ ऐसी कहकर जा रही हूँ कि जो ये गीत है, अगर किसी का प्यार हमें मिल जाए तो बस वो एहसान की तरह होता है, और उस एहसान के लिए लोग कई दिनों तक इंतज़ार करते हैं. तो ये कहना उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहने में मुझको जमाने लगे हैं, ये लिखते हैं कुमार बारा बंकवी. और चलते हैं इस अंतिम गीत की तरफ, आके दीजिएगा इस गीत के साथ.

0: मुझ पर।
1: और ऐसा एहसान हो जाए तो जिंदगी बड़ी अच्छी होती है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि कुछ और फर जोड़कर उनकी माँ और मौसी बातें करते थे, तो इस शब्दों पर आप जरूर बात कीजिएगा अपने लोगों से, कुछ नई तरीका सीख लीजिएगा अपने जीवन में। और आज के इस कार्यक्रम में सुरीला सफर में बस इतना ही, आज्ञा दीजिएगा, नमस्कार।

बिना तेल के चलती हूँ, बिना पैरों के चलती हूँ, दो पहियों पर सवारी मेरी, सबको सैर कराती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? पहचाना? हाँ सही पहचाना, मैं हूँ साइकिल। और यही साइकिल एक जमाने से हमेशा के लिए उपयोगी रही है। सबसे सस्ता और पर्यावरण के लिए अनुकूल वाहन है, दो पहियों पर चलने वाला साधन है और पैडल की सहायता से चलाया जा सकता है। गांव से लेकर शहरों तक प्रत्येक जगह साइकिल का उपयोग किया जा सकता है, यहां तक कि किया जाता है। विद्यार्थी, डाकिया, मजदूर और कई लोग अपने दैनिक कार्यों के लिए साइकिल का ही प्रयोग करते हैं। ये साइकिल इस दुनिया का सबसे प्यारा आविष्कार है, जिसमें शारीरिक ऊर्जा लगती है, ना कि कोई और तकनीकी रूप से ऊर्जा। चांदी की साइकिल।

साइकिल का आविष्कार 1817 में जर्मनी के वैज्ञानिक कार्ल डर्सी ने किया था। उन्होंने सबसे पहले ऐसी दो पहियों वाली गाड़ी बनाई जिसे पैरों से धक्का देकर चलाया जा सकता था। बाद में पैडल, चेन और ब्रेक लगाए गए और धीरे धीरे आधुनिक साइकिल का रूप तैयार हुआ। आज दुनिया भर में अलग अलग प्रकार की साइकिल बनाई जाती हैं, जैसे रेसिंग साइकिल, माउंटेन साइकिल, बच्चों की साइकिल। और ये जो साइकिल है ना, इससे नाता सबका बड़ा गहरा है। हम भारत के थोड़े से पुराने काल में जाते हैं और जब हम जाते हैं तो हम पाते हैं यहाँ पर साइकिल घर की लग्जरी हुआ करता है। यानी घर में अगर साइकिल है और रेडियो है तो आप बड़े रईस हैं और लोग उस साइकिल को बहुत सम्मान देते हैं। ये साइकिल बड़े काम की चीज है, क्योंकि अगर इसी साइकिल में पीछे आटा चक्की लगा दी जाए और साइकिल को घुमाया जाए तो चक्की भी चलने लगती है, आटा भी पिसने लगता है और शारीरिक व्यायाम भी होने लगता है। नए आधुनिक उपकरणों में साइकिल को घरों में रख लिया गया है। ये साइकिल बहुत काम की चीज है, क्योंकि साइकिल इस दुनिया का सबसे प्यारा उपकरण है जो बच्चा सबसे पहले चलाता है। और जब वह दो पैरों पर उस साइकिल को चला लेता है तो खुश हो जाता है। हालांकि माता पिता को वो जो चार पहिए, जो दो एक्स्ट्रा पहिए सुरक्षा के लिए होते हैं, उन्हें हटाने में डर लगता है, लेकिन जैसे ही हटता है बच्चा पंछी की तरह उड़ जाता है।

साइकिल बहुत अच्छी चीज है, इस वाक्य का प्रयोग कई बार किया गया। इसका कारण है इसके दो उपयोग हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकते हैं। ये ट्रैफिक नहीं करती क्योंकि बड़ी पतली सी, बड़ी सकरी सी होती है और बड़ी सरलता से किसी भी गली मोहल्ले से निकल जाती है। घर के एक छोटे से

कोने में बड़ी सरलता से रख जाती है। और धीरे धीरे यह साइकिल अगर हम चलाते जाते हैं तो इससे बढ़िया व्यायाम हो जाता है। ये साइकिल बच्चों का बचपन है, जिसमें अपने पिता के आगे वाले डंडे पर बैठकर मेला देखने जाना ये भी तो बड़ा ख्वाब है ना। और उसी ख्वाब को, उसी सपने को जो पहले ही जी चुके हैं, फिर से जीने का आनंद ही अलग है। साइकिल, अगर इस सारी दुनिया में साइकिल का प्रयोग होने लगे तो प्रकृति भी मुस्कुराने लगेगी, है ना। कितने सुंदर फूल आ जाएंगे और कितनी सुंदर बयार होगी, क्योंकि प्रदूषण होगा ही नहीं। नियमित साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, शरीर को मजबूत करता है, हृदय और फेफड़े अच्छे से काम करते हैं, मोटापा भी कम हो जाता है, और कोई धुआं नहीं निकलता तो प्रदूषण नहीं है, पेट्रोल और डीजल की बचत होती है, इससे अपने देश का पैसा भी बचता है। आज के समय में प्रदूषण, ट्रैफिक, इस सबसे बचने के लिए साइकिल का महत्व अपने आप में बढ़ चुका है। कई लोग स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी साइकिल का प्रयोग करते हैं। तो बताइए, कौन कौन उपयोग करेगा साइकिल का अपने जीवन में? करिए साइकिल का प्रयोग, क्योंकि ये आपके लिए, आपके पर्यावरण के लिए, आपकी प्रकृति माँ के लिए और आपकी भारत माँ के लिए, सबके लिए सुरक्षित है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
3: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की। गृह मंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता

0: प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गाँव और व्यक्ति तक विकास पहुँचना चाहिए।
1: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और

0: चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गांव और व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए।
1: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तली इलाकों में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
0: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को सरकार साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिंद्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीपन साहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रूपए मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू करना संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में दो पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट बुरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि ये कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली एक खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि ये लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय

0: 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांचा इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व SIR मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
2: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
0: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में HS प्रणय आयरलैंड के नहन ग्वेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में PV सिंधु ने थाईलैंड के बुसानन ओंगमाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंगकांग और आरोई ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है।

0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में HS प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे समाधि फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर, अमीर बाई और साथियों की आवाज में राजेंद्र कृष्ण के बोल और सी रामचंद्र के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। और आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो कि है श्री 420 फिल्म से मन्ना डे और साथियों की आवाजें हैं, शैलेंद्र के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत।

कहना मगर ये किसी से न कहना, इनके गले के सहारा न बहना, बिन मौसम मलहार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बहारें खिली पहनी।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं न्यू दिल्ली फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में, शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन का है संगीत।
1: मिलते ही नजर, मिलते ही नजर आप मेरे दिल में आ गए। अफसोस है कि आप भी मुश्किल में आ गए। मिलते ही नजर आए

हम सुन रहे थे सीआईडी फिल्म का यकीन गीत आदित्य की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अगला गीत जो कि है फिल्म साथी से। लता मंगेशकर की आवाज है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल है और नौशाद का है संगीत।

हम सुन रहे थे बिरादरी फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में। कुमार ने इसे लिखा और शौकत दिलवी नौशाद ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं अगला गीत। आज के कार्यक्रम का यह अंतिम गीत होगा और जो गीत है फिल्म अनुभव से, गीता दत्त की आवाज है, गुलजार के बोल हैं, कनु रॉय का संगीत है। इसके साथ ही आज्ञा दीजिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे से मुझे यानी विधि जैन को नमस्कार।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
1: मेरा यानी चंचल वर्मा का
0: प्यार भरा नमस्कार। क्या बात है चंचल, आज बड़ी महक रही हो और खूब कपड़े भी हरे भरे पहने हुए हैं। और जब मैं तुम्हारा लंच बॉक्स देख रही थी तो काफी हरी हरी सब्जी लेकर आई थी, क्या बात है।
1: वैसे तो हरी सब्जियां भाई इस मौसम में मिलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर कभी मिल जाए ना तो अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए जरूर खा लेनी चाहिए। और बात हुई हरे भरे की, तो थोड़ी सी हरियाली आप में भी है। और ये जो उत्सव का सा माहौल है ना, कल से ही जो चल रहा है, आज भी जब हम आए स्टूडियो में तो सजावट देख कर लगा कि कल के उत्सव की जो रौनक
0: है आज भी है, खुशबू है ना आज भी हमारे बीच में महसूस हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर उत्सव को जब हम खुशी के साथ मनाते हैं तो वो कई दिनों तक हमारे दिलो दिमाग पर असर करता है।
1: तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे सभी सुनने वालों को बताते हैं कि आज हमारे सखी सहेली के पिटारे में कौन कौन सी जानकारी है या मनोरंजन है और किस चीज पर हम चर्चा करने वाले।
0: तो बताइए आज क्या क्या विषय लेकर आई हैं आप।
1: तो देखिए, सखी सहेली का रिश्ता यानी कि 22 साल पुराना रिश्ता, और कोई भी रिश्ता मजबूत कब बनता है, जब वहां पर प्यार हो, खुशियां हो,
0: विश्वास हो, सम्मान हो।
1: तो रिश्तों की जो मजबूती है उसका आधार क्या है, इस पर हम बात करेंगे।
0: बिल्कुल।
1: और आज बुधवार का दिन है तो साड़ियों की भी कुछ बात होती है। जब उत्सव का समय होता है ना तो भाई जो महिलाएं हैं वो बड़ी सजी धजी नजर आती हैं और साड़ियों के बिना कहाँ श्रृंगार पूरा होता है।
0: तो भाई हम अपनी अलमारी खोलते हैं ना जब उत्सव के दिन की आज हमें खास साड़ी पहननी है, तो चंचल लगता है जैसे हमारे पास कुछ है ही नहीं। बहुत कुछ होते हुए भी लगता है कुछ नहीं है, क्या पहना जाए क्या पहना जाए। तो लगभग ये सभी महिलाओं की कमजोरी होती है ना।
1: तो आज जो साड़ी है वो है घर चोला साड़ी, जिसके बारे में बात होगी। और शब्द हमारा, विचार आपके, तो हमारे सुनने वालों को जिस शब्द के बारे में अपने विचार भेजने हैं वो शब्द है नियोजन।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर।

0: शब्द है ये नियोजन जी। तो इस पर हमारे श्रोता जो हैं अपने विचार लिखें कि नियोजन का अर्थ क्या है और आपने इसको किस तरह से किस अर्थ में अपने जीवन में उतारा है।
1: और 3 जून का दिन होता है विश्व साइकिल दिवस, तो साइकिल से जुड़ी हुई अपनी यादें भी आप साझा कर सकते हैं।
0: हाँ, ये बता सकते हैं कि जब आपको पहली साइकिल मिली आपकी जिंदगी में, पहली साइकिल थी, चाहे वो छोटी सी थी, चाहे वो बड़ी थी या वो उससे बड़ी थी, तो आप उसका जिक्र कर सकते हैं कि वो साइकिल हमारे लिए कितना मायने रखती थी उस जमाने में, है ना।
1: और आज कई घरों में हमने देखा है कि चाहे दोपहिया वाहन है या चौपहिया वाहन है, उनके घर में बड़े बड़े वाहन खड़े हैं, लेकिन एक साइकिल जरूर रखते हैं, क्योंकि लोग अपने स्वास्थ्य को लेते हुए बहुत जागरूक हो रहे हैं, तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक जाने की बजाय वो साइकिल लेके
0: नजर आते हैं,
1: ताकि उनकी सेहत पर कोई बुरा असर ना पड़े। तो साइकिल एक घर का परिवार के सदस्य की तरह वो हिस्सा होती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और आजकल इसका प्रचलन जो थोड़ा कम हुआ है ना, उससे हमारी सेहत में बहुत बुरा असर भी पड़ा है, क्योंकि हमने हर जगह दुपहिया वाहन या चार पहिए के वाहन को, कार को लेकर जाना सीख लिया। थोड़ी सी दूर पर हम सामान लेने जाते हैं और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके ले जाते हैं, तो हम हिलना डुलना ही नहीं चाहते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आपने साइकिल चलानी नहीं छोड़ी है तो यकीनन आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा।
1: तो साइकिल चलाने के क्या फायदे हैं, इस पर भी आप हमें लिख कर बता सकते हैं। और गर्मियों की बात हो रही है, तो गर्मियों में जैसे हमने शुरू में ही कहा ना कि हरी सब्जियां बड़ी मुश्किल से देखने को मिलती हैं, और सिर्फ हरी सब्जियां नहीं, बाकी सब्जियां भी बाजार में बड़ी कम दिखती हैं।
0: हाँ।
1: ले देखे कुछ गिनी चुनी सब्जियां हैं, तोरी है, टिंडे हैं, भिंडी है, कद्दू है,
0: लौकी है,
1: जिसमें से बहुत सारी सब्जियां तो बच्चे पसंद नहीं करते खाना, तो महिलाओं के सामने बड़ी समस्या की बनाए क्या।
0: सुनो चंचल, बहुत सारी सब्जियां बनाने पर जो पति देव है ना हमारी सखियों के, वो फुला लेते हैं, क्या बना दिया आज, मैं नहीं खाता हूँ।
1: तो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है बिना सब्जी के सब्जी बनाने के लिए बेसन, और बेसन से जाने कितनी तरह की सब्जियां बनाई जा सकती है। तो हमारी सखियां बेसन से कौन कौन सी सब्जी बनाती हैं, जैसे अगर मुझे कुछ याद है तो कड़ी बन जाती है, गट्टे बन जाते हैं, पितौड़ की सब्जी,
0: अरे सारा मत बताओ,
1: और इसके अलावा कौन सी सब्जियां हैं और उनकी रेसिपीज भी हमारी सखियां साझा करें। तब तक ये गीत सुन लेते हैं सखियों
0: के साथ। सुन लेते हैं, तो अपनी सखियों से हम कहते हैं कि फटाफट तैयार हो जाइए, और बेसन की इन गर्मियों के दिनों में आप क्या सब्जी बनाती हैं हमें भी बताइए
1: जी।

0: हाँ तो चंचल, जब हम बेकरार होते हैं कब होते हैं बताओ? जब हम किसी के साथ मजबूती से किसी रिश्ते में बंधे होते हैं, है ना?
1: और पता है, जब किसी से रिश्ता बहुत मजबूत होता है, कई बार हम उनके साथ ना हो तो भी उनका जो एहसास है वो हमारे साथ होता है।
0: बिल्कुल सही,
1: और ये उसी रिश्ते की मजबूती को दिखाता है।
0: बिल्कुल, तो रिश्तों की मजबूती के लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, वही हमारे सफल जीवन का आधार है। अगर इस बात को हम जान लेंगे तो हमारे रिश्ते मजबूत होंगे, वरना स्वार्थी रिश्ते तो हर जगह मिलते ही हैं।
1: बिल्कुल, मतलब ही रिश्तों का तो कहते हैं ना कि हर जगह लोग अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं, लेकिन जीवन में रिश्तों की कीमत को साधारणतः बहुत कम लोग समझ पाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जो इस बात को समझ आते हैं कि रिश्ते हमारी ताकत होते हैं, और इसलिए जरूरी है कि जो भी रिश्ते हमारे साथ हैं और वो हमें मजबूती दे रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि रिश्तों की जो नींव है वो प्यार और त्याग पर ही टिकी होती है। प्यार के धागे में ही रिश्ते पिरोए जाते हैं और त्याग से उन्हें हम प्रगाढ़ता देते हैं, मजबूती देते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और अपने से बड़ों के साथ अगर हमारे रिश्ते हैं तो विनम्र होने चाहिए, और विनम्रता ही हमारे जीवन पथ पर आगे हमें ले जाती है।
1: जी,
0: अहंकार और अक्कड़ से भरा जो व्यक्तित्व होता है वो कभी भी रिश्तों को सही ढंग से नहीं निभा पाता चंचल।
1: हाँ।
0: और इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ कोई रहना भी नहीं चाहता, और क्या होता है, धीरे धीरे वो व्यक्ति अकेला रह जाता है।
1: लेकिन हम अपने लिए अगर मान सम्मान चाहते हैं ना मंदाकिनी जी, तो सभी जो भी हमें मिलते हैं, बड़े हैं छोटे हैं, सबके साथ सरल सहज रहने की कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए। जो जैसा है बस उसे वैसे ही अगर हम स्वीकार कर लें, उसके साथ अपना तालमेल बिठा लेते हैं, तो अगर विपरीत स्वभाव वाला भी कोई व्यक्ति है उसके साथ भी हम सामंजस्य बिठा सकते हैं, और ऐसा जब होगा तो कभी भी मुश्किलें आएंगी ही नहीं हमारे जीवन में।
0: बिल्कुल सही कहा। परिवार के साथ हम जिन रिश्तों से जुड़े होते हैं वो तो हमें जन्मजात मिलते हैं, मतलब वो भगवान की देन है, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, और उनमें कोई बदलाव भी नहीं हो सकता। भाई माता पिता है, भाई बहन है, ये हमारे रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं। बदलाव लाना है तो अपने स्वभाव में लाना होता है, और प्रेमपूर्ण होकर संबंधों को निभाने का जो प्रयास है वही आपके जीवन को खुशियों से भरता है।
1: बिल्कुल, और एक सफल और संतुष्टिदायक जीवन अगर जीना है तो रिश्तों को मजबूत बनाना भी जरूरी हो जाता है हम सबके लिए। विश्वास, संवाद, सम्मान, सहानुभूति, प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देकर हम सार्थक संबंध बना सकते हैं और उनको हमेशा के लिए कायम भी रख सकते हैं। और यही व्यवहार हमारे व्यक्तिगत और व्यवसायिक जीवन को समृद्ध करने में भी मंदाकिनी जी बहुत मदद होता है।
0: बिल्कुल,
1: दोस्त बनाने की कोशिश हम जरूर करें, लेकिन अच्छे दोस्त बनाने पर ध्यान दें, क्योंकि दोस्त हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं और वो हमारे बहुत बड़े राजदार भी होते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ऐसे दोस्त चंचल बहुत कम मिलते हैं। ज्यादातर लोग दोस्ती करते थे वही कहते हैं भी हमारा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन जब आप उनसे दोस्ती करते हैं तो वही आपके साथ क्या करते हैं ये हमें हम कह नहीं सकते हैं। रिश्ते जो होते हैं हमारे अंदर की अच्छाई या बुराई को उजागर करके हमें बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, और इसीलिए किसी भी नए रिश्ते में कदम रखते समय बस थोड़ा सा सावधानी जरूरी होती है।
1: बिल्कुल, हमारे आसपास परिवार के लोग जो भी होते हैं, ये इनके साथ हमारे रिश्ते बहुत भावनात्मक होते हैं, और ऐसी दुनिया में सच्चे संबंध से लेकर तेजी से ये जो रिश्ते हैं मूल्यवान होते जा रहे हैं। मजबूत रिश्ते बनाने की कला में जो महारत हासिल करनी है अगर आपको, तो भई आपके अंदर प्यार होना बहुत जरूरी है।
0: सबसे बड़ी बात है कि आप प्यार दें, सम्मान दें, विश्वास दें, है ना? और इसके अलावा मजबूत रिश्ते सुखी और संतुष्टिपूर्ण जीवन की आधारशिला माने जाते हैं। चाहे अगर हम व्यक्तिगत बात करें जैसा कि आपने कहा, या व्यवसायिक स्तर पर बात करें, अगर हमारे व्यवहार में कड़वाहट है तो कोई भी हमें पसंद नहीं करेगा।
1: अब देखो ना, हमारे सुनने वालों का एक संदेश मैं पढ़कर सुनाती हूँ। ये लिखते हैं कि रिश्तों की मजबूती सफल और संतुष्ट जीवन का वास्तविक आधार है। मजबूत रिश्ते जीवन में भावनात्मक सुरक्षा, मानसिक शांति, कठिन परिस्थितियों में संबल प्रदान करते हैं। अकेले कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। सार्थक और गहरे संबंध ही जीवन को सही मायने में खुशहाल बनाते हैं। सफल जीवन में मजबूत रिश्तों की मानसिक चुनौतियां और उतार चढ़ाव के समय परिवार, दोस्तों के साथ तनाव करने में मदद करता है। अच्छे रिश्ते आपको नई सीख, दृष्टिकोण और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं, और आपके व्यक्तिगत रूप से आपको

0: बेहतर बनाते हैं।
1: बिल्कुल, वही एक श्रोता ये भी लिखते हैं चंचल कि रिश्ते जो है जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होते हैं। धन पद और प्रतिष्ठा जीवन को सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी और मानसिक संतोष रिश्तों की मजबूती से ही प्राप्त होता है। परिवार हो, मित्र हो, समाज हो, इनसे जुड़े जो रिश्ते हैं वो हमारे जीवन को प्रेम देते हैं, विश्वास देते हैं और अपनत्व से भर भी देते हैं। तो ये जो रिश्ते हैं हमें कठिन समय में संबल देते हैं और सफलता के क्षणों को और अधिक आनंदमय बना देते हैं। इसलिए रिश्तों को समय दें, उन्हें सम्मान दें, प्रेम से सींचे, क्योंकि रिश्तों की मजबूती ही सफल और सुखी जीवन का सच्चा आधार होती है।
0: और भाई बातें तो भी बहुत सारी करनी है, संदेश भी पढ़ने हैं, लेकिन साथ में गीत सुनते हुए आगे बढ़ते हैं।
1: चलिए

0: तो देखा आपने कितनी इल्तिजा कर रही थी कि दूरी मत होना, दूर नहीं होना, और ये रिश्ते हमें निभाने हैं, है ना।
1: और रिश्तों में ही तो कई बार हम प्यार से सोना
0: वही मैं कहने वाली थी, कितना प्यार से हम किसी को कहते हैं ओ मेरे सोना रे, है ना, ये प्यार है। और ये रिश्ता बना रहे उसके लिए हम इस तरह का भाव रखते हैं मन में। तो एक श्रोता लिखते हैं चंचल कि रिश्तों की मजबूती किसी इमारत की नींव की तरह होती है, जो दिखती तो नहीं है पर सब कुछ उसी पर टिका होता है। रिश्तों में संवाद के दौरान बोलने से ज्यादा सुनने पर फोकस करना पड़ता है, तर्क वितर्क करने पर बहस की स्थिति बन जाती है। जबरन अपनी बात मनवा लेना किसी रिश्ते की जीत नहीं होती, वो बात अपनी पसंद दूसरे पर थोपना भी नहीं होता। रिश्तों में बहुत सी गलतफहमियां बन जाती हैं जो चुप्पी से लंबे समय तक रह सकती हैं। उन्हें आपसी बातचीत और सहमति से हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। किसी में सामने वाले की अच्छाइयों के साथ कुछ छोटी छोटी कमियां भी होती हैं, उसे स्वीकार करें, माफी मांग लेना, माफ कर देना, वो ज्यादा अच्छा होता है।
1: और यही बात हमारे श्रोता ने पहले

0: बिना किसी रिश्ते की जीत नहीं होती, वो बात अपनी पसंद दूसरे पर थोपना भी नहीं होता। रिश्तों में बहुत सी गलतफहमियां बन जाती हैं जो चुप्पी से लंबे समय तक रह सकती हैं। उन्हें आपसी बातचीत और सहमति से हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। किसी में सामने वाले की अच्छाइयों के साथ कुछ छोटी छोटी कमियां भी होती हैं, उसे स्वीकार करें, माफी मांग लेना, माफ कर देना वो ज्यादा अच्छा होता है।
1: और यही बात हमारे श्रोता ने पहले भी लिखी थी, जो जैसा है वैसे अगर उसे स्वीकार कर लिया जाए तो रिश्तों में कहीं कोई बनावट नहीं होती या कहते हैं कि तनाव नहीं रहता। ये चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। इसी तरह से हमारे यशोदा ने लिखा है कि भाई मेरे जीवन का आधार मेरी धर्म पत्नी है और उनके आने से दो कलियां मेरे जीवन में खिली और पैरालिसिस होने पर भी उन्होंने मेरा सारा साथ दिया और सहारा बनकर पूरे परिवार को संभाल लिया। आज उसी वजह से मैं स्वस्थ हो सका हूं और इसीलिए कहते हैं कि सही समय में जीवन साथी बनी वो मेरी और जीवन का वो आधार है।
0: क्या बात है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसके लिए हम आपने जो आपकी धर्म पत्नी उन्हें सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मजबूत रिश्ते एक सुखी और सफल जीवन गहरे में और आत्मीय संबंध जीवन के तनाव को कम करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। जहां एक और अकेला व्यक्ति संघर्षों में टूट जाता है, वहीं मजबूत पारिवारिक और सामाजिक संबंध उसे चट्टान जैसा सहारा देते हैं।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये चट्टान और मजबूत होगी अगर आप उसे प्यार से हमेशा सींचते रहेंगे।
0: बिल्कुल।
1: इसी तरह से हमारे एक अन्य श्रोता का संदेश है कि रिश्तों की मजबूती हमारे लापरवाह होने पर कमजोर पड़ जाती है। मैं स्वयं के अनुभव से ये बता रहा हूँ कि नौकरी में रहते हुए हम कभी बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे पाए, माँ के संरक्षण में ही रहे तो सब अपने मन के हो गए। जब घर आते तो सब सामान्य दिखते थे लेकिन करते वो अपने मन की थे। एक ने तो बीए तक कर लिया, जूनियर हाई स्कूल खत्म कर दिया है उसने, दूसरे ने, और आज बुढ़ापे में घर में पड़े उन दिनों की ढिलाई का परिणाम हम भुगत रहे हैं। अनुशासन जब सिखाना चाहिए था तब सिखाया नहीं गया और अब वो सब अपने अपने परिवार में मस्त हैं। पत्नी रही नहीं तो अब सब होते हुए भी सारे रिश्ते बेमानी से लगते हैं और बस मुश्किल के दिन उनके गुजर रहे हैं। तो कई बार हमने जब अगर रिश्तों पर हम ध्यान नहीं दे पाते तो सिर्फ ये अफसोस और काश हमारे जीवन में रह जाते हैं। इसीलिए समय पर वो बच्चों को जो हम कहते हैं संस्कार देना, या बच्चे जो है ना हमारे व्यवहार से ही सीखते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो सबसे अच्छा तरीका यही है, आप अपने व्यवहार में वो सारी अच्छाई या
0: बच्चों को दें।
1: जी
0: बिल्कुल, ताकि बच्चे भी बड़े होकर वही आपको दें, है ना। ये तो है कि टिट फॉर टैट होता ही, अगर आपने अपने माता पिता को दुख दिया है तो आपके बच्चे भी फिर आपको बड़े होकर दुखी देंगे, ऐसा माना जाता है। क्योंकि उन्होंने जो देखा है वही उनके मन में, उनके जो बीज है भीतर वही तो उत्पन्न हुआ है ना, वही फलता फूलता है। इसलिए हमेशा खुद को, जब तक हम एक प्रेरणा का स्रोत नहीं बनाएंगे, बच्चों के लिए आइडियल नहीं बनेंगे, बच्चे भी नहीं बन पाएंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि रिश्तों की मजबूती सफल जीवन का सबसे प्रमुख आधार है। ये भरोसा, सम्मान और त्याग के धागों से बंधा होता है जो न केवल व्यक्तिगत खुशी लाता है बल्कि कड़े समय में भावनात्मक संबल भी प्रदान करता है। गहरा और सच्चा रिश्ता ही सफलता का सफर है, असली प्रेरणा है। समर्पण और प्रेम से सींचा जाना चाहिए सफल जीवन के रिश्तों का महत्व। भावनात्मक स्थिरता, मजबूत रिश्ते तनाव कम करते हैं और मानसिक शांति हमें प्रदान करते हैं। वहीं वो कहते हैं साथ ही कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कुछ सूत्र है, विश्वास, ईमानदारी, जिससे कि हमारे रिश्ते जो है टिके रहते हैं। संवाद, मधुर संवाद होने चाहिए, त्याग और स्वीकृति की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे को समय देना चाहिए, समय निकालना चाहिए। अहंकार और अक्कड़ रिश्तों के लिए सबसे बड़े बाधक होते हैं जो व्यक्ति को अकेला कर देते हैं। और सच्चा वैवाहिक जो जीवन है तभी सफल होता है जब आप दोनों मिलकर रहते हैं।
1: एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिश्ते अगर मजबूत हैं तो जीवन सफल होता है। अगर हमारे जीवन में रिश्ते हमने नहीं कमाए तो समझिए कि काम, जीवन कुछ भी काम नहीं आया और वो रिश्ते सफल नहीं होंगे। इसीलिए अपने रिश्ते अगर हम मजबूत रखेंगे तो किसी भी जरूरत के समय वो हमें उनसे मदद मिलेगी और वो आपके अगर साथ होंगे तो यही आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। और आगे छोटा सा संदेश है हमारे श्रोता का, हम भी रिश्ते निभाते हैं और बनाते भी हैं और ये हमें बहुत अच्छा लगता है, हम परिवार में ही रहते हैं।
0: बिल्कुल, तो अब एक गीत सुन लिया जाए।

0: हाँ चंचल, देखिए जीवन से भरी जब आंखें होती है ना, तो आपके व्यक्तित्व पे चार चांद लगा देती हैं, है ना। और ऐसे में जब महिलाएं खास तौर से खूबसूरत साड़ियां पहनती हैं, तो फिर उनको तो देखते मन ही भरता नहीं है कि क्या बात है।
1: और आपने बात की भाई किसी खास मौके की, तो शादी एक ऐसा मौका होता है ना, जब हमें अपना कल्चर उसे दिखाने का और उसमें लुत्फ उठाने का जब मौका मिलता है, तो उसे महिलाएं खासतौर पर बिल्कुल गंवाना नहीं चाहती। शादियों में रीति रिवाज के अलावा सबसे ज्यादा खास होता है पारंपरिक खाना और पारंपरिक पहनावा।
0: और शादी किसी भी लड़की के लिए उसके जीवन के सबसे खास मौकों में से एक होता ही है। दूल्हा दुल्हन के कल्चर और रीति रिवाज शादी के मौके को और भी खास बना देते हैं। हर जगह का अपना कल्चर होता है, अपने नियम होते हैं और उनका अपना खास महत्व भी होता
1: तो
0: है।
1: तो आज हम गुजरात के कल्चर की एक खास साड़ी के बारे में बात कर रहे हैं मंदाकिनी जी, और जिसे कोई लड़की शादी में पहनकर अपने जो भी उसके लुक्स हैं उसे वो और भी ज्यादा निखार सकती है, यानी कि हम बात कर रहे हैं घटचोला साड़ी की।
0: क्या बात है, घटचोला साड़ी इतनी सुंदर लगती है चंचल कि पूछो मत। तो घटचोला साड़ियां गुजराती शादियों का बहुत खास हिस्सा है और इन्हें जो खास दुल्हन की साड़ी के रूप में चुना जाता है। घटचोला साड़ी के चेकर्ड ग्रिड में प्रत्येक वर्ग दुल्हन और उसके वैवाहिक घर के लिए आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा माना जाता है।
1: और ये दुल्हन की सुंदरता में चार चांद लगा देती है, तो वहीं इस साड़ी की जो खूबसूरती है और इसकी तरह ही इसका मतलब भी बड़ा खास होता है। घटचोला यानी कि नाम में दो गुजराती शब्दों को मिलाया गया है, घर जिसका मतलब होता है
0: घर,
1: और चोला इसका मतलब है कि पोशाक। हाँ। और दुल्हन अपने पैतृक घर से यानी कि पिता के घर से वैवाहिक घर में जाने को इस चीज के बारे में दर्शाया जाता है। इसका मतलब होता है कि दुल्हन का नया घर और उस चोले को पहनकर ये लड़की उस नए घर में प्रवेश
0: करती है। बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से इस बात को रखा गया है। और वैसे तो घटचोला एक साड़ी होती है, लेकिन आजकल शादियों में इसके दुपट्टे का भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है।
1: और देखिए ना, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूँ आपके साथ चंचल वर्मा।
1: और मैं हूँ आपके साथ मंदाकिनी।
0: बात कर रहे थे हम साड़ी की।
1: बिल्कुल, साड़ियों की बात हो और हम भूल जाएं, ऐसा कभी होता है चंचल? तो हम बात कर रहे थे कि आजकल शादियों में इसके दुपट्टे का भी खूब इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिसे दुल्हन अपने सिर पर ओढ़ती है। और ये कॉटन या सिल्क से बना होता है, जिस पर जरी का काम किया जाता है। घटचोला साड़ियों में पारंपरिक रूप से जरी की बुनाई के साथ चेकर्ड ग्रिड डिजाइन होता है और अक्सर मोर, कमल, फूल पत्तियां जैसे शुभ चिन्ह भरे होते हैं।
0: जब आपने दुपट्टे का जिक्र किया तो मुझे याद आया, सिर्फ महिलाएं ही नहीं पहन कर सचती संवरती। जब कुर्ता पायजामा मर्द पहनते हैं तो जो हमारे पुरुष साथी है ना, वो भी घटचोला का दुपट्टा लेना बड़ा पसंद
1: साइड में रख लेते हैं वो भी।
0: और हम बात कर रहे थे साड़ी की, जो आपने बताया चेकर डिजाइन होते हैं, फूल पत्तियों के चिन्ह होते हैं इस पर। और क्योंकि ये एक पारंपरिक विवाह में पहने जाने वाली साड़ी है, तो इसमें वर्गों की जो संख्या है अनुष्ठानिक रूप से वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। वर्गों की संख्या 9, 12, 92 के गुणांक में होती है। और ये पहले कपास से बनी होती थी, लेकिन अब रेशम का भी इसमें उपयोग किया जाने लगा है।
1: हालांकि घटचोला साड़ी में क्या है कि बांधनी साड़ियों की जैसा मिश्रण होता है चंचल, जिसमें घटचोला के जरी ग्रिड पैटर्न के भीतर बांधनी टाई डाई को शामिल भी किया गया है।
0: घटचोला बनाने की शुरुआत गुजरात के खंबात जिले में हुई थी और तब से लेकर आज तक गुजरात में साड़ियों, ये जो साड़ी है वो शादियों में बहुत अहम हिस्सा मानी जाती है। इस साड़ी की सबसे खास पहचान है ग्रिड पैटर्न, और ये साड़ियां पारंपरिक रूप से विवाह जैसे खास अवसरों पर ही पहनी जाती हैं। इन साड़ियों में गुजरात की पारंपरिक खास साड़ी है ये, खास तौर पर जामनगर, राजकोट इलाकों में इनका बहुत ही ज्यादा चलन देखने मिलता है।
1: बिल्कुल, और सास की तरफ से बहू को जब आशीर्वाद दिया जाता है ना, तो घटचोला दूल्हे के परिवार की तरफ से दिया जाता है, जिसे ओढ़कर दुल्हन अपने नए घर में प्रवेश करती है। और ये नए परिवार की स्वीकृति और आशीर्वाद का प्रतीक भी होता है। और जब दुल्हन अपने नए घर में स्वागत के लिए पानेत्र साड़ी के ऊपर जो है घटचोला साड़ी डालती है, तो इस बात का प्रतीक माना जाता है कि शादी के बाद दूल्हा और उसका परिवार दुल्हन का हमेशा ख्याल रखेंगे।
0: इनमें से बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने भी हम तक लिखकर पहुंचाई हैं, उन्हें हम धन्यवाद कहते हैं। और घटचोला जो है वो दुल्हन को अपने सिर और कंधे दोनों पर वो ओढ़कर आती है, जिसे फेरों के समय दूल्हे को के दुपट्टे के साथ में बांध दिया जाता है। ये पति पत्नी के अटूट संबंध और इस जोड़े के बीच के पवित्र रिश्ते और उसकी मजबूती को दर्शाता है। इसलिए भी शादी में इस साड़ी का बहुत महत्व
1: होता है। बिल्कुल, और घटचोला साड़ी एक सदाबहार फैशन है जो कभी फैशन से बाहर नहीं जाता। इसे शादी के अलावा आप दूसरे फंक्शंस में भी पहन सकते हैं। देखा है बहुत सारी महिलाओं को चाव से पहनकर जाती हैं। ज्यादातर लाल है, गुलाबी है, हरा है, पीला है, ये रंग इसमें बेहद खास लुक देता है। और इसके दुपट्टे को लहंगे के साथ भी अलग अलग स्टाइल तरीके से, स्टाइलिश तरीके से हम पहन सकते हैं, जो खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं।
0: तो भाई कुछ गाने भी सदाबहार होते हैं साड़ियों की तरह, सुन ले।
1: बिल्कुल, जो हमारे कार्यक्रम में 4 चांद लगा देते हैं।

0: कुछ तुम कहो और कुछ हम कहें, यानी बात हम करेंगे अब विश्व साइकिल दिवस की, कुछ हम कहेंगे कुछ हमारे श्रोता तो कह रहे, कुछ नहीं बहुत कुछ कहेंगे।
1: बिल्कुल, ये इतना प्यारा विषय है साइकिल, हमारा इतना प्यारा एक ऐसा
0: याद है,
1: याद हमारा अभिन्न मित्र हुआ करता था एक जमाने में जब हमें पहली साइकिल मिली थी, तो आज भी भुलाई नहीं भूलती।
0: और 3 जून को ये दिन हम मनाते हैं और इसका उद्देश्य है लोगों को साइकिल चलाने से जो लाभ होते हैं उसके बारे में जागरूक करना। और ये दिन इसलिए भी खास है मंदाकिनी जी, क्योंकि साइकिल एक ऐसा परिवहन साधन है जो वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद करता है और पर्यावरण को भी बचाने में मदद करता है।
1: बहुत बड़ी बात। और ये परिवहन का एक सबसे सस्ता, सरल और टिकाऊ और सुलभ साधन है चंचल। इसे हर वर्ग के लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और इन दिनों साइकिलिंग को एक स्वस्थ और किफायती परिवहन विकल्प के रूप में भी प्रस्तुत किया जा रहा है। साइकिल चलाना सामाजिक समावेशन और शांति की संस्कृति को बढ़ावा भी देता है।
0: विश्व साइकिल दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अप्रैल 2018 में मनाने की घोषणा की थी और ये दिन साइकिल के महत्व पर बहुत सारी बातें हमें बताता है। और हम सब भली भांति इस बात को समझते हैं कि साइकिल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है और पर्यावरण के नजरिए से भी अच्छा कदम है, ये हम बता ही चुके हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और इस दिन का समर्थन करने वाले भी मानते हैं कि साइकिल का उपयोग विकास को बढ़ावा देना, बच्चों और युवाओं के लिए शरीर को मजबूत करना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और बीमारियों की रोकथाम करने के साधन का एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
0: अब देखो ना, हमारे जो साथी वो क्या लिख रहे हैं। साइकिल कभी मध्यम वर्गीय परिवार की आन बान शान हुआ करती थी। जो साइकिल चलाता था या जिसके दरवाजे पर साइकिल होती थी, समझिए कि वो समाज में एक सम्मानित व्यक्ति हुआ करता था। और इसी तरह कहानी में कोर्स की किताब भी पढ़ी है हमने। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा साइकिल की सवारी के लेखक सुदर्शन हैं पंडित बद्रीनाथ भट्ट। इन प्रेरणादायक कहानी में आदर्शवादी संदेश होता था और ये कहानी हास्य से भरपूर है। इसमें लेखक साइकिल सीखने की प्रबल इच्छा और इसके दौरान उनके द्वारा किए गए मजेदार प्रयासों के बारे में वर्णन करता है। तो अगर किसी ने ये कहानी नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़नी चाहिए।
1: बहुत सुंदर जिक्र किया है इन्होंने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब मैंने पहली बार साइकिल पर कदम रखा तो मेरे मन में धुकधुकी थी, कहीं मैं गिर न जाऊं। संतुलन बनाने की कोशिश में शुरुआती कुछ पलों में हैंडल कांप रहा था और मुझे पैडल मारने में डर लग रहा था। कुछ बार लड़खड़ाने और गिरने के बाद मैंने संतुलन बनाना सीखा। हवा का एहसास जैसे ही मैंने पैडल पर

0: ताकत लगाई और साइकिल आगे बढ़ी तो चेहरे पर ठंडी हवा का सुखद एहसास था।
1: और हमारे एक अनुश्रोता का संदेश है कि जब मैंने पहली बार पापा को साइकिल के लिए कहा तो उसके 2 साल बाद मेरी साइकिल आई। यानी कि पहले के माता पिता भी ऐसे होते थे कि तुरंत आपकी फरमाइशें पूरी नहीं करते थे, सही समय आने पर ही वो ला कर देते थे। आगे उन्होंने लिखा है कि जब भी पापा से पूछो कब आएगी तो वो कहते एक टायर बन रहा है, फिर कहते हैंडल बन रहा है, फिर कभी कहते कि सीट बन रही है, और इस तरह उन्होंने 2 साल निकाल दिए।
0: कितनी अच्छी बात है। और वही आजकल के माता पिता 2 मिनट भी नहीं लगाते, अगर बच्चे ने कह दिया मुझे साइकिल चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, तो 2 मिनट में आ जाता है। एक शोधा लिखते हैं कि साइकिल की बात चली है तो आपको बता दूं, 1999 में कक्षा 10वीं पास करने पर मेरे को मिली थी, उसकी खुशी मैं बयान नहीं कर सकता। और आज दो दुपहिया वाहन है, किंतु साइकिल की बात कुछ और ही है। मेरी वो साइकिल आज भी मैंने संभाल कर रखी है। मैं चली देखो प्यार की गली, ऐसा ये गाना भी सुनना चाहते थे।
1: और भाई ये गाना नहीं सुना कि गाना कोई दूसरा सुनवा देगा, गाने सभी अच्छे हैं। और संदेश बताइए क्या है।
0: ये लिखते हैं कि एक अन्य श्रोता कि दोपहिया वाहन यानी मोटरसाइकिल तब चला सकती हूँ जब आप साइकिल चलाना सीख गए हो। मतलब दोपहिया वाहन चलाने से पहले साइकिल चलाना आना जरूरी है। भाई वो तो बेस है आपका, है ना, वो तो सबसे पहले आप नहीं सीखेंगे तो उसके बाद दूसरी चीजों पर जब आप हाथ साफ करेंगे तो आपको डर लगेगा, आप सीख ही नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ ये बात भी होती है चंचल कि साइकिल चलाने के साथ घुटने टूटने का जो है ना, घुटनों में चोट लगने का जो एक सबसे बड़ा नजर आता है, वो उसके लिए तैयार रहना चाहिए।
1: एक और बात बहुत सारे श्रोताओं ने लिखकर भेजी है कि नियमित साइकिल चलाने से हृदय फेफड़े मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद मिलती है और इसी वजह से हृदय संबंधी बीमारियां, मोटापा, गठिया, मधुमेह, कैंसर, बहुत सारी बीमारियों के खतरे को हम कम कर सकते हैं। साइकिलिंग तनाव को भी कम करती है और मानसिक कल्याण को भी बढ़ावा देने में ये सहायक है। तो चले अब गाना सुन ले।
0: नहीं, एक मेरे पास बहुत अच्छा मैसेज आया है,
1: तो पढ़िए ना।
0: हाँ, ये लिखते हैं कि मेरे लड़के ने पूरी पढ़ाई साइकिल कॉलेज लेकर जाकर की है और इस साल फाइनल पढ़ाई होगी, अभी भी वो साइकिल चलाता है।
1: क्या बात है।

0: चंचल वक्त तो तब गुजरेगा ना जब आप वक्त का ध्यान रखेंगे, और कैसे ध्यान रखेंगे कि आपके पास घड़ी होगी। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि हम लोग जब हाई स्कूल पास करते थे तो लड़कियों को हाथ की घड़ी दिया करते थे हमारे माता पिता, और हम लड़कों को साइकिल मिला करती थी।
1: तो भाई ये भी एक तरह का नियोजन है, यानी कि प्लानिंग है कि लड़कियों को क्या देना है, लड़कों को क्या देना है। उस समय पहले की अगर बात जब चल रही है ना, तो लड़कियों को भाई वाहन चलाते समय कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, उन्हें थोड़ा नाजुक समझकर इस तरह के उपहार नहीं दिए जाते थे। और लड़कों को क्योंकि बाहर जाकर ही सारे काम करने हैं,
0: इसलिए साइकिल दे दी जाती थी।
1: लेकिन दोपहिया वाहन या मोटरसाइकिल का इतना फैशन नहीं था।
0: आज उल्टा है चंचल, आज लड़कियों को कमजोर नहीं मानते हमारे माता पिता भी, और उन्हें यहाँ तक की चार पहियों वाली गाड़ी भी दिलाने में कोई परहेज नहीं करते हैं।
1: और बिल्कुल इस बात का नियोजन भी अब सब माँ बाप करते हैं। और नियोजन पर ही बात हो रही है, नियोजन का मतलब होता है योजना बनाना या फिर प्लानिंग करना। और दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है शब्द, मतलब बहुत सारे शब्द इसमें, इसके जो अन्य शब्द हैं योजना, आयोजन, प्रबंध, व्यवस्था, रूपरेखा या फिर रणनीति,
0: इस अर्थों में भी इनको समझा जा सकता है इन शब्दों से भी। और नियोजन एक प्रबंधन प्रक्रिया है जिसमें भविष्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक यानी जरूरी कार्यों और संसाधनों का निर्धारण किया जाता है, और ये प्रक्रिया लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम करती है।
1: बिल्कुल, नियोजन में की जो प्रक्रिया है बहुत सारे चरण शामिल होते हैं, जिसमें विकल्पों का मूल्यांकन, योजना का चयन, उसका क्रियान्वयन, और नियोजन में भविष्य में आने वाले जो भी जोखिम है या अनिश्चितताएं हैं उनका पहले से ही एक अनुमान निकालकर क्या समाधान हो सकता है, इसकी तैयारी की जाती है।
0: बिल्कुल, और नियोजन में किसी भी पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य की एक रूपरेखा तैयार की जाती है। इसे हम यूं भी समझ सकते हैं कि ये निर्णय लेने की एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो तय करती है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है।
1: इसीलिए हमारे श्रोता लिखकर हमें बता रहे हैं कि नियोजन प्लानिंग का सामान्य अर्थ योजना बनाना है। ये किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने की बौद्धिक प्रक्रिया होती है। इसमें यह तय किया जाता है कि काम कब करें, कैसे करें, कहां करें, किसके द्वारा किया जाएगा, और उपलब्ध साधन का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित कर लेना ताकि जो लक्ष्य है उस तक आसानी से पहुंचा जा सके। ये सब वैसा ही है जैसे हम अपने घर का बजट बनाया करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, और अगर सरल शब्दों में हम इसे समझें तो वर्तमान और भविष्य के बीच की खाई को कम करना भी नियोजन है, और ये तय करना कि आने वाले समय में हमें किस दिशा में काम करना है। किसी स्पष्ट लक्ष्य को ध्यान में रखकर जो योजना बनाई जाती है वही नियोजन है, और ये योजना वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों के आधार पर बनाई जाती है।
1: और बिल्कुल ममता मंदाकिनी जी, समय, धन, उपलब्ध संसाधन, इन सब का बेहतर उपयोग भी जिस तरह से किया जाएगा ये नियोजन ही बताता है हमें। जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं तो उनमें से किसी सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना भी नियोजन का मुख्य हिस्सा होता है।
0: और नियोजन का यानी जो है विभिन्न तरीकों में से जो सबसे उपयुक्त और प्रभावी मार्ग का चयन करना वही नियोजन कहलाता है।
1: तो ये भी एक नियोजन है ना कि बातों के बाद गाना सुनवाना है।

0: बहुत सुंदर गीत था,
1: बहुत सुंदर गीत था, और सुनने के बाद एक मन में अलग सा नशा आ गया है
0: जी।
1: और चंचल हम बात कर रहे थे ना कि भाई आजकल गर्मी का मौसम है, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या सब्जी बनाएं, क्योंकि महिलाओं की खास तौर से ये सबसे बड़ी परेशानी होती है।
0: तो हमारे इसलिए होती है क्योंकि बच्चे बड़े चूजी होते हैं, वो बहुत सारी सब्जियां खाने के लिए मना कर देते हैं। जब भी उन्हें बोलो टिंडे की सब्जी बनेगी तो उनका मुंह बन जाता है, लौकी बनाओ तो उसे वो खाना पसंद नहीं करते। तो कितने कितने जतन करती है महिलाएं कि वो सब्जियां उनको
1: खिला दी जाए किसी भी तरह से,
0: ताकि उनका पोषण मिले।
1: लेकिन तुम मुझे माफ करना, बच्चों को तुम बहुत ज्यादा बदनाम कर रही हो, है ना। देखा जाए तो हमारी सखियों में से भी कुछ सखियां ऐसी हैं जो हर तरह की सब्जी खाना पसंद नहीं करती हैं।
0: तो भाई ऐसे में बहुत अच्छा आपके पास एक विकल्प है कि बेसन की तरह तरह की सब्जियां बना सकती हैं। उसके लिए बेसन, सिंधी बेसन की टिक्कियों की सब्जी, इसके बारे में हमारे श्रोता ने लिखकर बताया है कि इसके लिए सबसे पहले बेसन को कम पानी से टिक्कियां बनाना है। इसमें अनारदाना और हरा धनिया भी डालते हैं। फिर तवे पर बहुत कम तेल में इनको सेका जाता है। प्याज लहसुन अपनी इच्छा के अनुसार, अदरक हरी मिर्च, इन सबको डालकर आप पेस्ट बना लीजिए। एक अच्छी स्वादिष्ट सी ग्रेवी बनाना है, उसमें नमक, लाल मिर्च स्वाद के अनुसार डाल लीजिए, आप अन्य मसाले भी स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। थोड़ा गरम मसाला डालकर बेसन की टिक्कियों को डालकर थोड़ी सी आंच पर इसे पकाना है और सिंधी बेसन की टिक्कियों वाली सब्जी तैयार हो जाती है।
1: बहुत स्वादिष्ट सब्जी होती है ये। हमारी एक सहेली थी, वो सिंधी थी, उनके यहाँ मैंने सब्जी खाई हुई है। वही एक श्रोता लिखती है कि बेसन की चिले वाली सब्जी, क्या बात है। बेसन को नमक, हल्दी, अदरक, मिर्ची का पेस्ट के साथ चिले की तरह घोल लें और तवा पर चिली को सेक लें, मतलब चिली को सेक लें, इस दोनों तरफ से फोल्ड कर लें, फिर इन्हें चाकू से काट के टुकड़े के रूप में बना लें। ग्रेवी के लिए धनिया पाउडर पिसा हुआ, पीला सरसों, लहसुन, जीरा, मिर्च, इन सभी को बारीक पीस लें। कड़ाही में तेल डालें, राई का तड़का दें, बारीक कटा प्याज भून लें, पीसें, पीसे हुए टमाटर डाल दें, मतलब अगर आपने टमाटर को भी पीस लिया है। साथ ही मसाले, जो भुने हुए मसाले हैं, उनकी ग्रेवी तैयार होने पर बेसन के टुकड़ों को डाल दें, 5 मिनट तक इसे पकाएं। स्वादिष्ट जो है सब्जी आपकी तैयार है, और बहुत सारे लोग इसे शाकाहारी मछली भी बोलते हैं।
0: क्या बात है। तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।

0: छात्रजन जल रहे ना रहे हम यूं ही महकते रहेंगे और ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा। और अब ही सखी सहेली से हमें इजाजत लेनी होगी क्योंकि वक्त हमें और इजाजत नहीं दे रहा है
1: जी।
0: तो कार्यक्रम समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी और
1: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर गायत्री आहूजा को, जो अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांग जन संस्थान की विभागाध्यक्ष है, यानी कि अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज। ये संस्था देश भर के दिव्यांग जनों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है। ऐसे छात्र जो श्रवण बाधित है और बोलने में समर्थ नहीं है, उन बच्चों को शिक्षा देना, उन्हें सिखाना कितना मुश्किल होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है, ये सब कुछ बताएंगे डॉक्टर गायत्री आहूजा। विविध भारती के स्टूडियो में डॉक्टर गायत्री, हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और विविध भारती से जुड़ना मुझे लगता है काफी सम्मान की बात होती है, सो थैंक यू सो मच। और ये इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आपने मुझे बुलाया है, सो थैंक यू सो मच।
0: और ये एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं होती है, तो इस संस्था के बारे में आप जानकारी दीजिए सबसे पहले, और उसके बाद बताइए कि श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा बाकी बच्चों से किस तरह से अलग होती है। तो मेरे ख्याल से एक साथ दो सवाल हो गए।
1: कोई नहीं। अलिया वर्जन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, और जहाँ पे मैं वहाँ पे काम करती हूँ, ये हेडक्वार्टर्स है। और हेडक्वार्टर्स से जुड़े हुए रीजनल सेंटर्स भी हैं, जैसे सिकंदराबाद है, कोलकाता है, नोएडा है। हमारे अंतर्गत कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स भी हैं, जैसे कि अहमदाबाद, गोवा एंड छतरपुर, नागपुर एज वेल। हम सारी संस्था जो हैं स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज पे काम करती हैं। पीडियाट्रिक से लेके जेरियाट्रिक पॉपुलेशन तक हम डील करते हैं। मतलब आप अगर हमारी संस्था में आएंगे तो आप बिल्कुल छोटे से छोटा बच्चा देखेंगे, एज वेल एज 80 ईयर अबाव लोग भी देखेंगे। तो उन सब की हम श्रवण की जांच, स्पीच की जांच, जो हेडक्वार्टर्स है मुंबई, सिकंदराबाद, नोएडा एंड कोलकाता में, स्पीच एंड हियरिंग से जुड़ी हुई करते हैं। पर जो सीआरसीज हैं, जैसे अहमदाबाद हो गया या नागपुर हुआ या छतरपुर हुआ, वहां पे हम सारे डिसेबिलिटीज के साथ डील करते हैं। तो ये बेसिक हमारा काम है, जहाँ पे हम आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, इंटरवेंशन भी करते हैं। सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी करते हैं। अच्छा। हमारे अंतर्गत डिप्लोमा के कोर्सेज, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी प्रोग्राम्स, साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलते हैं। पेरेंट्स के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाते हैं, जिससे वो खुद एम्पावर हो सके। एंड पेरेंट्स के लिए जो प्रोग्राम्स हम करते हैं वो मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। बहुत बार हम इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज के लिए भी कार्यक्रम करते हैं कि बैंकिंग किस तरीके से करना चाहिए या इंग्लिश स्पीकिंग किस तरीके से करना चाहिए, वॉट एवर स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हम चलाते हैं, वो भी हम बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हैं। तो रेंज बहुत सारी है कि जहाँ पे हम बच्चे से लेके सीनियर सिटीजन तक के लिए हम काम करते हैं।
0: जी,
1: ये हो गया पहला सवाल।
0: हाँ, राइट। फिर कितना अंतर है एक सामान्य बच्चे को पढ़ाना, शिक्षा देना, और श्रवण बाधित जो बोलने में समर्थ नहीं है उनको सिखाना, कितना कठिन होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है?
1: ओके, अब जो बच्चा एजुकेशन के लिए स्कूलिंग सिस्टम में जाता है, एक सामान्य बच्चा, ठीक है, सामान्य बच्चे के जो गोल्स होते हैं एडुकेशन के, वो सेम गोल्स हियरिंग इम्पेयर्ड या श्रवण बाधित बच्चों के भी होते हैं। ओके, जनरल गोल्स सेम रहते हैं। बट आप ऐसा सोचिए कि एक बच्चा है जिसको सुनाई नहीं देता है, ठीक है, अब उसको सुनाई नहीं देता है हियरिंग लॉस की

0: वजह से उसके तीन चीजें बेसिकली इम्पैक्ट होती हैं, स्पीच वाचा में प्रॉब्लम, लैंग्वेज में इश्यूज एंड कम्युनिकेशन में इश्यूज. ओके, तो एक चीज तीन चीज से जुड़ी हुई है. अब ऐसे बच्चों को जब हम एडुकेट करते हैं तो अगेन इसके अंदर दो पहलू आ जाते हैं. एक ग्रुप जहाँ पे हम हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट लिसनिंग डिवाइसेस से हम सिखाते हैं, जहाँ पे हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चा सुने और बात करे. फिर एक ग्रुप है जहाँ पे हम साइन लैंग्वेज के माध्यम से हम पढ़ाते हैं. तो जनरल गोल्स तो आपके हो गए कि नॉलेज का डेवलपमेंट करना है, स्किल्स को डेवलप करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है. ओवरऑल डेवलपमेंट बेसिकली मतलब आपका बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट तो हो गए जनरल गोल. पर जब मैं स्पेसिफिक गोल की बात करती हूँ तो स्पेसिफिक गोल में आ गया मेरा इस बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट करना, स्पीच डेवलपमेंट करना, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट करना. अब कम्युनिकेशन भी कितनी चीजों से जुड़ी हुई है. फॉर एग्जाम्पल अब हम साथ में बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, पर मेरी उंगलियां भी चल रही है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन भी हो रहे हैं, मेरे आंख वाक भी यू नो इट्स गोइंग अप एंड डाउन, एंड बहुत सारा बॉडी लैंग्वेज है एंड स्माइल है, और जो मैं महसूस कर रही हूँ वो मैं बता सकती हूँ. ठीक है, नाउ यू इमेजिन अ चाइल्ड जिसको जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास भाषा नहीं है. तो कम्युनिकेशन इज सच अ वेरी बिग इम्पॉर्टेंट रोल. कम्युनिकेशन करने के लिए भाषा होना बहुत ज्यादा जरूरी है. भाषा नहीं है तो वो समाज में किस तरीके से उठेगा बैठेगा, वो समाज में इंटरैक्ट कैसे करेगा और पार्टिसिपेट कैसे करेगा, वो जो महसूस करता है या करती है वो किस तरीके से व्यक्त करेगा. तो जो एडुकेशन है, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए जो एडुकेशन है, वो ये सारी पहलुओं को देखकर हम उसका एडुकेशन का विकास करते हैं. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एडुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट इज पेरेंट्स का एम्पावरमेंट करना. तो पेरेंट्स के लिए हम बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं कि बच्चे को हियरिंग एड किस तरीके से लगाना है, या कॉकलियर इम्प्लांट है तो किस तरीके से लगाना है, अगर हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट में कुछ भी रिपेयर्स हुए तो उसको सिंपल रिपेयर्स किस तरीके से करने हैं, और अगर बच्चा हियरिंग एड और कॉकलियर इम्प्लांट नहीं लगाता है, सांकेतिक भाषा से बात करता है, इशारों में बात करता है, इशारे इज अ वेरी सिंपल टर्म, हम उसको सांकेतिक भाषा बोलते हैं, और सांकेतिक भाषा में अगर बात करता है या करती है तो पेरेंट्स को भी आनी चाहिए सांकेतिक भाषा, तब तो कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट होगी. तो बहुत सारे एडिशनल गोल्स आ जाते हैं जब हम एडुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की बात करते हैं. तो
1: यहाँ पर एक गाना सुनते हैं फिर और बातें करते हैं. कौन सा गाना सुनवाया?
0: मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, ये गाना बहुत पसंद है,
1: ये धरती ये नदियाँ और
0: विविध भारती और अलिया वर्जंग.
1: क्या बात है, सुनते हैं.
2: बड़े अच्छे लगते हैं
3: क्या?

0: इस गाने के पहले आप जिक्र कर रही थी कि किस तरह से आप शिक्षा देती हैं और पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल काम होता होगा पेरेंट्स को सिखाना। कौन सी प्रणाली होती है, कैसे आप सिखाते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं उनको?
1: पेरेंट्स के लिए, नाउ यू इमेजिन अ फीमेल हु इज प्रेग्नेंट, एंड हर फीमेल को लगता है या हर माँ बाप को लगता है या हर फैमिली को लगता है कि जो बच्चा होगा वो काफी हेल्दी होगा, ओके, इट्स नॉर्मल। बट जब चाइल्ड इज बॉर्न एंड यू कम टू नो कि नहीं बच्चे को हियरिंग लॉस है, तो सबसे पहले जो चीज है वो है एक्सेप्टेंस, कि उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि ओके आई हैव अ चाइल्ड, आई हैव अ हेल्दी चाइल्ड, बट द चाइल्ड इज हैविंग दिस एज अ कंसर्न, ओके। दूसरी चीज ये है कि या तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं या तो बिल्कुल भी प्रोटेक्टिव नहीं होते हैं, बैलेंस्ड अप्रोच कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिसिंग हो जाता है, तो वो भी उनको बताना होता है कि किस तरीके से एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना है, ना कि यू नो ओवर हो या अंडर हो। यू हैव टू कंसिडर योर चाइल्ड, एक्सेप्ट द चाइल्ड, उसको उतनी ही रेस्पेक्ट दें जितनी बाकी बच्चों को दी जाती है, उसे ऐसा नहीं लगे कि हाँ मैं कुछ अलग हूँ इसलिए मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो उसे भी अपनापन लगना चाहिए और मैं इसी घर का एक हिस्सा हूँ ये उसे समझना बहुत जरूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पेरेंट्स को एडुकेशन के प्रोसेस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, अगर इन्वॉल्व हुए तो यस द चाइल्ड कैन प्रोसीड या प्रोग्रेस आराम से। इसलिए हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कोर्सेस करने के लिए, चाहे डिप्लोमा हो या बैचलर्स हो, जिनके खुद के बच्चों को या तो हियरिंग लॉस हो या कोई कंसर्न हो, वो खुद भी आते हैं, क्योंकि जब तक पेरेंट्स को नहीं पता चलेगा कि इन बच्चों में क्या कंसर्न्स हैं, तो वो बच्चों की डेवलपमेंट में कैसे भागीदारी ले सकते हैं। स्कूल्स के साथ जुड़े रहें लगातार या फॉलो अप ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के साथ करते रहें, टीचर्स के साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपका बच्चा सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करता है तो आप खुद भी सीखें सांकेतिक भाषा, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत बार ये देखा गया है कि क्या होता है कि पता तो चल जाता है कि बच्चे को हियरिंग लॉस है, ओके, बट माँ या फादर बाकी फैमिली मेंबर्स को बताते ही नहीं है कि बच्चे को कुछ इशू है,
0: रिश्तेदारों को
1: और बाकी लोगों को बताते ही नहीं है, डर के मारे शर्म के मारे कुछ बताते ही नहीं है। अब इससे क्या होता है, पहचान तो हो गई कि मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ तो इश्यूज है, कंसर्न्स है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बट इंटरवेंशन बहुत टाइम के बाद होता है, 4 साल 5 साल के बाद हो जाता है, तो ये जो गैप है आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन का ये बढ़ते जाता है, ये कहीं ना कहीं कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो उनका माइंडसेट कैसा है पेरेंट्स का, दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तो यस द चाइल्ड कैन प्रोग्रेस। ऐसा नहीं है कि चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट आगे प्रोग्रेस नहीं करते हैं। मेरा खुद का एक स्टूडेंट है जो PhD कर रहा है, सुनील सहस्रबुद्धे, वो खुद PhD कर रहा है। शिवाजी पांडा सर हैं, काफी बड़े रोल मॉडल हैं, उनकी तो PhD हो भी चुकी, उन्होंने खुद का अपना एक स्कूल सेटअप बनाया है उड़ीसा में। सो देर आर मैनी हु आर हैविंग हियरिंग लॉस और एक बहुत अच्छे मुकाम पे

0: पहुंच गए हैं। हम हियरिंग लॉस के क्षेत्र में डॉक्टर मदन वशिष्ठ का नाम लेते हैं हमेशा, वो खुद भी हियरिंग इम्पेयरमेंट है उनको है, एंड गैलाडेट यूनिवर्सिटी में डीन रह चुके हैं। सो इट इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट टाइमली और एप्रोप्रिएट सपोर्ट सिस्टम लेके अगर हम काम करें तो थिंग्स आर पॉसिबल।
1: तो किन किन क्षेत्रों में ये बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, ज्यादातर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर इनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है?
0: देखिए, अभी जैसे मैंने कहा कि हियरिंग लॉस की वजह से लैंग्वेज, स्पीच और कम्युनिकेशन अफेक्टेड है, ओके? सो अगर ये तीन चीज आपने सही, टाइमली, एप्रोप्रिएटली डेवलप कर दी तो बच्चे को कोई कंसर्न्स, इश्यूज नहीं आएंगे। हमारे पास ऐसे भी चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयर्ड हैं जो बीएसएलपी जिन्होंने कर चुके हैं, ओके, ऑडियोलॉजी का कोर्स कर चुके हैं, ऑडियोलॉजिस्ट हैं अभी, ओके। एजुकेशन के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत जगह पे यू विल फाइंड जो डेफ टीचर्स बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं बच्चों के साथ। टीचर के क्षेत्र में मैंने बहुत सारे देखे हैं, प्लस यू विल फाइंड मेनी पीपल इन IIMs, IITs ऑल्सो यू विल फाइंड। तो अगेन एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू आइडेंटिफिकेशन, इंटरवेंशन का गैप कम करना है एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर हम काम करें तो यस, थिंग्स आर पॉसिबल। प्लस टीम अप्रोच में काम करना बहुत जरूरी है। टीम अप्रोच का मतलब पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, जो भी उनके थेरेपिस्ट होंगे या साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हो गए, इन सबको साथ में लेकर अगर वो आगे बढ़ेंगे तो यस, थिंग्स आर पॉसिबल।
1: बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर गायत्री, हमें बताइए कि कैसे पहचाने कि किसी बच्चे को हियरिंग लॉस है, मतलब वो सुनने में असमर्थ है, प्रारंभिक अवस्था में कैसे पहचान होती है?
0: ओके, फॉर सिंपल एग्जांपल, अगर मैं फैमिली सेटअप पे बात करूं तो आप जोर से आवाज बुला रहे हैं बच्चे का, राहुल राहुल राहुल, बच्चा प्रतिसाद नहीं करता है। आपने चिल्ला के बात किया तभी भी प्रतिसाद नहीं कर रहा है, देयर इज नो चेंजेस इन एक्सप्रेशन। हमें जब आवाज आती है तो हम उस तरफ देखते हैं, ओके, जहां से आवाज आती है हम उस तरफ देखते हैं, तो बच्चा वहां पे रिस्पॉन्ड नहीं करता है। अगर बहुत जोर से कोई आवाज आती है तो हम नॉर्मली दचकते हैं, वी स्टार्टल, ओके। अगर बच्चा स्टार्टल नहीं करता है या दचकता नहीं है, तो दीज आर सर्टेन साइंस जहां पे बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अगेन घर की घंटी बजी है एंड द चाइल्ड इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि देयर इज अ डोरबेल, तो एनवायरमेंटल साउंड्स को अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है या फाइन साउंड्स जैसे स्पीच साउंड्स को वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो यस, द चाइल्ड कैन हैव इश्यूज। बहुत बार क्या होता है कि हियरिंग लॉस उतनी मात्रा पे नहीं है, माइल्ड, मॉडरेट या मॉडरेटली सीवियर है, तो उन बच्चों को पहचाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे है, पर उसके लिए जांच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको रेगुलर स्कूल्स में मिल जाएंगे, जनरल स्कूल्स में मिल जाएंगे, ठीक है, जहां पे बच्चे को लॉस तो है बट आप अगर थोड़ा जोर से बोलते हो तो बच्चा रिस्पॉन्ड कर लेता है। बट व्हेन यू से टर्न पेज नंबर दिस, तो पेज नंबर ये टर्न करना है, ये पूरा वाक्य समझना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगेन ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत ऊंचा बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कंसर्न्स है, तो ये सब एक बिहेवियर रिस्पॉन्सेज है जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। और अगर ऐसा कोई बिहेवियर रिस्पॉन्स आप देखते हो तो तुरंत ENT ऑडियोलॉजिस्ट को मिलने, ताकि हमें पता चले कि हियरिंग लॉस है तो कितना हियरिंग लॉस है, और अगर हियरिंग लॉस है क्या वो दवाई से या सर्जरी से ठीक हो सकता है, तो फाइन, नहीं ठीक हो सकता है तो व्हाट आर द डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, चाहे वो हियरिंग एड लगा दें या कॉक्लियर इम्प्लांट लगें या हमको साइन लैंग्वेज का है सपोर्ट चाहिए, क्या करना है, तो हम प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक।
1: और शुरुआत में कोई चीज पता चल जाती है तो उसका इलाज भी संभव है।
0: एग्जैक्टली,
1: छोटी मोटी तकलीफें, छोटी मोटी समस्या है तो उसका इलाज भी संभव है। यहाँ पर एक गाना सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना?
0: पल पल दिल के पास
1: तुम रहती हो।
0: हाँ जी, किशोर कुमार जी
1: जी, सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर गायत्री, हमारे श्रोताओं को बताइए कि ये सुनना और बोलना एक साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या जिनको सुनने में समस्या होती है निश्चित रूप से उनको बोलने में भी समस्या होती है? ऐसा भी होता है कि बोलना बहुत स्मूथ होता है और सुनने में प्रॉब्लम होती है, ये इसके बारे में हमारे श्रोताओं को जरा विस्तार से बताइए।
1: स्पीच इम्पेयरमेंट और हियरिंग इम्पेयरमेंट दो अलग अलग डिसेबिलिटी है, ठीक है। अब पहले हम चलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के क्षेत्र में। मुझे सुनाई नहीं देता है, अगेन आई रिपीट, इसलिए मुझे भाषा वाचा और संप्रेक्षण में तकलीफ होगी, ठीक है। पर ये डिपेंड करता है कि मुझे कितना हियरिंग लॉस है, ओके। उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि मेरा वाचा भाषा और संप्रेक्षण कितना अफेक्टेड रहेगा। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे बात करने में प्रॉब्लम आएगी और भाषा वाचा और संप्रेक्षण में प्रॉब्लम आएगी। स्पीच इम्पेयरमेंट बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, जिस बच्चे को स्पीच इम्पेयरमेंट हो उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, बिल्कुल नहीं। स्पीच इम्पेयरमेंट टोटली डिफरेंट थिंग है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आप जब बात करते हैं तो बात करने के लिए जो जो ऑर्गन्स या इन्वॉल्व हैं, ओके, जो भी आर्टिकुलेटर्स इन्वॉल्व हैं या जो वोकल फोल्ड्स हैं या जो भी इन्वॉल्व हैं, ओके, वो एक टोटली डिफरेंट क्षेत्र है, ओके। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे बात करने में तकलीफ हो सकती है, पर मैं बात नहीं कर सकती हूँ या मुझे स्टटरिंग है या स्टैमरिंग है

0: या मुझे कोई भी स्पीच रिलेटेड कंसर्न्स है, बट दैट डजंट मीन कि मुझे हियरिंग लॉस भी है. तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, पर बहुत बार लोग उसको मिक्स कर लेते हैं. तो पहले जब हमारे पास पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट था, तब वी हैड डेफ की डेफिनेशन थी हमारे पास, एंड डेफ एक प्रॉपर एक डिसेबिलिटी था. RPWD एक्ट जब आया 2016, तो दो अलग डिसेबिलिटी बना दी, स्पीच इम्पेयरमेंट अलग, हियरिंग इम्पेयरमेंट अलग. एंड दोनों की टेक्निक्स, मेथड्स, सिखाने के तरीके एंड थेरेपी सेशंस काफी अलग हैं. तो ये दोनों चीजें अलग हैं.
1: बिल्कुल. और कुछ बच्चे जो बोल तो सकते हैं लेकिन ठीक से नहीं बोल पाते हैं, जिनको हकलाना कहते हैं.
0: राइट राइट राइट. हाँ,
1: तो उनके लिए भी
0: थेरेपीज होती हैं. एंड जैसे आपने खुद ने पहले कहा, जितना जल्दी आप जानोगे उतना जल्दी आप उसका निवारण कर सकते हैं, उतना जल्दी इंटरवेंशन प्रोग्राम शुरू हो सकता है. तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा हकलाता है, तो आप उसको प्लीज एक इंटरवेंशन प्रोग्राम में लेके जाएं या थेरेपिस्ट के पास लेके जाएं. टू एड वन थिंग कि जैसे जनरल स्कूल्स में, रेगुलर स्कूल्स में यू विल फाइंड कि कुछ बच्चे हैं जिनको हियरिंग इश्यूज हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको स्पीच इश्यूज हैं. तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक प्रशस्त ऐप बनाया है. ओके. तो वो ऐप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये बच्चे को रेड फ्लैग है कि ग्रीन फ्लैग है. ओके. तो वो स्क्रीनिंग करने में काफी आसानी होती है कि हाँ वो बच्चा कौन से ग्रुप में फिट होता है, ताकि आपका इंटरवेंशन प्रोग्राम या थेरेपी प्रोग्राम उस तरीके से बढ़ते जाएगा.
1: तो जो बच्चे सामान्य स्कूल में, सामान्य विद्यालय में पढ़ते हैं, तो टीचर्स का, शिक्षक का किस तरह का सहयोग होना चाहिए, क्या भूमिका होती है फिर?
0: जो जनरल टीचर्स हैं, जो रेगुलर टीचर्स हैं, उनके क्लास में यू विल फाइंड कि बहुत सारे अलग अलग यू नो डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं उनके क्लास में भी. तो उनके लिए कुछ कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. जैसे कि अगर आपको मालूम है कि आपके क्लास में ऐसा बच्चा है जिनको सुनने में तकलीफ है, तो उस बच्चे का आप सिटिंग अरेंजमेंट सही करें, मतलब उसको ठीक सामने बैठाएं, ताकि उसका हियरिंग एड जो एम्पलीफाई करता है साउंड, या वो कॉकलियर इम्प्लांट यूज करता होगा, या जो आपको स्पीच रीड करता होगा, आपकी तरफ देख के यू नो वो समझता होगा, तो उसमें काफी मदद हो जाती है. तो सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से रखें. क्लासरूम नॉइज को जितना कम कर सकते हो उतना अच्छा है, ताकि आप जो बात कर रहे हैं या जो उसका पीयर ग्रुप है, जो उसके फ्रेंड सर्कल है, जो वो बात कर रहे हैं, उनको वो ध्यान लेके समझ सके और सुन सके. दूसरी, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है. जैसे मैं तो कहूंगी कि अगर आप पेरेंट्स को बुलाएं क्लास में और उनको बोलें आप बैठो और ऑब्जर्व करो कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है, तो दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल. तो पेरेंट एम्पावरमेंट अगेन मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, पेरेंट का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. जब उनको लगे कि यस इसमें मुझे पढ़ाने में ये तकलीफ हो रही है, तो मैं इसको किस तरीके से पढ़ाऊं, तो सपोर्ट लेना और स्पेशल एडुकेटर्स विल रियली हेल्प. बिकॉज स्पेशल एडुकेटर्स जिस तरीके से पढ़ाते हैं, उनका मेथड्स और टेक्निक्स काफी अलग होता है, तो वो बहुत हेल्प कर सकते हैं जनरल एडुकेटर्स को कि हम किस तरीके से आगे पढ़ा सकते हैं. चौथी चीज इज, जो वो हियरिंग एड पहनते हैं, जो वो यहाँ तो कॉकलियर इम्प्लांट लगाते होंगे, आपने बहुत बार देखा होगा कान के पीछे एक मशीन होती है, ठीक है, और कान के पीछे और कान के ऊपर तक एक मशीन लगती होगी, तो हियरिंग एड हो या कॉकलियर इम्प्लांट हो, बहुत कॉमन हो गई है, तो वो चल रही है कि नहीं चल रही है उसको भी जांचना बहुत जरूरी है. क्योंकि हो सकता है बच्चे ने लगा तो दिया मशीन, पर बैटरी खत्म हो गई है, आवाज जा भी नहीं रही है. तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं कि आवाज जा तो रही है, बच्चा सुन तो रहा है, अगर मशीन खराब हो गई है तो अगर आप ठीक नहीं भी कर सकते हो, तो पेरेंट्स को बोल दो कि हाँ बाबा ये मशीन चल नहीं रही है, तो आप ठीक करो, या माइनर रिपेयर्स करने आपको आने चाहिए. अगेन जैसे मैंने लास्ट कहा कि टीम अप्रोच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि इफ देयर इज एनी कंसर्न आप उसको ऑडियोलॉजिस्ट के पास भेजें, ENT के पास भेजें, और स्पेशल एडुकेटर्स की सपोर्ट आप लें, तब जाके सक्सेसफुल होगी चीजें, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट.
1: तो क्या ऐसे बच्चों को कुछ मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है? क्योंकि एक सामान्य स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और सारे बच्चे, उसको तो पता है कि वो सुनने में असमर्थ है, हियरिंग एड लगा रहा है तो उसको पता है बोलने में असमर्थ है, तो वो जो हीन भावना के शिकार होते हैं, तो उसमें किस तरह से मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट होता है या नहीं होता है?
0: इट ऑल डिपेंड्स ऑन चाइल्ड टू चाइल्ड एंड फैमिली टू फैमिली. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन हूँ और मेरी फैमिली ऐसी है जो बहुत पॉजिटिव है, ओके, एंड उनका माइंडसेट ऐसा है कि इट्स ओके, मतलब कि ठीक है, और उनका काफी रीइन्फोर्समेंट हो रहे हैं, उन बच्चों को ज्यादा इश्यूज और कंसर्न्स नहीं आते हैं. पर जहाँ पे पेरेंट्स ने खुद ने एक्सेप्ट नहीं किया है कि मेरे बच्चे को ये कंसर्न है, एंड पेरेंट और बच्चे के बीच का जो संबंध है वो सही नहीं है, तो बच्चों को

0: कंसर्न्स आएंगे ही आएंगे. इट कैन बी उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो कि मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है, मेरे से कोई क्यों नहीं बात कर रहा है, मुझे लोग अलग तरीके से क्यों ट्रीट कर रहे हैं, तो दैट कॉम्प्लेक्सिटी विल कम. तो ये तो हमारे साथ भी होता है कि समझो अगर हम कोई ग्रुप में गए और हमें लगा कि हाँ मुझे ये इंग्लिश भाषा बात करने नहीं आती और सबके सब इंग्लिश में बात करते हैं, तो वो तो हमको भी लगता है, एक स्वाभाविक चीज है. तो ये कंसर्न्स जहां पे एक्सेप्टेंस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वहां मैंने ये कंसर्न्स बहुत ज्यादा देखे हैं. एक दूसरा जो बहुत ज्यादा देखा है मैंने वो है कि क्या होता है कि पहले समझो बच्चा स्पेशल स्कूल में गया या थेरेपी सेंटर में गया, वहां पे पेरेंट्स को लगा और टीचर्स को लगा कि हाँ बाबा मेरा बच्चा अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, वो सब कुछ अच्छे से कर रहा है, उसको स्पेशल स्कूल सेटअप में जहाँ पे सब स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल टीचर हैं, एंड उसको वहां से पिक करके उन्होंने प्लेस कर दिया एक रेगुलर स्कूल में. अब वो रेगुलर स्कूल में बाकी सब एक सामान्य बच्चे, एक जनरल टीचर, उन्होंने कभी ऐसा बच्चा देखा नहीं, उसको पढ़ाने का तरीका जिस तरीके से वो दिखता है, दिखता तो बिल्कुल सेम है ओके, बट वो हियरिंग एड है और मोस्टली कभी वो इशारे करता है तो वो थोड़ा अलग हो जाता है. तो वहां पे अगर वो कोप अप नहीं करता है ओके, बाकी वो एनवायरमेंट और सराउंडिंग से, देन देयर कैन बी अ साइकोलॉजिकल कंसर्न्स आल्सो. फिर क्या होता है, वहां से हम वापस उसको स्पेशल स्कूल में लेकर आते हैं, रिवर्स इंटीग्रेशन करते हैं. इस प्रोसेस में द चाइल्ड फेसेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम. थर्ड, अगर उसकी लैंग्वेज उतनी डेवलप नहीं है, चाहे वो मौखिक भाषा हो या सांकेतिक भाषा हो, अगर उसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं है एंड द चाइल्ड इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट ओके, अगर मेरा कम्युनिकेशन अफेक्टेड है तो यस आई माइट हैव साइकोलॉजिकल कंसर्न्स आल्सो.
1: बिल्कुल.
0: सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा सिनेरियो है, कौन सा सिचुएशन है, दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. एंड समटाइम्स आई फील कि जो बिहेवियर्स है ना हम सबके, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. फॉर सिंपल एग्जांपल, अगर बच्चा स्कूल जाता है तो उसके सिक्योरिटी गार्ड उसको कैसे डील करते हैं, आया जो है आया किस तरीके से उसको डील करती है, और ये सब छोटे बच्चों में बहुत, बिकॉज दे आर मोर ऑफ विजुअल लर्नर्स ओके. आपका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा होगा कि यू नो यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, बट आप मुंह से तो बोल रहे हैं हेलो गुड मॉर्निंग, बट फेशियल एक्सप्रेशन इज नॉट गोइंग विद योर स्पीच ओके. तो वो भी कहीं ना कहीं उसको फील होता है. तो बिहेवियर्स plays an important role because जो hearing impaired होते हैं वो mostly visual learners होते हैं, they are more of visuals okay. तो आपका बर्ताव, आपका attitude, आपका body language, ये सब बहुत important role play करता है. यहाँ कहीं ना कहीं कमतरता हुई तो that means that will affect the child.
1: बिल्कुल सही बात है. इन बच्चों की ऐसी कौन सी प्रमुख शैक्षणिक आवश्यकताएं हैं जिन्हें हर माता पिता और शिक्षक को समझना चाहिए, ये बताइए हमारे श्रोताओं को.
0: ओके, अभी जैसे मैंने कहा चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट या वो बच्चे जिनको हियरिंग लॉसेस हैं, वो दो ग्रुप में होते हैं बेसिकली. एक ग्रुप जो हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट यूज करता है एंड उसका वर्बल कम्युनिकेशन डेवलप होता है, हम मोस्टली उनके इसमें मौखिक भाषा किस तरीके से विकास हो उसके ऊपर हम स्टेप्स लेते हैं. दूसरा ग्रुप है जहाँ पे हम साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, इशारों की भाषा बोलते हैं या विजुअल स्पेशल मैनुअल कम्युनिकेशन हम जिसको बोलते हैं, ये एक ग्रुप होता है ठीक है. अब इन दोनों ग्रुप में बेसिक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट या जो जरूरत है या लर्निंग नीड्स हैं बेसिकली कम्युनिकेशन और लैंग्वेज की जरूरत है ठीक है. अब नॉर्मली लोगों को क्या लगता है कि आपने हियरिंग एड लगा दिया तो मेरा बच्चा बात करेगा, या कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी कर दी तो मेरा बच्चा बात करेगा, पर इसमें और चश्मे के बीच में बहुत फर्क है. मुझे अगर दिखाई नहीं देता है और मैं ऑप्थेल के पास जाती हूँ, ऑप्थेल मुझे चश्मा देगा और मुझे तुरंत दिखाई देगा और वो आपका तभी का तभी टेस्टिंग करते हैं ठीक है. जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो अलग अलग श्रवण यंत्र ट्राई करते हैं, फिर वो गेन देखते हैं और उसके बाद आपको एक हियरिंग एड दिया जाएगा. हियरिंग एड लगाने के बाद तुरंत बच्चा बात नहीं करता है, उसके बहुत सारे थेरेपी सेशंस होते हैं, श्रवण प्रशिक्षण के बहुत सारे थेरेपी के सेशंस होते हैं, उसको सिखाया जाता है कि ये आवाज कौन सी है, इस आवाज का मतलब क्या है, आवाज आ कहां से रही है. तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस ओके एंड अ टीडियस प्रोसेस जहां पे बहुत ज्यादा सिंसियरिटी से आपको काम करना होता है. तो ये एक लर्निंग नीड है जहां पे अगर लगता है कि हाँ बच्चे ने श्रवण यंत्र पहना है तो उसका ऑडिटरी ट्रेनिंग या श्रवण प्रशिक्षण आपको लगातार करना होगा. हियरिंग एड आपको लगातार पहनना होगा एंड चाहे वो कॉकलियर इम्प्लांट हो या हियरिंग एड हो, आपको कंटिन्यूअसली पहनना बहुत जरूरी है. दूसरी चीज है, आप जिस वातावरण में हैं वो भाषिक वातावरण होना चाहिए. जितना ज्यादा आप लैंग्वेज इनपुट दोगे उतना ज्यादा आप लैंग्वेज आउटपुट होगा, जितना लैंग्वेज इनपुट नहीं है उतना आउटपुट इज अफेक्टेड. सोशल इंटरेक्शन

0: बहुत ज्यादा कराए ताकि बच्चे को भी लगे कि हाँ मैं इस समाज का एक हिस्सा हूँ एंड मुझे हर जगह एक्सेप्टेंस होनी चाहिए एंड प्लस एक सोशल आइडेंटिटी भी डेवलप होती है. मैं जितना ज्यादा समाज में इन्वॉल्व होंगी मेरी उतनी अच्छी आइडेंटिटी भी बनेगी. नीड्स है बेसिकली एक चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट की. अपार्ट फ्रॉम दिस अब देखिए जब हम भाषा की बात करते हैं तो अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल दूं मैथमेटिक्स का, अगर मैं लिखूंगी 26 प्लस 24 कितना होता है इन अ डिजिटल फॉर्मेट, वो बच्चा कर पाएगा. ओके पर अगर यही चीज मैं भाषिक रूपांतर में दूं मैथमेटिकल सम्स, वो डिफिकल्ट हो जाएगा. बिकॉज अब जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ और जब मैं वो लिखती हूँ भाषा, ओके टिपिकल मैथमेटिकल कंसेप्ट में जो भाषा का इस्तेमाल होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चे को भाषा सीखने में. नेक्स्ट व्हाट आई फील इज हम कभी भी जो भी कंटेंट सिखाते हैं या चाहे वो टीचर्स हो या चाहे वो पेरेंट्स हो, जो भी हम कंटेंट सिखाते हैं उस कंटेंट के अंदर जितने भी कंसेप्ट होते हैं ओके वो जितने भी संकल्पनाएं हैं वो संकल्पना संदर्भ के अकॉर्डिंगली सीखना बहुत जरूरी है. अब एग्जांपल अगर मैं आपको एक शब्द बोलूं खोलना, ओके ये शब्द है अगर खोलना, तो हम तो कितनी चाहिए अलग अलग चीजें खोलते हैं. ओके क्लास में आप जाते हो और बोलते हो कि आप बुक्स खोलो, तो यू अंडरस्टैंड कि बुक मुझे खोलना है. ओके बुक इस तरीके से खुलती है. ओके अगर मैं कहूँ कि मुझे डोर खोलना है तो दैट क्रिया इज डिफरेंट. ओके दैट प्रोसेस इज डिफरेंट. तो वन वर्ड बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट. तो हेंस अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर संकल्पना में अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती है तो इसके लिए बच्चों को आगे एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम्स होती है. नहीं तो फिर बच्चे फिर रट्टा मार के वो वैसे आंसर लिखते हैं. कि बहुत बार आप देखोगे कि बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका वो कीवर्ड देखते हैं और उसके हिसाब से आंसर लिखते हैं क्योंकि उनमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं होती है. और बहुत बार रट्टा मारना करते हैं तो रट्टा मारा हुआ चीज लिखते हैं पर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है. तो अंडरस्टैंडिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अंडरस्टैंडिंग हुई तो बहुत सारी एकेडमिक डिफिकल्टीज तो चली ही जाएंगे. प्लस आई एम अ टीचर तो मैं लिटरेसी डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ कि जितना ज्यादा आप रीडिंग राइटिंग कराओगे उतना ज्यादा अच्छा प्रोग्रेस होगा. हाँ जितना ज्यादा रीडिंग हो, फॉर एग्जाम्पल 6 महीने का अगर बच्चा है, आप बोलोगे क्या मैं कराऊं रीडिंग और राइटिंग एंड क्या ही कराऊं, बट आप बुक खोल सकते हैं उसके सामने और बुक खोल के पढ़ सकते हैं तो जो विजुअल थिंग्स है ओके दैट गोज इन हिज हेड. ओके बच्चा देख रहा है, उसका रिसेप्टिव लैंग्वेज इज ऑल्सो डेवलपिंग. आप पेज टर्न कर रहे हैं तो ही ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ जब हम रीड करते हैं तो मुझे पेज टर्न करना है. जब मैं रीड करता हूँ तो मैं ऊपर से लेके नीचे तक जाता हूँ, ना कि नीचे से लेके ऊपर तक. तो ये जो स्मॉल स्मॉल थिंग्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. सो दिस ऑल थिंग कंपाइल्स इन द लर्निंग नीड्स ऑफ द चाइल्ड.
1: जी तो ऐसे बच्चे जो सीख रहे हैं इस तरह जिनमें श्रवण बाधित जो बच्चे हैं तो इनकी समझदारी में भी कुछ फर्क होता है सामान्य बच्चों के तुलना में कि नॉर्मल, क्योंकि जो सामान्य बच्चे हैं बहुत कुछ सुन रहे हैं देख रहे हैं आंखों से और बहुत ऐसी जगहों पर ले जा रहे हैं अमूमन होता होगा पेरेंट्स अवॉइड करते होंगे कि यहाँ नहीं ले जाना है यहाँ ले जाना है, तो उनकी जो समझ थिंकिंग प्रोसेस है क्या बराबर होती है या कम होती है?
0: आपका जब कॉग्निशन की बात करते हो तो कॉग्निशन बहुत हायर लेवल थिंकिंग राइट एंड उसके अंदर एक और चीज आती है जिसको हम मेटा कॉग्निशन बोलते हैं. तो उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं. प्रोसेसेस को समझने के लिए आपको एक यंत्र चाहिए, आपको एक टूल चाहिए जो है भाषा. ओके कोई भी चीज को समझने के लिए, जैसे आई नो कि जो मैं बात कर रही हूँ ये माइक के माध्यम से इट इज गोइंग टू मैम, मैम उनको चेंज वेंज करके एंड देन इट इज लाइव ब्रॉडकास्टिंग. एवरीथिंग आई एम अंडरस्टैंडिंग थ्रू लैंग्वेज. ओके पर अगर मेरे पास लैंग्वेज ही नहीं है हाउ विल माई अदर प्रोसेसेस विल टेक प्लेस. सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है. बट मैं ये नहीं कह सकती कि जो हियरिंग इम्पेयरमेंट होते हैं उनको कुछ कॉग्निटिव इशूज होते हैं. नहीं, देर आर नो कॉग्निटिव इशूज, नो अंडरलाइंग इशूज एज सच. बट येस लैंग्वेज कॉग्निशन से जुड़ा हुआ है एंड इट हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑल्सो. तो वो काफी अच्छा प्रोग्रेस करते हैं. बट अगेन सेम थिंग बॉयज डाउन टू लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट. मेरे पास अगर भाषा ही नहीं है तो मैं आगे किस तरीके से वो प्रोसेस को समझूं या किस तरीके से रिस्पॉन्ड करूं या क्या कैसे करूंगी.

0: वो मुझे कैसे पता, जब तक मुझे वो रियल लाइफ सिचुएशंस नहीं पता होंगे या मुझे उस चीज का संदर्भ भी नहीं पता है कि मैं किस तरीके से करूं। वैसे
1: बिल्कुल। जहां हम एक गाना सुनते हैं, कौन सा गाना सुन रहा है?
0: ये मुंबई है मेरी जान, ए दिल है मुश्किल।
1: ए दिल है मुश्किल जी ना, ये जी सुनते हैं ये गाना। ए दिल।

0: डॉक्टर गायत्री हमें बताइए कि श्रवण बाधित बच्चे की सीखने की पूरी प्रक्रिया को किस तरह से प्रभावित करती है जो सीखने की मतलब लर्निंग प्रोसेस होती है। अभी गाने से पहले भी इस बारे में हम बात कर रहे थे।
1: हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं या लर्निंग की बात करते हैं, एक सिंपल चीज को अगर हम ध्यान में रखें कि हर चीज मुझे एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर सारी चीजें आपके पास एक्सेसिबल है तो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आसान से हो सकता है। नाउ जब मैं एक्सेसिबिलिटी ये शब्द बोलती हूँ तो इसका अर्थ क्या है? एक्सेसिबिलिटी बेसिकली मींस कि मैं कोई भी चीज को पार्टिसिपेट करूं तो उसमें कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, समझो व्हील चेयर का इस्तेमाल करती हूँ और आपके बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, सो मैं थर्ड फ्लोर तक कैसे जाऊँ? ठीक है, आई हैव टू टेक हेल्प ऑफ समबडी एल्स। ओके, मैं इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो एक्सेसिबल होना हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो हम ये रेडियो शो कर रहे होते और आप फ्रेंच में बात कर रहे होते, तो मुझे तो फ्रेंच आती नहीं है, तो इट वुड हैव बीन वन वे कम्युनिकेशन क्योंकि मैं कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो लर्निंग सक्सेसफुल करने के लिए आप जो भी चीजें, जो भी मटेरियल आप बच्चों को देते हो या जो भी चीजों का इस्तेमाल करते हो, बच्चे के लेवल के अनुसार होना चाहिए और उसको उस तक वो पहुंच सके, इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दैट इज एक्सेसिबल होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे बच्चे होते हैं वो मोर ऑफ विजुअल लर्नर्स होते हैं। ओके, सो आप कोई भी क्लासरूम देखोगे, अगर स्पेशल क्लासरूम देखोगे या अगर आप हमारे CDIC में आओगे, दैट इज क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, उधर भी आप देखोगे बहुत ज्यादा विजुअल चार्ट्स होंगे, विजुअल थिंग्स होंगे, बिकॉज द चाइल्ड इज मोर ऑफ विजुअल। ओके, सो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आपको अलग अलग लेने होंगे एंड अगेन आई रिपीट, एक्सेसिबल होना बहुत जरूरी है। जो भी आप कंसेप्ट कंटेंट दे रहे हैं, क्या वो साइन लैंग्वेज में उपलब्ध

0: है कि नहीं है, ओके okay? और अगर साइन लैंग्वेज में उपलब्ध नहीं है, जो आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो भाषा मेरे बच्चे को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बहुत बार जो होता है वो टेक्स्ट जो होता है, स्कूल के जो टेक्स्ट होते हैं, उसको हम अडेप्ट करते हैं। अडेप्ट बेसिकली मीन्स व्हाट, हम उसको चेंजेस करते हैं, चेंजेस बच्चे के लेवल के अनुसार चेंजेस करते हैं, और बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स के माध्यम से सिखाते हैं, अगेन कमिंग टू बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। कंसेप्ट्स क्लियर है तो बच्चे का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आसान तरीके से होता है। हमारे बच्चों के लिए आप जब असेसमेंट भी करते हो, जो मूल्यांकन करते हो, तो आप समझो आप जब पढ़ा रहे हो तो पढ़ाते समय भी आप मूल्यांकन करते रहते हो। पढ़ाने के पहले भी करते हैं, पढ़ाने के बाद भी करते हैं, और पढ़ाते समय बहुत बार हम मूल्यांकन करते हैं। एंड इट प्रोसेस शुड बी बेसिकली दोनों तरफ से इंटरैक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर क्लास में गई और खुद ही खुद बात किए जा रही है। और बहुत बार तो हमने ये देखा है कि जब हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट होना चाहिए, भाषिक वातावरण होना चाहिए, तो माँ ही बोले जा रही है। नहीं, बच्चे को भी मौका दो कि बच्चा भी बात करे, बच्चा भी वो प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। तो जितना ज्यादा आप इन्वॉल्व करोगे बच्चे को हर प्रोसेस में, उतना ज्यादा बच्चा प्रोग्रेस कर सकता है।
1: बिल्कुल। डॉक्टर गायत्री, हमारे श्रोताओं को बताइए कि सरकार की कौन सी नीतियां हैं, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां हैं इन बच्चों को जो शिक्षा में समर्थन देती हैं और बढ़ावा देती हैं?
0: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऐसे बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे स्कीम्स हैं, जहाँ पे वो बच्चों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं या इंडिविजुअल्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। हमारे पास अलग अलग एक्ट्स हैं, चाहे वो RPWD एक्ट हो या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो 2020 की, या सिप्टा स्कीम हो। स्किल डेवलपमेंट के लिए वी हैव PM दक्ष स्कीम ऑल्सो। हमारे पास अलग अलग स्कॉलरशिप के स्कीम्स हैं, ताकि बच्चे को ऐसा नहीं लगे कि एजुकेशन काफी डिफिकल्ट है, मैं एजुकेशन कहाँ से लूं और कैसे लूं। एक सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आप अगर हमारे यहाँ पे अगर कोई दिव्यांग है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, और उसको BEd का कोर्स करना है, MEd का कोर्स करना है, या डिसेबिलिटी ISL का कोर्स करना है, तो उसके लिए फ्री है एजुकेशन, ओके, दैट इज एज पर द स्कीम, बच्चे के लिए फ्री है। अगर उसको कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करना है या फ्री कोचिंग करना है, तो इट इज टोटली फ्री। तो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं जहाँ पे उनको हियरिंग एड भी मिलता है कंसेशनल रेट पे। तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे लॉज आर इन प्लेस, स्कीम्स आर इन प्लेस, जहाँ पे हम एजुकेशन भी देते हैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में। सो ये सारी चीजें तो है इन प्लेस। पर जब हम गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉज एंड पॉलिसीज की बात करते हैं, वी स्टिल हैव टू डेवलप अवेयरनेस, और अवेयरनेस की आवश्यकता है अभी तक हमारे देश में, कि अगर ये इशू है, अगर ये कंसर्न है, तो मुझे कहाँ जाना है, ओके? ये कहाँ जाना है, ये अभी तक एक कंसर्न है। अभी भी हमको अवेयरनेस में बहुत ज्यादा काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ आई कैन कोट अ थिंग इज कोविड के टाइम पे, दे आर गोइंग टू हॉस्पिटल्स एंड दे वर हैविंग देयर ट्रीटमेंट ऑल्सो। सो यू थिंक ऑफ अ पर्सन जिसको कोविड अफेक्टेड है एंड वो हॉस्पिटल गया है एंड ही इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द डॉक्टर बिकॉज देयर इज नो इंटरप्रेटर, ओके? तो हमारे देश में अभी भी इंटरप्रेटर्स की संख्या बहुत कम है, उसमें और ज्यादा इनरोल होना जरूरी है। थर्ड इज द एक्सेसिबिलिटी। इस एक्सेसिबिलिटी को भी हमें इम्प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इन सब अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी, इंटरप्रेटर सर्विसेज एंड सपोर्ट सिस्टम अगर हम और बढ़ा दें, तो यस, तो गवर्नमेंट लॉज पॉलिसीज जो है इम्प्लीमेंटेशन काफी अच्छे से होगा। हम डॉक्यूमेंट्स में बहुत अच्छे हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत कर रहे हैं, पर फिर भी अगर ये दो तीन चीज पे और लाइनअप हम करें, तो यस, द चाइल्ड कैन गो मच मच हायर लेवल पे।
1: जी, आप खुद इस संस्था में पढ़ाती हैं बच्चों को और आपके पास देश भर के बहुत सारे बच्चे आते होंगे, कोई ऐसा निजी यादगार कोई घटना है आपके पास जो शेयर करना चाहती हैं?
0: मैं इस क्षेत्र में आई क्योंकि ऑन माय पर्सनल,
1: आप तो हेड हैं, डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं।
0: उसके पहले तो फैकल्टी थी एंड उसके पहले बहुत साल तक एनजीओ सेटअप में भी काम करती थी मैं। एंड आई इंटर्ड इन दिस फील्ड बिकॉज मेरी बुआ की डॉटर इज हियरिंग इम्पेयर्ड, ओके? सो जब भी मैं बुआ के घर जाती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि ये इशारों से बात कर रही है और मेरे पापा आराम से कम्युनिकेट कर सकते थे, एंड आई यूज टू फील ये ऐसे, ये कुछ अलग है, ये क्या है, ओके? सो व्हेन आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स, आई थॉट कि लेट मी गेट इनटू दिस फील्ड बिकॉज दिस फील्ड आई फेल्ट इज वेरी सैटिस्फैक्ट्री, वेरी क्रिएटिव।

0: एंड बहुत कुछ चेंज हम कर सकते हैं. एंड अगर हम सब इकट्ठा होके एज अ टीम काम करें तो आई फील यू कैन मेक वंडर्स. कमिंग टू द पर्सनल नोट, जिस संस्था में मैं काम कर रही हूँ, पहले मैं वहाँ पे फैकल्टी थी एंड उसके बाद मैं अभी 2024 में आई बिकेम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. सो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, लाइक मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो खुद डेफ हैं, ने कहा कि जो बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं और पीएचडी करते हैं, और बहुत सारे सो कॉल्ड यू नो टिपिकली डेवलप्ड स्टूडेंट्स भी हैं. दोनों काफ़ी अलग हैं एंड दोनों का सीखने का तरीका काफ़ी अलग है. बट दीज आर ऑल यू नो लेसन्स, यू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स. और अगर मैं कहूँ कि मैंने इनसे क्या सीखा है, पेशेंस सीखा है काफी ज्यादा, मेरे में पेशेंस लेवल काफी अच्छा हो गया है. एंड यू अंडरस्टैंड कि एक ही पहलू को हम कितने अलग तरीके से देख सकते हैं. जैसे हम रिसर्च में कहते हैं थर्ड व्यू. ओके, थर्ड व्यू बेसिकली मीन्स फ्रॉम रिसर्च एंगल, डिफरेंट तरीके से वही चीज को देखना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो दिस इज द थिंग व्हाट आई हैव अंडरगॉन एज अ रीडर.
1: बिल्कुल. भारत में श्रवण बाधित बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है, तो इसे मजबूत करने के लिए और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं भारत सरकार की ओर से?
0: कैपेसिटी बिल्डिंग. कैपेसिटी बिल्डिंग की जब मैं बात करती हूँ, तो अगर मैं जनरल स्कूल्स की बात करूँ तो जनरल स्कूल्स में जो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट है. उनको समझना, उनका एक्सेप्टेंस करना वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ, जैसे मैं आई थिंक स्टार्ट से कह रही हूँ, वी नीड मोर डेवलपमेंट ऑन एक्सेसिबिलिटी. अगर हर चीज उनके पहुंच तक हो तो यस, द थिंग्स आर पॉजिटिव. एट द एंड ऑफ द डे माइंड सेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. पॉजिटिव माइंड सेट होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है.
1: जी, संक्षेप में बताइए चलते चलते कि आपकी संस्था किस तरह से मदद करती है इन बच्चों को, क्योंकि देश भर से बच्चे आते हैं, तो क्या क्या, किस तरह की थेरेपी दी जाती है और क्या क्या जांच की जाती है, फिर उनकी मदद कैसे करती है आपकी संस्था?
0: हमारी संस्था में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल, जिनको सुनने में तकलीफ होती है, तो वी हैव एन ऑडियोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ पे उनकी जांच की जाती है कि बच्चे को कितना सुनाई देता है, कितना सुनाई नहीं देता है, उसको कौन सी हियरिंग एड से फायदा होगा, अगर कॉकलियर इम्प्लांट करना है तो कितने हद तक. हमने रिसेंटली वर्टिको थिंग भी बनाया है. वर्टिको एक क्लिनिक थेरेपी सेंटर बनाया है कि जिन बच्चों को, अगर सिंपल तरीके से बोलूं कि बहुत बार लोगों को चक्कर आते हैं, राइट, सम पीपल से ना, आई हैव अ वर्टिगो इश्यूज एंड ऑल. ओके, सो दिस इज अ न्यू थिंग व्हिच इज बीइंग डेवलप्ड इन द डिपार्टमेंट. फिर हमारे पास एक डिपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी डिपार्टमेंट. जिन बच्चों को बात करने में, वाचा में प्रॉब्लम आती है, स्टटर करते हैं, स्टैमर करते हैं, कभी कभी सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी कुछ शब्द नहीं बोलते हैं, तो उनकी पूरी थेरेपी वहां पे चलती है. फुल स्पीच थेरेपी लैब है, आइडेंटिफिकेशन से लेके इंटरवेंशन तक. ओके, देन वी हैव साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट जहाँ पे पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस होता है, बिहेवियरल मैनेजमेंट करते हैं, बिहेवियरल टेक्निक्स करवाते हैं ताकि उसका भी निवारण हो सके. और जिस डिपार्टमेंट से मैं आती हूँ, हम पूरा एजुकेशन देखते हैं उन बच्चों का, कि समझो अगर बच्चा कोई रेगुलर स्कूल में भी जाता है और उसको वहाँ पे भी तकलीफ होती है, तो वी गिव देम रेमेडियल टीचिंग एज वेल. सो एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगेन अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, डिप्लोमा से लेके पीएचडी तक. एंड हम साइन लैंग्वेज के भी कोर्सेज चलाते हैं, कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन. तो अगर किसी को लगे कि मुझे सांकेतिक भाषा सीखनी है तो वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. एंड काफी सारे कोर्सेज चलते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में. हम कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हैं, ताकि जो हमारे तक नहीं आ सके तो हम वहां तक पहुंच सके, रीच दी अनरीच. तो हम वहां जाके कैंप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं और उनको हियरिंग एड्स या उनको जो जरूरत हो ओके वो हम देते हैं.
1: जी, तो आपके संस्था से कोई संपर्क करना चाहे तो क्या कुछ कर सकता है, मेल के जरिए? और
0: वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, AYJNISHDNIC वेबसाइट है. आप वहां जाके आपको हर डिपार्टमेंटल हेड्स के फोन नंबर्स और ईमेल आईडीज मिलेंगे. यू विल गेट ऑलमोस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ.
1: बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी है डॉक्टर गायत्री, और मुझे लगता है देश भर के हमारे श्रोता जो सुन रहे होंगे, जिन्हें भी, जिनके घर में, जिन बच्चों को, जिन बड़ों को हियरिंग लॉस है या बोलने में दिक्कत है, तो बहुत अपने तई जहां इलाज संभव करें, नहीं तो आपकी संस्था से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं.
0: श्योर.
1: और चलते चलते कोई गाना सुनवाना चाहेंगे?
0: जगजीत सिंह का कोई भी गाना, आई जस्ट लाइक हिम.

0: और डॉक्टर गायत्री विविध भारती के स्टूडियो में आप आई और इतनी सारी जानकारी दी। और ये एक ऐसा विषय है जो जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, जो लोग इससे पीड़ित होते हैं वही लोग परेशान होते हैं। तो हमारा भी श्रोताओं से बस यही कहना है कि जहां कहीं ऐसे बच्चे हैं उनको सपोर्ट करें, मानसिक रूप से सहयोग दें। आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत
1: थैंक यू टू यू ममता मैम एंड थैंक्स टू विविध भारती द होल टीम। दे आर वेरी कोऑपरेटिव एंड द वे दे आर डीलिंग विद एवरीथिंग, सो थैंक्स टू देम। थैंक्स टू ऑल द लिसनर्स कि आप सुने और कहीं पे किसी को भी आवश्यकता हो तो प्लीज संपर्क करें अलिया वजंग संस्था को। थैंक यू सो मच।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गायत्री आहूजा से रेडियो सखी ममता सिंह की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, शाम के 5 बजने को है, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। मंत्रिमंडल ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने को

0: मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारतीय एयरलाइंस को ईंधन की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने में सहायता देने के लिए यह निर्णय लिया है।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर दी एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों के प्रतिस्थापन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल ने रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार में NH-31 और NH-231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन में उन्नत करने को मंजूरी दे दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक है। कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बेंगलुरु में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ 12 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटना क्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिंद्र बोस को सौंपा गया है। इसमें ऋतव्रत बनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दमकल की 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। निर्वाचन आयोग ने आज से नई दिल्ली में 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया है। इसमें चुनावी प्रक्रियाओं और अभियानों में मीडिया के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों पर चर्चा की जा रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि आयोग बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों को प्रशिक्षण देकर 10 करोड़ से अधिक मतदाताओं तक बेहतर संपर्क सुनिश्चित कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 304 अंकों के गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से अब पेश है फिल्म संगीत।

दुकान फिल्म के इस गीत के बाद आइए सुनते हैं सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में मैंने दिल तुझको दिया फिल्म का गीत। गीत में बोल प्रवीण भारद्वाज की और संगीत से सजाया है डब्बू मलिक ने।

फिल्म संगीत का अगला गीत आइए सुनते हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। बोल समीर के और धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब पेश है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

बिल्कुल नहीं है कि हम इन महंगी चीजों के बिना आपका घर सुंदर नहीं लग सकता है। अगर आप थोड़े से भी रचनात्मक हैं, आप ज्यादा पैसे खर्च किए बिना अपने घर को बड़े आराम से सजा सकते हैं। वैसे भी हमें बचपन से ही वेस्ट से बेस्ट बनाना सिखाया जाता है, वही कई घरों में बच्चों को पेंटिंग, एम्ब्रॉयडरी आदि भी सिखाई जाती है। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स से बच्चे हैं एंड इवन आर ओन पेरेंट्स, दे डिड सो मच ऑफ क्रिएटिव वर्क, पर कुछ ना कुछ कारणवश उसे छोड़ दिया और रूटीन में पड़ गए। उस रूटीन से निकलिए दोस्तों, ये तो अपना रूटीन है, डेली होना ही है। आप थोड़ा अपना क्रिएटिविटी यूज कीजिए। अपने दोस्तों की देख लीजिए, अच्छे अच्छे पेंटिंग्स करते रहते हैं और ये बहुत अच्छा भी लगता है जब वो पेंटिंग करते हैं, कुछ क्राफ्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखेंगे तो आज कई ऐसे लोग हैं जो ऐसे छोटे मोटे पेंटिंग से शुरू कर डू इट योरसेल्फ क्राफ्ट्स के वीडियोस डालकर एक बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंसर्स हो गए हैं और अपने शौक को, पैशन को प्रोफेशन में बदल कर बहुत पैसे भी कमा रहे हैं। तो जब भी हमें कुछ खाली समय मिलता है तो कुछ ना कुछ बनाते रहना दोस्तों। पहले इसके लिए हमारे घर में जो भी सामान है उसे इकट्ठा करना है और छोटे मोटे चीज अगर नहीं भी है तो आजू बाजू से अगर स्टेशनरी शॉप में से मिल जाए तो उसे खरीद लेना एंड स्पेंड एज लिटिल एज यू कैन। उसके लिए ज्यादातर आप एक्सपेंसिव स्टेशनरी खरीदने की जरूरत नहीं है। बचे कुचे उससे अगर आप सवाखे में क्रिएटिव हो तो इस छोटे छोटे चीजों से बहुत ही अच्छे रंगीन, कलरफुल, यूजफुल, फंक्शनल क्राफ्ट भी बना सकते हैं। दोस्तों कई ऐसे लोग हैं जो बहुत से आर्ट फॉर्म्स बनाते हैं, जैसे मधुबनी, वर्ली, पटचित्र, कलमकारी, तंजोर आदि के छोटे छोटे फ्रेम बनाकर अपने लिविंग रूम में लगाते हैं और सजाते हैं। इससे आपका घर तो सुंदर ही लगता है और जितने भी लोग आते हैं वो तो पूछते हैं कि किसने बनाया, कहाँ से लिया, और यहीं से शुरुआत होती है। वहाँ जो भी प्रेजेस मिलती है, अप्रिसिएशन मिलता है और कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि अगर हम गिफ्ट करना है तो इन्हें गिफ्ट कर सकते हैं और छोटे मोटे ऑर्डर्स भी मिलते हैं। अगर वाकई में आप प्रोफेशनल हो तो इसको आप प्रोफेशनली भी कर सकते हैं और इसके जरिए पैसे भी कमा सकते हैं। दिस इज स्पेशली यूजफुल फॉर दोज मदर्स, वो घर पे रहना पड़ता है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग देन एजुकेशन दे कैन नॉट गो आउट एंड वर्क बिकॉज ऑफ दे हैव टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों का देखभाल करना, सास ससुर का देखभाल करना, शादी के बाद एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, पर घर बैठे बैठे भी ऐसे बहुत सारी चीजें कर सकती है ये महिलाएं जो आप सोच भी नहीं सकती। एंड देर आर सम वुमेन हु अर्न मोर देन मेन सिटिंग एट होम। तो दोस्तों ये आर्ट, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, क्राफ्ट, ये सीखते सीखते लोगों के विचार भी अलग ही होते हैं, बदल जाते हैं। उनके लिए टाइम बिल्कुल बहुत ही एक मूल्यवान चीज होती है, इट इज वेरी वैल्यूएबल। अगर फाइन आर्ट्स और ऐसी क्रिएटिविटी नहीं है तो आप क्या करेंगे दोस्तों घर में? सुबह से शाम तक वही करेंगे, मोबाइल देखेंगे, अपना टाइम बर्बाद करेंगे, रील्स पे रील्स, ना उसमें कुछ एंटरटेनमेंट रहता, ना उसमें कुछ प्लेजर रहता, अपना वक्त भी जाया होता। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों आप कुछ ना कुछ सीखिए, एक नया सीखिए, घर बैठे बैठे भी सीख सकते हैं। आजकल इतने वीडियोस है ऑनलाइन पर, इतने प्लेटफॉर्म्स है, अगर आप प्रोफेशनली भी सीखना चाहते हैं तो विद बेसिक फीस पीपल आर टीचिंग सो मेनी थिंग्स। आप रिसाइकिल कर सकती है, अपसाइकिल कर सकते हैं अपने मौजूदा सामान घर में जो है उसके साथ ही आप शुरू कीजिए। ज्यादा से ज्यादा घर में मौजूदा चीजों से रिसाइकिल करने की कोशिश करें। अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है तो वॉल पर पेंटिंग करके आप घर को बिल्कुल नया लुक दे सकती है। आपको वॉल आर्ट के बारे में पता ही होना चाहिए दोस्त। वॉल पेंटिंग यानी लोग समझते हैं कि दीवारों पर पेंटिंग करना, यस इसमें बहुत फर्क है। पेंटर जो आता है दीवारों पर सिर्फ एक प्राइमर लगाता है, मनपसंद कलर अप्लाई करता है और निकल जाता है, पर उस वॉल पर हम जो भी क्रिएटिविटी उसमें फूल डाल सकते हैं, हमें जो पसंद है उसका एक सीनरी बना सकते हैं और अपना क्रिएटिविटी वहां से लेकर एब्स्ट्रैक्ट भी बना सकते हैं। आजकल तो वॉल आर्ट इतना फेमस हो गया है, यंगस्टर्स आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन दिस। स्पेशली खासकर ये नए नए कैफेज जो खुल रहे हैं, स्टार्टअप्स जो खुल रहे हैं, अपने ऑफिस स्पेसेस को भी लोग वॉल आर्ट से सजा रहे हैं दोस्तों। इसके लिए बेसिक आपको पता चलना चाहिए कि इसके लिए क्या कलर इस्तेमाल कर सकते हैं हम। ऑयल पेंट यूज कर सकते हैं, एक्रिलिक्स यूज कर सकते हैं, उसे कम से कम टाइम में कितना अच्छा आप कर सकते हैं। और इसके लिए न सिर्फ आप अकेले करने की जरूरत नहीं है, आप एक टीम बनाइए, अपना समूह बनाइए, अपना कम्युनिटी बनाइए, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं सब मिलकर जाकर इसे कर सकते हैं। घर सजाने के लिए इंडोर प्लांट्स का

इस्तेमाल करें, जिसके लिए कुछ सुंदर प्लांट आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं। आप जब भी कुछ नया कर रहे हैं तो बाहर से इलेक्ट्रिशियन या कारपेंटर बुलाने के बजाय खुद इसे करने की कोशिश करें। इससे आप नई चीजें भी सीख सकते हैं और बजट भी कम हो जाएगा, लेकिन सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखें। छोटे छोटे प्लम्बिंग वर्क्स, इलेक्ट्रिशियन वर्क्स आप खुद सीखकर अपने घर पर कीजिए। आजकल तो इतना महंगा हो गया, आप अगर इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे तो उसका बेसिक खर्चा तो देना ही पड़ेगा, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा। अगर आप कुछ बाहर से खरीद भी रहे हैं तो पहले उसका बजट बना ले और क्या करना है उसकी प्लानिंग भी करें। बहुत से महिलाएं ऐसे कई चीज जाने अनजाने इकट्ठा कर लेती है जिनका इस्तेमाल कब और कहां करना है मालूम ही नहीं होता। अगर आपके पास कुछ क्वर्की कलेक्शन है, किसी जगह की कोई स्पेशल गिफ्ट है, तो अब आप उसे अपने बॉक्स से बाहर निकाले, अपने लिविंग एरिया में एक अपने कैबिनेट रखे और उस पर ये कलेक्शन रखे। लिविंग एरिया में इधर उधर रखी छोटी छोटी चीजें से कैबिनेट के ऊपर रख जा सकते हैं। इससे लिविंग रूम खुला खुला भी दिखता है। लकड़ी की पुरानी कुर्सियों को बनाएं नया। आपके घर के गैरेज में कुछ ऐसी कुर्सियां भी पड़ी रहेंगे जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करती होंगी। अब वक्त है उन्हें बाहर निकाले, अपने कमरे की शान बढ़ाए। आप उस कुर्सी को पहले साफ करें और उसे अपने पसंदीदा रंग से पेंट करें। कमरे के बाकी फर्नीचर से उसे मैच कर सकते हैं या फिर थोड़ा अलग और ट्रेंडी कलर भी दे सकते हैं। और घर में जितना भी सामान है एक बार खुद आप देख लीजिए दोस्तों, उसको अगर रिपेयर कराना है या फिर उसे थोड़ा मेंडिंग करने की जरूरत है या फिर उसे नया कपड़ा पहनाना हो, जस्ट रिफर्बिश द होल लुक। ये घर बैठे बैठे आप कर सकती है। एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, डीक्लटर योर हाउस। जब भी हम कुछ करने बैठते हैं तो काम इतना ज्यादा हो जाता है, पता नहीं चलता कि कहां से शुरू करें। इसका एक ही एक कारण यह है कि एवरीथिंग्स अनऑर्गेनाइज्ड, हर चीज अलग अलग जगह पड़ी हुई है। देयर इज नो प्रॉपर मैनेजमेंट और सामान भी इतना है उसका फंक्शनैलिटी आपको नहीं पता है। इसीलिए आप तीन कैटेगरीज में इसे डिवाइड करना है। एक पहला तो सेल, जो सामान इस्तेमाल में नहीं है उसे बेच दीजिए, या किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कीजिए या गिफ्ट कीजिए। दिस वे यू विल रिड्यूस लोड्स एंड लोड्स ऑफ आइटम्स फ्रॉम योर हाउस। सो विद दिस लवली इंफॉर्मेशन अबाउट डू इट योरसेल्फ, दिस इज चेतन साइनिंग ऑफ इन टुडेस प्रोग्राम। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम। दोस्तों आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं, हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla, spice.lamhe.vanilla। This program is sponsored and produced by Adventist Media Center.

आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। श्रोताओं, अब पेश है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र राधेनगर से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं, और यही मानव संबंध की विडम्बना।

0: ना है।
1: बहुत सुंदर संदेश राजेश पिकारिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
0: महाराष्ट्र से प्रशांत रमेश पाटिल।
1: और धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का।
0: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
1: और साथ ही साथ हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
0: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रसिद्ध शीत मरुस्थलों की।
0: इस क्रम में कल हमने चर्चा की थी अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल की और जाना था इससे जुड़ी रोचक बातों को। आज हम चर्चा करेंगे एक और अनोखे शीत मरुस्थल की और वो है गोभी का मरुस्थल। तो अजीत जी, चर्चा को विस्तार दीजिए।
1: जी विमलेश जी, आइए चर्चा को विस्तार देते हैं। तो श्रोताओं, आपको हम बताना चाहते हैं कि अंटार्कटिक का शीत मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है
0: जी।
1: लेकिन यदि एशिया महादेश की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोभी। इसका क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। विमलेश जी, अब आपकी बारी।
0: जी श्रोताओं, ये मरुस्थल मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। स्थानीय भाषा में गोभी को गोब कहते हैं जिसका अर्थ है निर्जल स्थान। एक बात और आपको बता दें कि ये रेत का नहीं लेकिन पत्थरों का मरुस्थल है क्योंकि इसका अधिकांश भाग चट्टानी और पथरीला है। केवल 5% भाग ही रेतीला है।
1: तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इस मरुस्थल के तापमान की। जहां तक तापमान का प्रश्न है, यहाँ तापमान बहुत कम होता है
0: जी।
1: सर्दियों में ये -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है जबकि गर्मी के मौसम में यहाँ का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है।
0: यानी एक ही मरुस्थल में कड़कती ठंड भी और झुलसाने वाली गर्मी भी
1: जी।
0: लेकिन इसे शीत मरुस्थल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ अधिकांश समय सर्दियों का ही होता है। अजीत जी, एक बड़ी विशेष घटना हुई है जिसके कारण गोभी का मरुस्थल बहुत प्रसिद्ध हुआ है। क्या थी वो घटना?
1: विमलेश जी, वो घटना थी जब वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में डायनासोर के अंडे और जीवाश्म मिले
0: जी।
1: यहाँ और भी कई दुर्लभ प्राणियों के जीवाश्म मिले हैं जिसके कारण वैज्ञानिकों और संचार माध्यमों ने इसे प्राचीन जीव जगत के खजाने की संज्ञा दी है।
0: अजीत जी, अब श्रोताओं को जरा यहाँ रहने वाले लोगों की जानकारी दे दें।
1: जी हाँ जरूर।
0: श्रोताओं, गोभी मरुस्थल में रहने वाले अधिकांश लोग आज भी घुमंतू जीवन यानी नोमेडिक लाइफ जीते हैं। मंगोल परिवारों का पारंपरिक घर गोलाकार का होता है जिन्हें यर्ट कहते हैं। इन घरों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आसानी से खोले और दूसरी जगहों पर ले जाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग यहाँ मौसम को देखते हुए जगह बदलते हैं। वैसे गोभी मरुस्थल के बाहरी इलाकों में आधुनिक शहर भी हैं।
1: तो श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि आज के आधुनिक वाहन यहाँ बहुत कम मिलते हैं। यहाँ के ऊंट 2 कुबड़ वाले होते हैं जो अत्यधिक ठंड और गर्मी दोनों सह सकते हैं। एक बात और आपको बता दें कि ठंड के समय ये ऊंट बर्फ खाकर अपनी पानी की जरूरत को पूरा करते हैं
0: जी।
1: घुड़सवारी यहाँ के प्रतिदिन के लोक जीवन का हिस्सा है और घुड़दौड़ है यहाँ का प्रिय खेल और मनोरंजन का माध्यम
0: जी। अजीत जी, क्योंकि उमंग रेडियो कार्यक्रम है तो ये बताना तो बहुत ही प्रासंगिक होगा कि गोभी मरुस्थल के दूर दराज के इलाकों में भी आज भी टेलीविजन की पहुंच बहुत कम या नहीं के बराबर है
1: जी।
0: यहाँ लोग रेडियो सुनकर ही मौसम का हाल जानते हैं, समाचार सुनते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। अब आधुनिकता के दौर में पर्यटन बढ़ गया है, सैलानी देश विदेश से आते हैं और यहाँ के घुमंतू परिवारों के साथ होम स्टे करते हैं।
1: श्रोताओं, यहाँ की दिनचर्या भी बहुत मजेदार और गतिविधियों से भरी हुई है। सुबह उठकर दूध दुहना महिलाओं का काम है जबकि पुरुष मवेशी चराने का काम करते हैं
0: जी।
1: दिन भर की मेहनत के बाद शाम को पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है और कहानियों और गीतों के द्वारा मनोरंजन करता है। ये गाते हैं, बजाते हैं।
0: बजाने के लिए इनके खास वाद्य यंत्र हैं जैसे मोरिन खोर।
1: ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है?
0: ये 2 तारों वाला वाद्य यंत्र है। एक और बहुत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है लिम्बे। ये बांसुरी जैसा वायु वाद्य यंत्र है। एक रोचक बात यह है कि यहाँ लोग अपने संगीत को ऊंट, घोड़े और प्रकृति से जोड़ते हैं। कई धुनें यहाँ ऐसी होती हैं जो जानवरों को बुलाने और शांत करने के लिए बनाई गई हैं।
1: बहुत सुंदर जानकारी विमलेश जी। सचमुच गोभी का शीत मरुस्थल जीवन की कठिनाइयों और उसे सुंदर ढंग से जीने का अनूठा उदाहरण है।
0: तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी गोभी के शीत मरुस्थल की।
1: अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, गोभी मरुस्थल के उन

0: कपड़ों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: गोभी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं?
0: श्रोताओं, आप प्रश्नों के उत्तर और संदेश हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर या हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। और हाँ, NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें यानी ऑडियो बुक्स आप दीक्षा या NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है दोस्त की पहचान।
1: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में बताया गया है कि एक सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाती है। संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय काम आए।
2: एक जंगल से दो दोस्त गुजर रहे थे।
3: कितने बड़े बड़े पेड़ है यहाँ तो।
4: हाँ, बहुत बड़े पेड़ हैं।
3: अरे देखो देखो, कितने अच्छे पक्षी हैं यहाँ पर। अरे वो देखो चिड़िया।
4: अरे वो देखो बंदर। ओह, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है।
3: मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है।
4: हाँ, ये तो सही कह रहे हो। अरे कोई जानवर आ गया तो क्या करेंगे हम?
3: क्या करेंगे, देखेंगे जब जानवर आएगा तब।
2: अचानक
4: ये तो रीच की आवाज है। अरे अरे, मुझे तो लगता है रीच आ रहा है। ओ, अब हम अपनी जान कैसे बचाएंगे?
3: क्या करे क्या करे, जल्दी सोचो क्या करे।
4: मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
3: अरे मुझे तो पेड़ पर चढ़ना आता है।
2: रीच को देखकर उनमें से एक दोस्त झट से दरख्त पर चढ़ गया।
3: ओ, ऐसा करता हूँ, पेड़ पर चढ़ जाता हूँ।
2: और दरख्त की टहनियों में छुपकर बैठ गया। दूसरा दोस्त नीचे अकेला रह गया।
4: ओ, अब मैं क्या करूं? मैं
2: जब उसको कुछ नहीं सूझा,
4: मैं ऐसा करता हूँ, जमीन पर लेट जाता हूँ और अपनी सांस रोक लेता हूँ, तभी जान बचेगी।
2: तो वो सांस रोककर चुपचाप जमीन पर लेट गया। रीच उसके करीब आया, उसने उसे सूंघा।
4: ये रीच तो मुझे सूंघ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, सांस रोक के लेटा रहता हूँ, तभी जान बच पाएगी।
2: और मुर्दा समझकर छोड़ दिया।
4: बच गए, लगता है रीच चला गया।
2: रीच जब चला गया तो दूसरा दोस्त,
3: अरे रीच तो चला गया, अब मैं पेड़ से नीचे उतर सकता हूँ।
2: और अपने साथी से जाकर पूछा,
3: एक बात तो बताओ, रीच ने तुम्हारे कान में क्या कहा?
2: पहले दोस्त ने जवाब दिया,
4: मेरे कान में कहा, ऐसे दोस्त से दोस्ती मत करो जो मुसीबत के समय काम ना आए और तुम्हारा साथ छोड़ दे।
2: पंचतंत्र की कहानी मश्क। सोचिए और बताइए,
0: महफूज तरीके से जंगली जानवरों को कैसे देखा जा सकता है? जंगलों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, उनकी फेहरिस्त बनाइए। अगर आप उन दोस्तों में होते तो दोस्त की मदद कैसे करते? दोस्त की पहचान। अभी आप सुन रहे थे ये प्रोग्राम अकादमिक समन्वय, डॉक्टर रिजवानुल हक, रिकॉर्डिंग मंजू कुमारी, फनकार फरहान अली नकवी, बाल कलाकार सोहम और वान्या, हिदायतकार विमलेश चौधरी, पेशकश कुसुम लता। ये प्रोग्राम CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम दोस्त की पहचान।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गौरा देवी।
2: इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाट्य प्रस्तुति के द्वारा चिपको आंदोलन की जानी मानी नायिका गौरा देवी के जीवन और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है।
3: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
4: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
3: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
5: मारो, मारो, ठीक से निशाना
6: लगाओ। अरे इनकार भी नहीं लगी।
7: अरे
5: नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको।
7: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
5: हा?
7: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
5: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
7: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
8: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
7: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
5: बड़ी आई रोकने वाली। हाँ, वही करेंगे।
3: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते

0: कहते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
1: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
0: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
1: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
2: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
3: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
2: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
4: लेकिन मेरा आदमी तो भी काम ही पे नहीं जाता।
2: आप तो काम करती है ना?
4: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
2: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
0: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
1: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
0: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांव के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
5: नहीं करने देंगे।
6: बिल्कुल नहीं करने देंगे।
1: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
0: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
1: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
7: गौरा माँ,
2: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहाँ से आ रही हो?
7: गौरा माँ, वो लोग आ रहे हैं।
2: कौन लोग आ रहे हैं?
3: अरे कहाँ आ रहे

0: हो?
1: गौरमा,
0: हाँ?
1: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
0: क्या?
1: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके, उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
0: अच्छा, तो ये बात है बहनों।
2: हाँ गौरमा, हाँ गौरमा।
0: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
3: बिल्कुल,
0: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
2: हाँ गौरमा, सब तैयार है।
4: हम बिल्कुल तैयार है।
2: पेड़ नहीं कटने देंगे।
1: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
5: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
0: ये है जंगल के उपकार,
6: मिट्टी पानी और बया।
0: मिट्टी पानी और बया।
7: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
0: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे? जिस जंगल ने तुझे पाला, पोसा, बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
8: सुनो, आगे बढ़ो।
2: अरे कहां से
8: तुम इनकी बातों में मत आओ। मैंने तुम्हें पेश की थी है, पेश की इस काम के लिए। बोलो शुरू।
0: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे आज।
1: नहीं लगाने देंगे।
0: बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
2: हाँ, हम चिपक जाएंगे।
8: ठीक है, तो वहां चलो। अरे उन पेड़ों को काटो, चलो।
5: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
7: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
8: ठीक है, तो वहां चलो। अरे उन पेड़ों को काटो, चलो।
5: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
7: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
5: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन

0: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
1: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहाँ से हमें फल, फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
2: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा, प्रवीण शर्मा और गीतांजलि। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्माण सहायक कुसुम लता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, और इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी

0: अन्य क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथेन्द्र बोस को सौंपा गया है। इसमें ऋतव्रत बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की भारतीय जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz ते।

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आकाशवाणी दे चंडीगढ़ के अंदर तो हुण तुसी सुनोगे एक फिल्मी गीत, ते एक गीत मेरे यार की शादी है फिल्म तो उदित नारायण ते अलका याग्निक दी आवाज़ां विच।

0: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ। ਸਰੋਤਿਓ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:10 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ 6:10 ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤੇ 6:20 ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰੀਲੇ ਕਰਾਂਗੇ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। किसानों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने और कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजित करने के लिए देश की प्रतिष्ठित मसाला कंपनी और हरियाणा के 6 किसान उत्पादक संगठनों के बीच समझौता हस्ताक्षर किया गया। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक केवल सिंह ढिल्लों ने पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। केंद्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्री मनसुख मांडविया ने युवा वर्ग से साइकिलिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। हरियाणा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ अर्चना गुप्ता ने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए काम करने का आह्वान किया। और मौसम विभाग ने हरियाणा और चंडीगढ़ में आज और कल कहीं कहीं और 5 और 6 जून को कुछ एक जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई। और अब खबरें विस्तार से। पंचकुला के मोरनी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में आज देश की प्रतिष्ठित मसाला कंपनी MDH

0: और हरियाणा के 6 किसान उत्पादक संगठनों के बीच महत्वपूर्ण करार हुआ। विदेश सहयोग विभाग और बागवानी विभाग द्वारा क्रियान्वित इस पहल का उद्देश्य किसानों को वैश्विक बाजारों से जोड़ना, उनकी आय बढ़ाना तथा कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजित करना है। इस समझौते के तहत पंचकुला जिले के मोरनी क्षेत्र में अदरक, हल्दी, मिर्च सहित विभिन्न मसाला फसलों के व्यावसायिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। मसाला कंपनी किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, विपणन तथा खरीद संबंधी सहयोग प्रदान करेगी। साथ ही हरियाणा में कीटनाशक मुक्त और टिकाऊ खेती को प्रोत्साहित करते हुए किसानों से सीधे खरीद व्यवस्था को भी मजबूत बनाया जाएगा। किसानों से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार के बजट में मोरनी क्षेत्र को विकसित करने की घोषणा की गई थी, उसी के अनुरूप मोरनी क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में आज यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को किसी भी प्रकार के घाटा होने की स्थिति में भरपाई की जाएगी। इसके अलावा प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को बाजार भाव से 10% अधिक फसल मूल्य कंपनी द्वारा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रारंभिक चरण में लगभग 4000 एकड़ में प्राकृतिक खेती शुरू की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समझौता हरियाणा के किसानों को वैश्विक कृषि व्यापार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे हरियाणा के किसान पहली बार देश की सीमाओं से बाहर जाकर अफ्रीकी देशों में खेती और कृषि कारोबार से जुड़ सकेंगे। पेशे से रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला में पार्टी मुख्यालय में उन्हें पदभार ग्रहण कराया। इस अवसर पर श्री सुभाष बराला, मोहनलाल बड़ौली, श्रीमती श्रुति चौधरी एवं कैबिनेट मंत्री आरती सिंह राव व अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर श्री नायब सिंह सैनी ने कहा,
1: हमारे प्रदेश के अंदर लंबे अंतराल के बाद डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेवारी आदरणीय मोदी जी ने और पार्टी ने दी है। ये एक पद नहीं है, ये एक बड़ी जिम्मेवारी है। मेरे को दायित्व दिया तो मेरे बाद मोहनलाल बड़ौली जी को दे दिया। ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें अगर कार्यकर्ता मजबूती से लगा हुआ है तो किसी भी पद के ऊपर वो जा सकता है।
0: डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की जगह ली है। इस नियुक्ति से पहले वो हरियाणा बीजेपी के प्रदेश महासचिव थीं। पदभार ग्रहण करने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि भाजपा ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता नीचे से सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है।
2: जिस भी भूमिका में पार्टी ने आज हमें डाला है, पार्टी में जिम्मेवारी कोई भी छोटी या बड़ी नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां पर साइज द लिमिट। एक बूथ अध्यक्ष प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, एक बूथ अध्यक्ष देश का गृह मंत्री बन सकते हैं, एक चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। एक साधारण कार्यकर्ता जिसने केवल 10 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी में अपना सफर शुरू किया, वो आज आपके सामने पार्टी ने उसको प्रदेश अध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण भूमिका दी। मैं कोशिश करूंगी कि आप सबकी आकांक्षाओं पर मैं खरी उतरूं।
0: पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता केवल सिंह ढिल्लों ने आज आधिकारिक तौर पर पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने पार्टी के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ का स्थान लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें उनका पदभार ग्रहण कराया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह समेत कई पदाधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। केंद्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी से साइकिलिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर फिट, स्वस्थ तथा विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने का आह्वान किया है। आज विश्व साइकिल दिवस पर उन्होंने विशेष तौर पर युवा वर्ग को साइकिलिंग को अपनाने को कहा।
3: आज मैं देश की युवा शक्ति से एक विशेष अपील करना चाहता हूँ, साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं, बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमें फिट रखती है, शरीर को ऊर्जावान बनाती है और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करती है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे, उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश

0: को भी लाभ मिलेगा।
1: केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी देशवासियों से पेट्रोल, डीजल आदि ईंधन से चलने वाले वाहनों पर निर्भरता कम करने का आग्रह किया है। ऐसे में साइकिलिंग एक प्रभावी और सकारात्मक समाधान है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष डॉ अर्चना गुप्ता ने आज कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि केंद्र सरकार ने 12 वर्ष में जो योजनाएं दी हैं वो उनका लाभ नीचे तक पहुंचाने का काम करें।
2: ये जो महीना है इसमें हमारे मोदी जी की सरकार के 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो उन 12 वर्षों में उनकी योजनाओं को नीचे तक लेके जाना, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन तक उसका प्रसार करना और जैसे कि कोई पात्र है तो उसको उस योजना का लाभ दिलवाना।
1: उन्होंने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कार्यकर्ताओं से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बड़े स्तर पर मनाने के लिए अपना योगदान देने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आज दुनिया भर के लोग योग से जुड़ रहे हैं। मौसम विभाग ने हरियाणा और चंडीगढ़ में आज और कल कहीं कहीं और 5 और 6 जून को कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। हरियाणा में अंबाला जिले में आंधी चलने और बारिश होने की खबर भी मिली है। मौसम विभाग ने कहा है कि 2 दिनों में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी और उसके बाद फिर से बढ़ोतरी होगी। विभाग के अनुसार आज और कल 50 से 60 किलोमीटर राज्य में और 5 और 6 जून को 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से कुछ जगहों पर आंधी चलने और बिजली कड़कने की संभावना भी जताई है। पलवल के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जयेंद्र सिंह छिल्लर ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पलवल सहित हरियाणा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तृतीय चरण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस दौरान 15 जून से 14 जुलाई तक बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और आवश्यक फॉर्म भरवाए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. छिल्लर ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की अर्हता तिथि 1 जुलाई है।
3: हमारी क्वालिफाइंग डेट जो SIR की है वोटर्स के लिए वो 1 जुलाई 2026 रहेगी, 1 जुलाई 2026 तक अगर कोई भी हमारा नागरिक 18 वर्ष का हो जाता है तो वो क्वालिफाइंग डेट के हिसाब से उसकी वोट इस इलेक्टोरल रोल में कंसीडर की जाएगी। डायरेक्शंस के हिसाब से 5 तारीख से 14 तारीख तक का जो फेज है अभी वो रहेगा प्रिपरेशन का, ट्रेनिंग का, ओरिएंटेशन का, जिसमें नागरिकों के साथ RWAs के साथ अधिकारियों की ट्रेनिंग, कर्मचारियों की BLOs की सुपरवाइजर की ट्रेनिंग, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग, ताकि सबको SIR से संबंधित जितना पता होना चाहिए उसका पता चले।
1: उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों का पुनर्गठन 14 जुलाई तक और ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 21 जुलाई को किया जाएगा। दावे एवं आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 21 जुलाई से 20 अगस्त तक रहेगी और दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण 21 जुलाई से 18 सितंबर तक किया जाएगा, जिसके बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 22 सितंबर को होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।

0: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 MHz 'ਤੇ।
1: आवाज जो दिल से दिल तक पहुंची, आवाज जो वक्त के पार पहुंची,
2: यादें जो हर पीढ़ी में जिंदा रही। साल था 1936 जब भारत में पहली बार गूंजा
1: ये आकाशवाणी है।
2: तभी से शुरू हुआ एक सुनहरा सफर, सूचना, संस्कृति, खेल और संगीत का अद्भुत संगम।
1: 90 वर्षों से आकाशवाणी है भारत की आवाज।
2: कभी किसान का साथी तो कभी सैनिक की प्रेरणा,
1: कभी घर की सुबह की शुरुआत तो कभी देर रात का साथी।
2: आज जब डिजिटल दुनिया है, आकाशवाणी अब भी दिलों को छू रहा है अपनी सादगी, अपनी गरिमा और अपनी परंपरा से।
1: आइए मिलकर मनाएं आकाशवाणी के सुनहरे 90 वर्षों का सफर, क्योंकि ये है भारत की आत्मा।
2: 90 वर्षों के आगे भी सफर जारी है, नई आवाजों, नई कहानियों के साथ।
1: ये आकाशवाणी है,
3: आकाशवाणी है।
4: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
5: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
4: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
5: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
4: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
5: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
4: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰੋਤਿਓ, ਕੁਛ ਹੀ ਪਲਾਂ ਚ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੈ ਮਾਲਾ।
2: ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕੇ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ

फौजी भाइयों के कार्यक्रम जयमाला में आपका स्वागत है। आज आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। आज फिर कार्यक्रम की शुरुआत देशभक्ति के साथ, यानी आपको सुनवाएंगे देशभक्ति से भरा ये गाना। इसे हमने लिया है फिल्म मैरी कॉम से। इसे गाया है विशाल दादलानी और सलीम मर्चेंट ने। गीत शिवम का है, संगीत शशि सुमन का।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है स्वाभिमान।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

अभी आपने सुना भारतीय सेना का गीत, गीत संगीत और गायक कलाकार थे कैलाश खेर। कार्यक्रम का अगला गीत जब आज फिल्म से है, इसे गाया है मनहर ने। गीत इंदिवर का है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: कुमार सानू और अनु मलिक की आवाजों में अकेले हम अकेले तुम फिल्म का गाना सुनिए। इसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत अनु मलिक का है।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स और हवन सामग्री।
2: सुबह जलाओ, शाम जलाओ।
3: देव दर्शन धूप।
2: सुबह जलाओ, शाम जलाओ।
3: देव दर्शन धूप।

अंतराल के बाद कार्यक्रम जयमाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम में अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में दिल है कि मानता नहीं फिल्म का गाना, गीत लिखा समीर ने, संगीत नदीम शर्मन का है।

आपने सोल्जर फिल्म का गाना सुना सोनू निगम की आवाज में। आइए अब सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में मन फिल्म का गाना। गीत समीर का है, संगीत संजीव दर्शन का।

0: आज की हवा महल में हम आपको सुनवा रहे हैं नंदलाल पाठक की लिखी झलकी चिट्ठी। निर्देशक हैं सीबी मंडावी।
1: सिद्धू भैया, आपकी चिट्ठी आई है, गेट पर जाकर ले लेना।
2: अच्छा अच्छा, अभी जाता हूँ।
3: अरे यहाँ तो बहुत सी चिट्ठियां हैं, इनमें मेरी कौन सी है ये किससे पूछूं? वो जो लाल पीली है वो तो अपनी नहीं हो सकती, ये लंबा लिफाफा भी अपना नहीं लगता। अब बच गए ये दो पोस्टकार्ड और तीन लिफाफे, इन्हीं में से कोई अपनी चिट्ठी हो सकती है। क्या करने का, द्वारका आज फैक्ट्री में आया नहीं। वो रहा रंगू। रंगू, मैं कैंटीन में चाय पीने जा रहा हूं, बोर्ड पर से मेरी चिट्ठी जरा ला कर देना।
1: आई है क्या?
2: हाँ हाँ आई है।
1: अच्छा अभी लाया।
4: ये लीजिए।
2: हाँ।
4: ये रही आपकी चिट्ठी।
2: हाँ।
4: अब इस खुशी में मुझे भी एक चाय पिला दीजिए।
2: अरे हाँ भाई हाँ। अब मैनेजर साहब, मेरे नाम पर एक चाय रंगू को भी। अच्छा रंगू, मैं चलता हूँ।
4: अच्छा भाई।
2: अब देखने से तो ऐसा लगता है कि ये चिट्ठी मनिया की ही है, पिछली बार भी ऐसा ही लिफाफा भेजा था। द्वारका को भी आज ही डांडी मारना था, किससे पढ़वाऊं? अगर चिट्ठी मनिया की निकली तो सारा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। बस अब सीधे घर चलता हूं, आज हाफ डे की रजा ही सही।

0: अरे सिद्धू इतनी जल्दी? हाँ। भाई तबीयत तो ठीक है?
1: आज हाफ डे ले लिया बिहारी।
0: आखिर बात क्या है?
1: मनिया की चिट्ठी आई है।
0: ओह,

0: क्या लिखा है?
1: अब मैं क्या जानूं क्या लिखा है, द्वारिका आज काम पर आया ही नहीं।
0: अरे भाई तू लक्ष्मण से पढ़वा लेते।
1: देखो बिहारी, लक्ष्मण वही काम करता है जो मैं करता हूँ, बल्कि जो मशीन लक्ष्मण से ठीक नहीं होती उसे मैं चला रहा हूँ, लेकिन उसी काम के लिए उसे 1,500 रुपए मिलते हैं और मुझे 1,000 रुपए। मैं उससे मनिया की चिट्ठी नहीं पढ़वाऊंगा, वो हंसेगा नहीं।
0: अरे बुद्धू, कहां पढ़ा लिखा लक्ष्मण और कहां अंगूठा छाप तुम। मैं मानता हूं कि तुम्हारे हाथ में हुनर है, लेकिन उसके पास सर्टिफिकेट जो है, कितना फर्क है तुम दोनों में।
1: हाँ, उतना ही जितना आदमी और जानवर में है।
0: नहीं नहीं नहीं सिद्धू, मैं ये नहीं कह रहा।
1: और नहीं तो क्या, मशीन पर लिखा हुआ मशीन का नाम जब मैं नहीं पढ़ पाता हूँ ना, तब मुझे लगता है मैं अंधा हूँ।
0: देखो,
1: आंख रहते हुए भी अंधा।
0: देखो सिद्धू,
1: हाँ?
0: इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। तुम रोज रात को पढ़ने तो जाते ही हो।
1: हाँ?
0: थोड़े दिनों में सब सीख जाओगे।
1: अरे जब सीखूंगा तब सीखूंगा ना, आज तो नाव भंवर में फंस गई।
0: मैं सिद्धू, अगर तुम्हारे पिताजी की चिट्ठी होती,
1: हाँ?
0: तो मैं जरूर पढ़ देता, लेकिन मनिया की चिट्ठी तुम तो जानते ही हो।
1: अरे जानता हूं कि मनिया के पिताजी तुम्हारे पिताजी के यहाँ शादी की बात करने गए थे, लेकिन अब तो बात खत्म हो गई ना।
0: बात किसने खत्म की?
1: अरे तुम्हारे पिताजी ने, उनको पूरा दहेज चाहिए था।
0: तुम्हें तो मालूम है मैंने पिताजी को कैसा पत्र लिखा था। मनिया जैसी सुंदर गुणी पढ़ी लिखी लड़की से दहेज लेकर उन्होंने ये सब सोचा ही कैसे।
1: अब जाने भी दो बिहारी, सुबह की आई ये चिट्ठी, अब पढ़ भी दो यार।
0: अच्छा लाओ लाओ।
1: हाँ।
0: हाँ सुनो।
1: हाँ।
0: मेरे प्यारे वो। भाई वाह, इस वो का जवाब नहीं यार।
1: हाँ। आगे क्या लिखा है?
0: लिखा है आपका लिखवाया हुआ पत्र मिला। पत्र किससे लिखवाया था?
1: द्वारका से। पढ़ो पढ़ो।
0: आप राजी खुशी हैं ये जानकर बड़ी खुशी हुई। एक आध गलतियां हैं, फिर भी राइटिंग बहुत अच्छी है।
1: राइटिंग मैं क्या जानू।
0: सो तो है। हाँ, हाँ सुनो, आप रोज रात को पढ़ने जाते हैं ये बड़ी अच्छी बात है।
1: हाँ।
0: जिस दिन आपके हाथ की लिखी हुई चिट्ठी मिलेगी,
1: हाँ,
0: उस दिन शिवालय में प्रसाद चढ़ाऊंगी। देखो मुझे प्रसाद देना मत भूल जाना।
1: अरे भैया तुम्हारा मुंह तो सबसे पहले मीठा करवाऊंगा।
0: आगे समाचार ये है,
1: हाँ,
0: कि तुम्हारे गांव का एक लड़का है बिहारी, तुम्हारी फैक्ट्री में,
1: हाँ,
0: अपनी बिरादरी का ही है। मेरे पिताजी कभी बिहारी के पिताजी से मेरी और बिहारी की शादी की बात चलाने गए थे। दहेज की मांग पर बात टूट गई थी। हमारी बिरादरी में तो कभी दहेज का लेन देन हुआ ही नहीं। वे लोग अब खुद मेरे पिताजी से मिले, बोले हम बिना दहेज से शादी करने को तैयार हैं। उनके जाने पर मैंने भाई से साफ साफ कह दिया कि अब मैं तैयार नहीं। मैंने ये भी बता दिया कि पिछले महीने मेले में मैंने सिद्धू को देखा है, मुझे पसंद है। पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या, पढ़ लिख जाएगा, माँ के पेट से थोड़ा ही कोई पढ़कर आता है। तुम बिहारी को कुछ मत बताना, तुम्हें मेरी कसम। मेरी गाय को बछड़ा हुआ है। चिट्ठी का जवाब जाने दो, क्या कहूं, तुम्हारी मनिया। देखा, इसीलिए मैं नहीं पढ़ रहा था।
1: अरे अब जाने दो, अब एक काम और करो, जैसे उसकी चिट्ठी पढ़ दी है ना, वैसे ही मेरी तरफ से एक चिट्ठी लिख दो।
0: ना बाबा ना, मुझसे नहीं लिखी जाएगी।
1: अरे क्यों नहीं लिखी जाएगी?
0: मान लो,
1: हाँ,
0: मनिया के पिताजी मेरे पिताजी की बात मान गए तो।
1: अरे तब तो मनिया को और अच्छा वर मिल जाएगा। मैं जरा बाहर जाकर आता हूँ, तुम तब तक चिट्ठी पूरी कर देना।
0: ना ना ना ना, ना। तुम बोलते जाओ, मैं लिखता जाऊंगा।
1: अरे भैया बोलना क्या, मन की बात नहीं बोली जाती, समझ लो कलम तुम्हारी मन मेरा। अच्छा अब मैं निकलता हूं।
0: कलम तुम्हारी मन मेरा, ऐसा कहीं होता है? हो सकता है। कलम तुम्हारी मन मेरा।
2: यही है, बस यही है, विकास उद्योग लिमिटेड। हिंदी में भी यही है और अंग्रेजी में भी वही। चौकीदार साहब, विकास उद्योग लिमिटेड यही है ना?
3: हाँ यही है। क्या काम है?
2: मुझे सिद्धू से मिलना है।
3: बहन जी उस हार में

0: बैठ जाओ, मैं सिद्धू को अभी बुलाता हूँ।
1: हाँ।
2: अरे मनिया, तुम यहाँ कब कैसे?
1: हाँ हाँ बिल्कुल ठीक पहचाना। हाँ। मैं मनिया, यहाँ अभी अभी ऐसे ही।
2: अरे ऐसे ही मेरा मतलब है कैसे?
1: गांव से सीधे बस से आई, चिट्ठी बनकर।
2: चिट्ठी बनकर?
1: मुझे जब तुम्हारी चिट्ठी यानी तुम्हारी ओर से बिहारी की चिट्ठी मिली।
2: हाँ।
1: और जब मैंने चिट्ठी पढ़ी तभी तय कर लिया, अब तुम्हें चिट्ठी तभी लिखूंगी।
2: हाँ।
1: जब तुम उसे पढ़ने लायक हो जाओगे।
2: हाँ।
1: और सुनो।
2: हाँ।
1: तुम भी मुझे अपने हाथ से ही चिट्ठी लिखोगे।
2: हाँ।
1: महीने दो महीने जितना भी लग जाए, समझे?
2: ठीक है,
1: मैं इंतजार करूंगी।
2: अच्छा,
1: आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम सिद्धू हो कि बुद्धू, चिट्ठी लिखी और पढ़ी जाती है।
2: हाँ।
1: जो लिखाई और पढ़ाई जाती है वो चिट्ठी नहीं रह जाती।
2: अरे बात क्या है, कुछ बताओगी भी कि बस पहेली ही बुझाती जाओगी?
1: बस यही समझ लो कि मैं चिट्ठी पढ़ती जा रही थी।
2: हाँ।
1: और मेरे पैरों के नीचे धरती कांप रही थी। उफ, कितनी गंदी भाषा थी।
2: गंदी?
1: तुम्हारी होती तो चलती, लेकिन किसी और ने ऐसी चिट्ठी लिखी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई दुशासन मेरा चीरहरण करना चाहता हो। फिर तो मैंने कान पकड़े, चिट्ठी लिखने का मन हुआ तो खुद चिट्ठी बनकर आ गई। अच्छा अब अपनी कहो, कैसे हो, कहाँ रहते हो?
2: अरे देख तो रही हो, बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ सुनो, मैंने अपना कमरा भी ले लिया है।
1: अच्छा,
2: फैक्ट्री की कॉलोनी में।
1: अच्छा,
2: तुम्हें मालूम नहीं एक महीने से ऊपर हो गए।
1: सच?
2: हाँ?
1: मुझे दिखाओ ना।
2: ठहरो, मैं अभी आता हूँ। चलो चलते हैं, यहाँ से सीधे बस जाती है।
1: अच्छा।
2: हाँ।
1: कितनी अच्छी बस है ना?
2: फैक्ट्री की बस इससे भी अच्छी है, रोज हम उसी से काम पर आते जाते हैं।
1: तुम काम पर नहीं हो तो पैसा कट जाएगा?
2: अरे मेरी सारी छुट्टियां बाकी हैं, इसलिए कभी कभी हाफ ले लेता हूँ, शादी के लिए सब छुट्टी बचा रखी है।
1: चलो फोटो, तुम बड़े वो हो।
2: ये देखो, ये रहा तुम्हारा कमरा।
1: कितना अच्छा है।
2: आ,
1: सब पक्का है।
2: आ,
1: और खिड़की भी है। अरे की क्या है ये चिट्ठी? किसकी?
2: पढ़ के बताओ।
1: तो ये बात है, तुमने कर्ज ले रखे हैं।
2: वो डिपॉजिट देना था ना, 500 रुपए सेठ छदामीलाल से कर्ज लिया।
1: क्या सबूत कि तुमने 500 रुपए ही लिए, 5000 नहीं?
2: अरे मेरे साथ रघु भी गया था सेठ के यहाँ, सोसाइटी दफ्तर में सबको पता है, मैंने सबको बता दिया, छिपाया बिल्कुल नहीं। चलो किसी से भी पूछ लो, सब जानते हैं, जरूरत पड़ने पर रघु गवाही दे सकता है। हाँ
1: तो आओ मेरे साथ।
2: चलो।
3: अरे आओ आओ सिद्धू भैया आओ, मेरी चिट्ठी मिली होगी।
2: हाँ।
3: क्यों भैया ब्याज देने आए हो कुल मिला के?
1: ब्याज देने नहीं, पूरा हिसाब करने आए हैं।
3: आप सिद्धू की कौन लगे हैं बहन जी कुल मिला के?
1: मैं इनकी होने वाली वो हूँ।
3: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है कुल मिला के।
1: इन्होंने कितना कर्ज लिया था?
3: कर्ज को की है बहन जी, जो लियो है दे देगो, फिर भी आप कह रहे हैं तो बताए देता हूँ बहन जी। 5000 रुपए लिए थे इसने।
2: 5000 रुपए?
1: आप चुप रहिए। हाँ तो सेठ जी, 5000 में 5 के आगे कितने शून्य होते हैं?
3: आप तो मजाक कर रहे हैं बहन जी, 5000 रुपए मतलब के 5 के आगे 3 शून्य होंगे कुल मिला के।
1: जैसे 5 का 5000 बनाया वैसे ही 1 शून्य और बढ़ाकर 50000 क्यों नहीं कर लिया आपने?
3: ठीक हो बहन जी, बरसों को रोजगार है मारो। बहन जी झूठ काहे को बोलूंगो, ए देखो सब लिखा पड़ी है हमारे पास, सिद्धू के अंगूठे की निशानी भी है कुल मिला के।
1: लिखा भी आपका है और पढ़ा भी, और ये तो अनपढ़ है, इनके साथ जो रघु जी आए थे वो भी अंगूठा छाप है, उन्होंने भी कहा है कि 500 रुपए लिए थे, सारी सोसाइटी को भी मालूम है। अच्छा अब हम लोग पुलिस थाने जा रहे हैं, गवाह हमारा इंतजार कर रहे होंगे।
3: पुलिस? पुलिस को की करना है बहन जी, आपस में बैठ के सुलझा लेंगे कुल मिला के।

0: को सीधा करने के लिए उल्टी गंगा बह रहे हैं।
1: मैं तो मर जाऊंगा बहन जी, मारो जंदो चौपड़ हो जावे को हो। माफ करियो बहन जी, माफ कर दियो।
0: ये लो 500 रुपए और भरपाई का रसीद दो।
1: अभी दिए देता हूँ बहन जी, अभी दिए देता हूँ। आज किसको मुंह देखो तो सवेरे सवेरे कुल मिला के।
0: सूद भी दूं क्या?
1: सूद को की करो है बहन जी, सूद को की करो है। आप मेरो पिंड छोड़ो छोड़ो, कुल मिला के जान बची तो लाखों पाए। एलो रसीद ले लो, पढ़ लियो कुल मिला के। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर।
0: आप मुझे बस पर बैठा दो, मैं गांव चली जाऊंगी।
2: मनिया एक बार कमरे में चलो ना।
0: नहीं अभी नहीं।
3: चिट्ठी। हवा महल में अभी आप नंदलाल पाठक की लिखी ये झलकी सुन रहे थे। इसे निर्देशित किया CB मंडावी ने। ये थी विविध भारती की प्रस्तुति।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

कार्यक्रम चित्रलोक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं प्रीति शर्मा के साथ। कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म रांझना से। इसे गाया है जावेद अली, कीर्ति सगतिया और पूजा ने। गीत इशाद कामिल का है, संगीत ए आर रहमान का।

0: चित्रलोक कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे इस ब्रेक के बाद।
1: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
2: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
2: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
2: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
0: आइए सुनते हैं ये संदेश।
3: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
4: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 800

0: 30 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
1: उड़ीसा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है, फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं, जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से उड़ीसा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
0: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ. जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटका नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में 1 महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने

0: की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमरीका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
2: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित होगी। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको हो रही है।
1: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
3: लगभग 1 साल ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
1: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कम्बोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह

0: है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ। ਸਰੋਤਿਓ, ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਕੇ ਲਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
3: ਆਈਏ ਸੁਣੀਏ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਆਪਕੇ ਲਈ। ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਮੇਂ ਸਭੀ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਈਏ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇ। ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਕੇ ਗਾਏ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਕੇ ਸਾਥ। इसे हमने लिया है फिल्म महबूब की मेहंदी से। गीत आनंद बख्शी ने लिखा है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

आइए अब सुनते हैं जवानी दीवानी फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत आर डी बर्मन का।

कार्यक्रम का अंतिम गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में है। फिल्म का नाम है सिलसिला, गीत जावेद अख्तर का है, संगीत शिव हरी का।

सिलसिला फिल्म के इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती

0: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका आज के फनकार में। आज हम बात करेंगे उस चेहरे की जिसे देखकर दिल मुस्कुरा उठता है, जिसकी मुस्कान पर लोग दिल हार जाते हैं और वो हमारे दिल में बस जाता है। एक ऐसा अभिनेता जो रोमांस करता है तो सच्चा लगता है,
1: सच कह रहा है दीवाना,
0: और जब दर्द दिखाता है तो आंखें नम हो जाती हैं।
1: दिल दिल ना किसी से लगाना।
0: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे अपने आर माधवन की, जिन्हें प्यार से लोग मैडी कहते हैं।
2: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
3: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
2: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
3: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
2: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
3: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन

0: दे सकता है।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। यूटी चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: रंगनाथन माधवन का जन्म 1 जून 1970 को बिहार के जमशेदपुर में हुआ, जो अब झारखंड में आता है। पिता राघवन टाटा स्टील में मैनेजर और माँ सरोजा बैंक में मैनेजर थी। आर माधवन की फैमिली जमशेदपुर में ही रहती थी, इसी वजह से इनकी स्कूलिंग यहाँ से पूरी हुई। अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद महाराष्ट्र में मौजूद कोल्हापुर के राजाराम कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स से बीएससी में ग्रेजुएशन किया और वो पढ़ाई में बहुत ही शानदार स्टूडेंट थे और ग्रेजुएशन करने के बाद मुंबई के किशनचंद चेलाराम कॉलेज से पब्लिक स्पीकिंग में अपने पोस्ट ग्रेजुएशन को कम्प्लीट किया। पढ़ाई के अलावा आर माधवन पढ़ाई के दिनों में ही एनसीसी कैडेट भी रह चुके थे और एनसीसी ट्रेनिंग भी उन्होंने ली। लाइफ में एक ऐसा समय भी आया जब वो मिलिट्री ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। इसी दौरान उन्हें मॉडलिंग का ऑफर मिला और फिर आया टेलीविजन का दौर। यूले लव स्टोरीज, बनेगी अपनी बात, सी हॉक्स और घर जमाई, इन सीरियल्स में उन्होंने छोटे पर्दे पर अपनी पहचान बनाई।

मुझे ब्रेक मिला साल 2000 में मणिरत्नम की तमिल फिल्म अलई पायते से। इस फिल्म की सफलता ने उन्हें तमिल सिनेमा का रोमांटिक हीरो बना दिया और फिल्म का हिंदी रीमेक साथिया के रूप में बना साल 2002 में, और इसमें नजर आए विवेक ओबेरॉय और राजेंद्र।

साल 2001 में उन्होंने हिंदी फिल्म रहना है तेरे दिल में से हिंदी डेब्यू किया। फिल्म में दिया मिर्जा और सैफ अली खान के साथ उनके किरदार मैडी ने युवाओं के बीच उन्हें सुपरस्टार बना दिया। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म शुरुआत में औसत रही, लेकिन बाद में ये कल्ट रोमांटिक क्लासिकल बन गई।

साल था 2002। फिल्म थी दिल विल प्यार व्यार। इस फिल्म में माधवन ने एक ऐसे नौजवान का किरदार निभाया जो प्यार में टूटा तो जरूर, लेकिन फिर उस टूटे दिल को संगीत के सुरों में ढाल दिया। एक तरफ इमोशन था तो दूसरी तरफ रफ्तार से भागती जिंदगी, और इन दोनों के बीच माधवन ने अपनी एक्टिंग से वो बैलेंस बनाया जिसे देख दर्शक बस यही बोले, क्या बात है।

अब बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जो आर माधवन के लिए सिर्फ एक रोल नहीं बल्कि एक क्रिएटिव सफर थी, राम जी लंदन वाले। ये फिल्म तमिल हिट नलदमयंती की हिंदी रिमेक थी जिसे लिखा था कमल हसन ने, लेकिन हिंदी वर्जन को माधवन ने सिर्फ निभाया ही नहीं बल्कि संवादों से लेकर क्लाइमेक्स तक खुद लिखा खुद संवारा। बावर्ची नाम से शुरू हुई ये फिल्म बाद में रामजी लंदन वाले बनी। और खास बात ये थी कि निर्देशक संजय दयामा, जिन्हें आपने लगान जैसी फिल्मों में बतौर सह निर्देशक देखा होगा, पहली बार डायरेक्शन की कमान संभाल रहे थे। रामजी लंदन वाले आज भी माधवन के करियर की एक यादगार कहानी है। साल 2006 में रंग दे बसंती में फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय राठौर की भूमिका माधवन ने निभाई, जो छोटी लेकिन बेहद असरदार थी। कहा जाए तो उनके किरदार के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी गुथी गई। इस फिल्म में सोहाली खान के साथ उनकी जोड़ी को काफी सराहा गया।

0: साल 2009 में आई फिल्म थ्री इडियट्स और आर माधवन उस कहानी का वो हिस्सा बने जिसने लाखों युवाओं के दिल की बात कह दी। उन्होंने निभाया फरहान कुरैशी का किरदार, एक ऐसा लड़का जो इंजीनियरिंग की किताबों में उलझा जरूर था लेकिन उसके भीतर बसता था एक कलाकार का दिल, एक फोटोग्राफर की उड़ान। फरहान की दुविधा, उसके डर और अंत में उसका हिम्मत से किया गया फैसला, ये सब कुछ इतना सच्चा लगा कि मानो हर दर्शक को अपनी ही कहानी उसमें दिखाई दी। माधवन ने फरहान को सिर्फ निभाया नहीं बल्कि जिया, और इसी वजह से आज भी वो किरदार लोगों के दिलों में एक प्रेरणा की तरह जिंदा है।
1: कुछ किता,

साल 2011 और पर्दे पर नजर आई एक अनोखी प्रेम कहानी तनु वेड्स मनु। इस फिल्म में आर माधवन बने डॉक्टर मनु शर्मा, एक शान संकोची लेकिन दिल से बेहद सच्चे प्रेमी। उनके सामने थी कंगना रनौत एक बिंदास और बगावती तनु के रूप में। मनु का किरदार जैसे सादगी की मिसाल था, वो प्यार करता लेकिन उसका शोर नहीं मचाता था, उसकी खामोशी में भी इश्क की आवाज थी। और फिर साल 2015 में इसका सिक्वल आया तनु वेड्स मनु रिटर्न्स। फिल्म ने तो जैसे बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। इस बार माधवन ने उसी मनु को और भी गहराई और टूटे दिल की तड़प के साथ निभाया।

इसके बाद माधवन कुछ समय के लिए सिल्वर स्क्रीन से दूर हो गए। इस दौरान उन्होंने खुद को रिफाइन किया, एक्टिंग और लुक्स पर काम किया और साल 2017 में धमाकेदार वापसी की फिल्म विक्रम वेधा से। इस क्राइम थ्रिलर में उन्होंने एक पुलिस अफसर का किरदार निभाया जिसे क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों का प्यार मिला। इस थ्रिलर को निर्देशित किया था पुष्कर गायत्री की जोड़ी ने, जिन्होंने साल 2017 में तमिल सिनेमा को एक नई ऊंचाई दी। आर माधवन बने ईमानदार पुलिस अफसर विक्रम, गंभीर, सुलझा हुआ और भीतर से सवालों से घिरा हुआ। वहीं विजय सेतुपति के निभाए किरदार वेधा ने अपनी कहानियों से विक्रम की सोच को ही हिला दिया। ये फिल्म जितनी थ्रिलिंग थी उतनी ही सोचने पर मजबूर करने वाली। तभी तो साल 2022 में आई इसकी हिंदी रीमेक। निर्देशन फिर से पुष्कर गायत्री के हाथ में था। इस बार विक्रम बने सैफ अली खान और वेधा बने ऋतिक रोशन। फिल्म में एक्शन और स्टाइल भरपूर था लेकिन गहराई थोड़ी हल्की। सैफ का विक्रम ज्यादा आक्रामक था जबकि ऋतिक वेधा के रूप में पूरी तरह चार्म और धमक से भरे। तमिल वर्जन सोच के दरवाजे खोलता है और हिंदी वर्जन एंटरटेनमेंट का दरवाजा।

साल 2022 में आर माधवन ने खुद को सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प और जुनून के प्रतीक के रूप में पेश किया। फिल्म थी रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। ये फिल्म तीन भाषाओं में एक साथ बनी, इंग्लिश, तमिल और हिंदी। इस बार माधवन ने सिर्फ पर्दे पर अभिनय नहीं किया बल्कि इस फिल्म को लिखा, निर्देशित और प्रोड्यूस भी किया। कहानी थी एक सच्चे हीरो की, इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायणन की, जिनकी जिंदगी में विज्ञान जितना बड़ा था उतना ही बड़ा था अन्याय से लड़ने का हौसला भी। माधवन ने इस किरदार में नंबी सर की प्रतिभा, पीड़ा और आत्मसम्मान को कुछ इस तरह जिया कि हर दर्शक की आंखें नम हो गई। रॉकेट्री को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और कांस फिल्म फेस्टिवल में भी इसे स्टैंडिंग ओवेशन मिला। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये थी माधवन की सबसे महत्वाकांक्षी और दिल के करीब परियोजना, जिसने साबित किया कि जब सच्ची कहानी और सच्चा कलाकार एक साथ मिल जाएं, तो सिनेमा इतिहास बन जाता।

उतनी ही प्रेरणादायक है। उनकी पत्नी सरिता बिरजे हैं, जिनसे उनकी मुलाकात एक पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप के दौरान हुई थी। वो एयर होस्टेस थी और दोनों ने साल 1999 में शादी की। उनका बेटा वेदांत माधवन एक इंटरनेशनल स्विमर है और भारत के लिए उसने स्वर्ण पदक जीते हैं। माधवन अपने बेटे की सफलता को सबसे बड़ा गौरव मानते हैं।

वर्षों में माधवन ने न सिर्फ सिनेमा में वापसी की बल्कि अपने अभिनय की गहराई से सबको चौंका दिया। साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म शैतान, इसमें उन्होंने एक तांत्रिक की भूमिका निभाई जो रहस्यमय और भयावह शक्तियों से जुड़ा हुआ है। इस किरदार में उनका खामोश डर, रहस्यपूर्ण मुस्कान और संजीदगी ने दर्शकों को डराया भी और बांधे भी रखा। ये भूमिका उनकी अभिनय क्षमता का एक नया आयाम दिखाती है। इसके अलावा वेब सीरीज डी कपल्ड में उन्होंने एक तलाकशुदा लेखक की भूमिका निभाई जो अपने रिश्तों और समाज की विडंबनाओं से जूझ रहा है। इस सीरीज में उनका व्यंग्यात्मक अंदाज और ईमानदार प्रदर्शन एकदम नया अनुभव था। साथ ही 2023 में नेटफ्लिक्स की बहुचर्चित वेब सीरीज द रेलवे मैन में उन्होंने भारतीय रेल कर्मियों के संघर्ष को दर्शाने वाले एक अहम किरदार में दमदार अभिनय किया। हिसाब बराबर में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समाज के ज्वलंत मुद्दों को बारीकी से प्रस्तुत किया। माधवन का मानना है कि फिल्मों का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि प्रेरणा देना और समाज में सकारात्मक बदलाव

माधवन को मिले पुरस्कारों में शामिल हैं बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर साउथ अवार्ड, अलई पायते फिल्म के लिए आईफा और जी सिने अवार्ड का नॉमिनेशन उन्हें मिला थ्री इडियट्स फिल्म के लिए। राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें मिला बेस्ट फीचर फिल्म का रॉकेटरी के लिए। इसके अलावा उन्हें यूएन द्वारा यूथ आइकन के तौर पर सम्मानित किया गया। उनकी छवि एक जिम्मेदार अभिनेता और संवेदनशील इंसान की है। माधवन एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने मेहनत, लगन और ईमानदारी से इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। उम्र के इस दौर में भी उनका चार्म और व्यक्तित्व उन्हें किसी भी नए अभिनेता से कम नहीं ठहराता। वो आज भी हर दिल में बसते हैं, युवाओं के फेवरेट हैं और हर भूमिका में एक नई ताजगी लेकर आते हैं।

0: का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आज केंद्रित था दिलकश मुस्कान के मालिक आर माधवन पर। स्वर नेहा शर्मा का, शोध आलेख और प्रस्तुति तेजश्री कामले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती छाया गीत कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वजरदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। माना कि बहुत हैं आप हसीन, दिल को ठुकराया करते हैं, लेकिन हम भी दिल वाले दुश्मन को गले लगाया करते हैं। सामिन, हम में से बहुत लोग अपना जलवा बरकरार रखते हैं, और रखना भी चाहिए। इस जलवे को बरकरार रखिए बरखुरदार। फना निजामी कानपुरी फरमाते हैं, वो आंख क्या जो आरिज़ो रुख पर ठहर न जाए, वो आंख क्या जो आरिज़ो रुख पर ठहर न जाए, वो जलवा क्या जो दीदा हो दिल में उतर न जाए, वो जलवा क्या जो दीदा हो दिल में उतर न जाए।

शायरी में जलवा शब्द ज्यादातर हुस्न और इश्क से जुड़ा है, हालांकि शब्द अलग अलग जगहों पर अलग अलग ढंग से इस्तेमाल किए जाते हैं और अर्थ भी जुदा होते हैं, लेकिन हुस्न के जलवे तो मशहूर हैं। अमीर मिनाई फरमाते हैं, इलाही क्या कयामत है वो जब लेते हैं अंगड़ाई, इलाही क्या कयामत है वो जब लेते हैं अंगड़ाई, मेरे जख्मों के सब टांके अचानक टूट जाते हैं।

0: न होती।
1: हुस्न का जलवा तो अच्छे अच्छों को घायल कर देता है। खुदा जाने आज उसका कैसा जलवा होगा, हुस्न होगा, नजाकत होगा और जमा होगा। वहीं जलील मानिकपुरी कहते हैं, मेरी आंखों से मेरी यार का जलवा देखो, चश्म मजनू से बाहरे रुख ए लैला देखो। मेरी आंखों से मेरी यार का जलवा देखो, चश्म मजनू से बाहरे रुख ए लैला देखो।

इस अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है। हमने समझे तेरी नजरों का तकाजा क्या है, कभी पर्दा कभी जलवा ये तमाशा क्या है। सामिन, इश्क करने वालों के लिए अपनी महबूबा के हुस्न का जलवा बिल्कुल दवा जैसा होता है। तभी तो अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि किस किस अदा से तूने जलवा दिखा के मारा, किस किस अदा से तूने जलवा दिखा के मारा, आजाद हो चुके थे तूने बंधा बना के मारा।

कभी कभी प्रेमी जितने बेकरार होते हैं अपने महबूब का जलवा देखने के लिए, उतना ही जलवा दिखाने वाला भी बेताब होता है। हाँ, तभी तो जौक साहब फरमाते हैं, इश्क का जौक के नजारा मुफ्त में बदनाम है, इश्क का जौक के नजारा मुफ्त में बदनाम है, हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए।

जलवा था, जलवा है, जलवा रहेगा, लेकिन एक दिलजला आशिक खुदा से यही कहता है, कोई तो जलवा खुदा के वास्ते दीदार के काबिल दिखाई दे, कोई तो जलवा खुदा के वास्ते दीदार के काबिल दिखाई दे, संग दिल तो मिल चुके हैं हजारों, कोई अहले दिल तो दिखाई दे, कोई अहले दिल तो दिखाई दे।

खूब बनेगा कोई किस्मत वाला। तेरा जलवा तौबा है तेरा जलवा, जब से

0: सुविधा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो सुरसांझ प्रोग्राम विच तुसी सुन रहे हो कुछ पंजाबी गीत ते अगला गीत रविंदर गरेवाल दी आवाज़ विच।

0: आवाज जो दिल से दिल तक पहुंची, आवाज जो वक्त के पार पहुंची,
1: यादें जो हर पीढ़ी में जिंदा रहीं। साल था 1936 जब भारत में पहली बार गूंजा
0: ये आकाशवाणी है।
1: तभी से शुरू हुआ एक सुनहरा सफर, सूचना, संस्कृति, खेल और संगीत का अद्भुत संगम।
0: 90 वर्षों से आकाशवाणी है भारत की आवाज।
1: कभी किसान का साथी तो कभी सैनिक की प्रेरणा,
0: कभी घर की सुबह की शुरुआत तो कभी देर रात का साथी।
1: आज जब डिजिटल दुनिया है, आकाशवाणी अब भी दिलों को छू रहा है अपनी सादगी, अपनी गरिमा और अपनी परंपरा से।
0: आइए मिलकर मनाएं आकाशवाणी के सुनहरे 90 वर्षों का सफर, क्योंकि ये है भारत की आत्मा।
1: 90 वर्षों के आगे भी सफर जारी है, नई आवाजों, नई कहानियों के साथ।
0: ये आकाशवाणी है, आकाशवाणी है।
2: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ। ਸਰੋਤਿਓ 11 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਰੀਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कॉन्ट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को